0: किया। उन्होंने कहा कि इसकी स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग लाइंग की यह पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमार के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति यू मिन आंग आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति की कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। म्यांमार के राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि कल तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एजीआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली शिक्षा प्रणाली में बेहतर समन्वय और प्रभाव सुनिश्चित होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। और खेलों में IPL क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 MHz पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम वंदना। वंदना कार्यक्रम में पहले सुनते हैं

ईश्वरीय सत्ता सर्वव्यापक है, कण कण में विराजमान है, लेकिन जीव मायावश या भोला बैठा हुआ है कि जब वो कर्म करता है तो उसे कोई भी नहीं देख रहा है, लेकिन वो परम सत्ता हृदय में सबके बैठी हुई है और जीव के हर कार्यों का निरीक्षण करती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कर्म करती बार जीव को सदैव सतर्क रहना चाहिए, मन वाणी और कर्म से सदैव अच्छा और नेक कार्य करने चाहिए, क्योंकि अगर कर करने में थोड़ी सी भी चूक होती है तो हम 84 लाख जीव उस योनियों को भुगतने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सदैव सतत प्रभु का स्मरण और सत कार्य करते रहने से ही जीव का भला होता है। ज्ञान जो

वंदना कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। वो प्रभु अंतर्यामी है, घट घट वासी है, हर किसी की जानता है, वो सर्वव्यापी है। आइए उस प्रभु को वंदन करते हैं।

वंदना कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। आदिशक्ति की अगर हम वंदना करते हैं तो वंदना करते वक्त हर जीव भावुक हो जाता है, क्योंकि वो देवी अखिल ब्रह्मांड की नायिका हैं, जगदम्बा हैं, माता हैं, सबका पालन करने वाली हैं। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन।

आइए वंदना करते हैं भोलेनाथ की, भगवान शिव की, जो हमेशा जीवों के कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं और जो भी जो उनसे मांगता है वो उसे पूरा करते हैं।

वंदना कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। सुबह के ठीक 6:30 हो चुके हैं। आइए पुनः वंदन करते हैं उस जगत जननी का जो त्रिदेवों की जननी है, अखिल ब्रह्मांड की माता है।

परमपिता परमेश्वर की लीला अपरंपार है और वो हर जीवों का कल्याण करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन जीव मायावश उस परम को भूला बैठा हुआ है। शास्त्र यही कहते हैं, अगर परमात्मा को जीव हमेशा याद करता है तो वो परमेश्वर तुल्य हो जाता है, अन्यथा वो जीव की श्रेणी में रहता है।

रामचरितमानस के प्रारंभिक मंगलाचरण के पश्चात तुलसीदास ने सर्वप्रथम गणपति की वंदना की है। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के पश्चात गुरु की वंदना की गई है, जो नर रूप में हरि के प्रतिरूप हैं।

0: प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग इत्येषः अद्य प्रातः पञ्चदिवसीय भारत यात्रायां बिहारस्य गयानगरं सम्प्राप्स्यति। तेन सह नैके मन्त्रिमण्डलस्य मन्त्रिणः वरिष्ठाधिकारिणः व्यापारनेतारः उच्चस्तरीय प्रतिनिधिदलं च भविष्यति। राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग वर्यस्य एषा प्रथमा भारतयात्रा भविष्यति। अद्य अपराह्णे राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग इत्येषः नवदिल्ल्यां प्राप्स्यति। सः सायंकाले विदेशमन्त्रिणा डॉ एस जयशंकरेण सह मेलनं करिष्यति। श्वः म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः म्यांमार भारत व्यापार मञ्चे भागं ग्रहीष्यति इत्यपेक्षास्ति। सोमवासरे राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग वर्यः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह द्वयोः देशयोः मध्ये ऐतिहासिकं सम्बन्धं सुदृढं कर्तुं चर्चां करिष्यति। सर्वकारः अवदत् यत् देशे पेट्रोल डीजल एलपीजी इत्येतेषां पर्याप्तः भण्डारः अस्ति। सर्वे शोधनागाराणि इष्टतमस्तरे एव प्रचलन्ति। नवदिल्ल्याम् अन्तर्मन्त्रालयीय मन्त्रिमण्डलस्य विवरणं सम्बोधयन्ति पेट्रोलियम मन्त्रालयस्य संयुक्तसचिवा सुजाता शर्मा इत्येषा अवदत् यत् प्राकृतिक गैस इत्यस्य उत्पादनं सर्वकालिकोच्चतमस्तरे अस्ति यत् प्रतिदिनं एलपीजी इत्यस्य 290,000 टन परिमितम् अस्ति। श्रीमती शर्मा सूचितवती यत् कस्यामपि एलपीजी वितरण संस्थायां शुष्कतायाः सूचना न प्राप्ता। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रिणा धर्मेन्द्र प्रधानेन समग्र शिक्षाभियानस्य अन्तर्गतं निधिप्रसारणस्य तस्य उपयोगस्य च विषये विस्तृत समीक्षा सभायाः अध्यक्षता कृता। यस्याः लक्ष्यं समग्र शिक्षा 3.0 अधिकं दक्षं पारदर्शकं तथा परिणाम अभिमुखीकरणम् आसीत्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले श्रीप्रधानः अवदत् यत् समग्र शिक्षाभियानं पीएम पोषणम् उल्लासः पीएम श्री इत्यादीनां प्रमुखयोजनानां एकीकृतपद्धत्याः प्रसारणम् अस्मिन्नेव वर्षे आरभ्यते। सः अवदत् यत् एतेन विद्यालयीयशिक्षाव्यवस्थायां बृहत्तरः समन्वयः प्रभावश्च सुनिश्चितः भविष्यति। केन्द्रीय कृषिमन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अवदत् यत् कृषकाणां कृते बीजानाम् उपलब्धता सुनिश्चेतुं 74,000 क्विंटल परिमितस्य राष्ट्रिय बीज संरक्षणस्य स्थापना कृतास्ति। सः ह्यः नवदिल्ल्याम् अस्य वर्षस्य खरीफ अभियानस्य कृते कृषि विषयकस्य राष्ट्रिय सम्मेलनस्य द्वितीय दिने प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयनासीत्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतसायं महाराजा यादवेन्द्र सिंह अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडांगणे न्यू चण्डीगढ़ नगरे महत्वपूर्णे क्वालिफायर द्वितीय स्पर्धायां गुजरात टाइटन्स दलेन राजस्थान रॉयल्स दलं 7 स्तोभैः पराजितम्। अधुना गुजरात टाइटन्स दलं श्वः रविवासरे अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे निर्णायक स्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन सह स्पर्धिष्यति इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर दो नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
0: बीएसएफ के सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
2: गृहमंत्री ने ड्रोन रडार निगरानी टावर अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण

0: का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमार के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति की कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कल कहा कि तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एज एआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर 7:05 हुए हैं।
2: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
2: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
4: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
2: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
4: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
2: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: का टेलीलॉके ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर।

सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजय शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, सबसे पहले हम आपसे साझा करते हैं आज का विचार, क्योंकि विचार का इंतज़ार सभी को रहता है। विचार जो है हमारा दिन और उसकी दिशा को तय करता है। अच्छे लोग ही अच्छी जगह बनाते हैं, और बनावटी बातें करने वाले और दिखावा करने वाले लोग दिलों में वैसे के वैसे ही रहते हैं। इसलिए कहा जाता है, अच्छी नीयत हो, अच्छा कार्य हो, अच्छी भाव हो और अच्छे नीयत से काम करने की इच्छा हो, तो अच्छाई हमेशा अच्छाई रहती है। और ऐसे अच्छे लोग हर जगह पसंद किए जाते हैं। भले ही लोग हमें छोड़कर दूसरी जगह चले जाएं, लेकिन उनकी यादें हमेशा दिल में बसी रहती हैं।

0: क्या आपके बच्चे के होंठ या तालू में जन्म से कटाव है?
1: तो घबराइए नहीं, इसका इलाज संभव है। स्माइल ट्रेन के सहयोग से डॉक्टर एएस ठाकुर मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमीरपुर में क्लेफ्ट होंठ और तालू की सर्जरी बिल्कुल निशुल्क की जाती है।
0: यह सर्जरी सुरक्षित है, बच्चा सामान्य जीवन जी सकता है और चेहरे की सुंदरता व बोलने की क्षमता सुधरती है। यह सेवा स्माइल ट्रेन के सहयोग से पूरी तरह मुफ्त है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8091।

0: 6 7 1 7 6 6।
1: अपने बच्चे को दें एक मुस्कुराहट भरा भविष्य।
2: मैं हूँ एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
3: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: अंतराल के बाद कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर में आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले जो गीत आपने सुना वो फिल्म थी दिल की राहें, आवाजें थी उषा मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों के। सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। और ये चलते हैं आज के इतिहास की ओर। आज के इतिहास के पन्नों में क्या कुछ दर्ज है, तो सबसे पहले उदंत मार्तंड, पहली हिंदी समाचार पत्र की शुरुआत 1826 में हुई थी, इसलिए 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस भी आज मनाया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में सर की उपाधि वापस आज ही के दिन की थी। वॉशिंगटन डीसी 1922 में लिंकन स्मारक समर्पित किया गया आज ही के दिन। पूर्वी जर्मन संविधान को 1949 में माना गया। आज ही के दिन अमेरिकी विमानों ने 1966 में उत्तरी वियतनाम पर बमबारी की थी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का 1975 में गठन हुआ था आज ही के दिन। बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियार उर रहमान की 1981 में हत्या हुई थी आज ही के दिन। गोवा 1987 में देश का 25वां पूर्ण राज्य बना था आज ही के दिन। इनके 30 मई को ही गोवा 1987 में देश का 25वां पूर्ण राज्य बना था। पेरू में 1990 को हुए भूकंप से 135 लोगों की मौत हुई थी। 6 वर्षीय बालक गेधुन चोकी नाड्या को 1996 में नया पंचेन लामा आज के दिन घोषित किया गया था। सऊदी अरब में बंधक संकट 2004 में समाप्त हुआ था, लेकिन दो भारतीयों सहित 22 की हत्या भी आज के दिन हुई थी। विशाखापट्टनम में 180 करोड़ रुपए की लागत से 3 स्टील इकाइयों का अधिग्रहण भी आज के दिन किया गया था। अफगानिस्तान में एक जिले पर 2008 में तालिबान ने कब्जा किया था। आज के दिन विश्वनाथ आनंद 2012 में 5वीं बार विश्व शतरंज के चैंपियन बने थे। स्टार बल्लेबाज एलिस्टियर कुक 2015 में इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने थे। और जिन महान हस्तियों का आज जन्म हुआ है उनमें सबसे पहले भारतीय हिंदी फिल्मों के सुप्रसिद्ध कथा, पटकथा और कहानी लेखक पंडित मुखराम शर्मा का जन्म 1909 में आज ही के दिन हुआ था। और 30 मई को ही अमेरिकी लेखक हल किलमेंट का जन्म 1922 में हुआ था। पुदुचेरी के 10वें मुख्यमंत्री बी नारायण स्वामी का जन्म 1947 में हुआ था। और जिन महान हस्तियों का आज निधन हुआ है उनमें सबसे पहले भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रोधा एवं मानवता के पुजारी और राष्ट्रवाद के अग्रदूत उमाशंकर दीक्षित का निधन 1991 में आज ही के दिन हुआ था। आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार, विचारक एवं कवि रामविलास शर्मा का निधन सन 2000 में आज ही के दिन हुआ। बंगाली फिल्मों के प्रसिद्ध निर्देशक, लेखक और अभिनेता ऋतु प्रणव घोष का निधन सन 2013 में आज ही के दिन हुआ था। इसके अलावा एनएम जोशी का निधन 1955 में हुआ था। वो भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता थे। और 30 मई को ही आज हम जो मनाते हैं दिवस वो है हिंदी पत्रकारिता दिवस और गोवा स्टेटहुड। तो आज के इतिहास के पन्नों में दर्ज घटनाओं का जिक्र हमने आपसे साझा किया। सुप्रभात मीरपुर कार्यक्रम में ले चलते हैं आपको फिर से संगीत की ओर।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: दस लाख की लॉटरी मुझे,
4: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: सुप्रभात, हमीरपुर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। 7:30 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आज की ताजा तरीन खबरें।
0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
7: सात बजकर 30 हो चुके हैं। अब आपको लिए चलते हैं आज की ताजा तरीन अखबारों की सुर्खियों की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार सीमा सुरक्षा की पूरी तस्वीर को बदल रही है। हर दृष्टि से लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड बनाई जा रही है, जहां जमीनी स्तर पर बाड़बंदी मुमकिन नहीं है, वहां तकनीकी फेंसिंग लगाकर सुरक्षा घेरा अभेद्य बनाया जा रहा है। अगले 2 में देश की सीमाएं दुश्मनों से पूरी तरह सुरक्षित हो जाएंगी, फिर कोई भी भारत की सरहदों को भेदने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने व्यापक दौरे के क्रम में केंद्रीय मंत्री शुक्रवार को भुज में उपस्थित थे। उन्होंने भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा की स्थितियों की समीक्षा और अधिकारियों के साथ बैठक में हिस्सा लिया। अगली सुर्खी है, न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और समय सीमा सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट को किसी भी मामले में फैसला सुरक्षित रखने के बाद सामान्यतया 3 के भीतर निर्णय सुनाने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जमानत जैसे मामलों में और अधिक तेजी लाने की जरूरत है। अदालत ने कहा कि फैसले में देरी से वादियों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जय माल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने पीला पहन बनाम झारखंड राज्य मामले पर सुनवाई करते हुए ये दिशा निर्देश जारी किए। अदालत ने कहा कि फैसलों को सुनाने में अनावश्यक देरी न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है और इसे न्याय पाने वाले पक्षकारों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। NGT ने देश में प्रचंड गर्मी और लू के संकट पर कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर तत्काल कार्ययोजना पेश करने का निर्देश दिया जाए। NGT ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि लू देश की सबसे कम पहचानी गई पर्यावरणीय आपदाओं में एक बनती जा रही है, इसलिए आंधी तूफान का कहर भी और अन्य बातें भी इसमें शामिल होती हैं। NGT अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉक्टर अफरोज अहमद की पीठ ने कहा कि गर्मी के प्रभाव अक्सर अन्य आपदाओं की तरह नज़र नहीं आते, वह देश की सबसे उपेक्षित आपदा बनी हुई है।

भारत में मातृ शिशु स्वास्थ्य पोषण और सामाजिक विकास संकेतकों में प्रगति की तस्वीर लगातार बेहतर होती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ये शुक्रवार को जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 में से पता चलता है कि देश में अब 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिल रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने पहली से आठवीं तक के कक्षा के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए शिक्षिका पात्रता परीक्षा TET पास करने की अनिवार्यता में कोई छूट देने से इनकार कर दिया है। हालांकि कार्यरत शिक्षकों के लिए राहत की बात यह है कि शीर्ष अदालत ने TET पास करने की समय सीमा को बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 कर दिया है। पहले यह समय सीमा 31 अगस्त 2027 थी। जस्टिस दीपा शंकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने शुक्रवार को समीक्षा याचिकाओं पर दिए गए फैसले में TET की अनिवार्यता बरकरार रखी। पीठ ने कहा, ऐसा कोई तथ्य नहीं रखा गया जिसके कारण मूल आदेश की किसी तरह की समीक्षा की जाए। याचिका के तहत कोर्ट ने कहा कि याचिककर्ता को राहत नहीं दी जा सकती। हालांकि बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की निरंतरता के महत्व को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्ति का प्रयोग करते हुए कार्यरत शिक्षकों के लिए TET पास करने की समय सीमा 1 साल बढ़ा दी है। कोर्ट ने राज्यों व संबंधित प्राधिकरणों को निर्देश दिया कि TET का आयोजन नियमित रूप से किया जाए और संभव हो सके तो साल में 2 बार परीक्षा कराई जाए ताकि शिक्षकों को पर्याप्त अवसर मिल सके।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नीट यूजी पेपर लीक मामले में जब तक स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत एवं संस्थागत जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक असल समस्या खत्म नहीं होगी। और अगली सुर्खियां हैं, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया अब 3 दिन की देरी से 1 जून से शुरू होगी, पहले या 29 मई से होनी थी। अब सुर्खियां हिमाचल से जुड़ी हुई हैं। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे और अंतिम चरण का मतदान शनिवार को यानी आज होगा। इस चरण में प्रदेश की 1100

99 पंचायतों में प्रधान, उप प्रधान, वार्ड सदस्य के अलावा जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के लिए करीब 17 लाख मतदाता वोट डालेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार तीसरे चरण में 6,615 वार्डों में मतदान होगा। मतदान सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक होगा। शाम तक पंचायतों के नतीजे आ जाएंगे, जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के लिए पड़े वोटों की गिनती 31 मई को होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले और दूसरे चरण के चुनाव समाप्त होने के बाद प्रत्याशियों को सार्वजनिक स्थलों से पोस्टर और बैनर हटाने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भवनों, दीवारों, सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए पोस्टर न हटाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के विभिन्न यूजी, पीजी और प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। विश्वविद्यालय की ओर से जारी विस्तृत कार्यक्रम के अनुसार इस वर्ष कुल 37 पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं में 21,328 अभ्यर्थी शामिल होंगे। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सोलन के चेस्टर हिल्स प्रोजेक्ट में वित्तीय अनियमितताओं, बेनामी लेदान और धारा 118 के उल्लंघन के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने राज्य और केंद्र सरकार समेत प्रदेश के मुख्य सचिव, DGP, SP शिमला सोलन संजय गुप्ता, ED, CBI, आयकर विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। और अब मौसम की बात करते हैं। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश में मौसम के करबट बदलने से 8 जिलों में शिमला, कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, सिरमौर, किन्नौर, सोलन और चंबा में बारिश हुई। शिमला शहर और ऊपरी इलाकों में भारी ओलावृष्टि होने से सेब को भारी नुकसान पहुंचा है, जबकि लाहौल स्पीति, चंबा और कांगड़ा की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई है। मौसम बदलने से प्रदेश में अधिकतम तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट आई है। मौसम के बदले मिजाज से लोगों को भीषण गर्मी से काफ़ी राहत मिली है। जंगलों में लगी आग भी बुझ गई है। इसी बीच मौसम विभाग ने शनिवार को भी बारिश और अंधड़ का येलो अलर्ट जारी किया है। हिमाचल में 2 जून तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। ये थी अखबारों की आज की ताज़ा तरीन सुर्खियाँ। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है और आप सुन रहे कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: बात एक रात की। अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना। आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और साथियों की। सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। मिलते हैं आपसे एक अंतराल के बाद।
1: मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: और आइए अब ले चलते हैं आपको खेल खबरों की ओर। एशियाड में सूर्या नहीं होंगे कप्तान, टीम में आएंगे वैभव। BCCI की लॉन्ग लिस्ट में T20 कप्तान का नाम नहीं, संभावितों में सूर्यवंशी को जगह। भारतीय T20 टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव इस वर्ष 19 सितंबर में जापान में होने वाले एशियाई खेलों में भारतीय टीम के कप्तान नहीं होंगे। उन्हें BCCI ने एशियाई खेलों के संभावितों में जगह नहीं दी है। वहीं IPL में अपने बल्ले की धूम मचाने वाले 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी एशियाई खेलों के संभावितों में उनको जगह मिली है। BCCI की ओर से ली गई लॉन्ग लिस्ट में श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल भी शामिल हैं। BCCI जल्द ही इन खेलों के लिए 15 सदस्यीय टीम घोषित करेगी। राजस्थान रॉयल्स के लिए वैभव सूर्यवंशी कुछ ऐसे बन चुके हैं जैसे कभी टीम इंडिया के लिए सचिन तेंदुलकर हुआ करते थे। सचिन की तरह ही 15 साल के नाजुक से कंधों ने लगातार दूसरे मैच में टीम का बोझ उठाया और गुजरात टाइटंस के खिलाफ दूसरे क्वालिफायर में 147 गेंद में 96 रन की पारी खेली। वैभव दुर्भाग्यशाली रहे कि लगातार दूसरे मैच में शतक के बेहद करीब जाकर चूक गए। इससे पहले एलिमिनेटर मैच में वे सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 29 गेंद में 97 रन बनाकर आउट हो गए थे। भारतीय महिला हॉकी टीम ने शुक्रवार को मेजबान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे मैच में 2-0 से जीत हासिल की। भारत ने 4 मैचों की महिला मैत्री हॉकी श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना ली। भारतीय शूटर ऐश्वर्य प्रताप शुक्रवार को पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के फाइनल में उपकरण में की तकनीकी समस्या के कारण अयोग्य घोषित कर दिए गए। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की भ्रष्टाचार विरोधी व सुरक्षा इकाई ने IPL में स्मार्ट चश्मे पर पाबंदी लगा दी है। सभी टीमों के खिलाड़ियों, सहायक स्टाफ व अन्य मैच अधिकारियों को एडवाइजरी जारी हुई है। दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनल मेसी छठी बार फीफा विश्व कप में खेलने उतरेंगे। अर्जेंटीना के कोच लियोनल स्कालोनी ने फीफा विश्व कप 2026 के लिए 26 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। ये थी आज की खेल खबरें। अब सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम में ले चलते हैं आपको संगीत की ओर, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक अंतराल।
1: HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: अंतराल के बाद आइए सुनते हैं गीत।
3: Thank you.

अभी आपने आशिक फिल्म का गीत सुना, आवाज़ थी मुकेश और साथियों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। फिल्म है आरती, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर। ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रभात का अंक, और 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दिन 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता

0: ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: रिगार्डिंग द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट टू कीप द प्राइस स्टेबल, इस भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की, सो दीज ऑल एफर्ट्स हैव बीन डन टू कीप द प्राइस स्टेबल। वी आर वर्किंग ऑन द स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स ऑल्सो, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को वर्कआउट करने के लिए कहा है कि एलपीजी का जो रिजर्व है दैट शुड बी मिनिमम 30 डेज विद देम एंड दे आर वर्किंग ऑन इट, एंड सिमिलरली फॉर क्रूड ऑल्सो वी आर वर्किंग।
0: संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है।
2: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री महाजन ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित की जा रही हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 6ठे चरण के आंकड़े कल जारी कर दिए। इसके अनुसार मातृ और शिशु स्वास्थ्य पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में भारत ने तीव्र प्रगति की है। सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रसव 88.6% से बढ़कर 90.6% हो गए हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2 पर बनी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार 12 से 23 महीने के बच्चों के टीकाकरण का आंकड़ा लगातार 96% से अधिक बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार मिशन परिवार विकास सहित राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों के निरंतर प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं के डिजिटल समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण में निरंतर प्रगति हुई है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी होकर 64.3% पर पहुंच गई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि आयुष्मान भारत और विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा पहलों ने स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय सुरक्षा मजबूत की है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बैठक के दौरान म्यांमा और भारत के बीच आपसी संबंधों से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत म्यांमा के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए उत्सुक है।
3: म्यांमा के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
4: दिस इज ऑफिशियल विजिट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार।
0: इस यात्रा के अंतर्गत म्यांमा के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत से संबंधित वार्ताओं और शहर के विभिन्न स्थलों पर भ्रमण के लिए 2 जून को मुंबई भी जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने

0: पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर दो नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। महाधिवक्ता तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि सरकार युवाओं के लिए चिंतित है और ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आगे ऐसी कोई चूक न हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पंजाब नगर निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के 1977 वार्ड में से 958 वार्ड जीत लिए हैं। कांग्रेस को 397, शिरोमणि अकाली दल एसएडी को 192 और भाजपा को 172 वार्ड में जीत हासिल हुई है। बहुजन समाज पार्टी को केवल 7 वार्ड मिले। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 251 वार्ड जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। गोवा आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1987 में इसी दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और वो भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज पणजी स्थित कला अकादमी में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे।
2: गोवा में आज आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह राज्य की पिछले 4 दशकों की उल्लेखनीय प्रगति और विकास यात्रा को रेखांकित करेगा। 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद गोवा दमन और दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसके बाद 1967 में हुए ऐतिहासिक जनपद संग्रह ने गोवा की अलग पहचान को बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त किया। वर्ष 1987 में कोंकणी को राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद राज्य गठन का रास्ता साफ हुआ और 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना। आज के समारोह में कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही एक कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण, पुरस्कार वितरण और नागरिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न पहलों की शुरुआत भी की जाएगी। इसके बाद उपराष्ट्रपति गोवा स्थित CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेक्काल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज बहुत तेज बारिश की आशंका जताई है। विभाग ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि की भी आशंका व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस की टीम प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई है। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। हांगकांग में चल रही एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए अब तक कुल 8 पदक अपने नाम किए। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। कल प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारतीय एथलीटों ने 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो रहा है। एक महीने तक चलने वाले निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद कनक। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आज के अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने सर्वोच्च न्यायालय का बयान दिया है, जवाबदेही तय होने तक नहीं रुकेंगे पेपर लीक मामले। देशबंधु और नवभारत टाइम्स ने CBSE की 12वीं की आंसर शीट भी डिजी लॉकर में भेजे जाने की जानकारी दी है। पत्र लिखता है, यहीं से करा सकेंगे रीवैल्यूएशन। शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पास करने की अनिवार्यता से छूट देने का सर्वोच्च न्यायालय का इनकार भी अनेक अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, समय सीमा 1 साल बढ़ी। दैनिक जागरण ने भी इस खबर को प्रकाशित किया है। पत्र ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, सरकारी शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए TET पास करना ही होगा। जनसत्ता ने कर्नाटक में कांग्रेस की बैठक आज होने का समाचार देते हुए लिखा है, DK शिव कुमार को चुना जाएगा नेता। पंजाब केसरी ने सिद्धारमैया की सिद्धि शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखा है, कर्नाटक में जितनी शालीनता और शांति के साथ कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, उसे भारतीय लोकतंत्र की जीवंत ताकत कहा जा सकता है। दैनिक जागरण ने घरेलू उड़ानों में कटौती से हवाई किराया 30% तक बढ़ने का समाचार दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी भी कई अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, अटका मॉनसून, 7 दिन के बाद देगा दस्तक, 10% कम होगी बारिश। राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, बेवफा मॉनसून। दैनिक भास्कर लिखता है, इस साल सूखे का खतरा। हालांकि पत्र ने बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तर पूर्व में अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का LPG भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. Center asks oil marketing companies to build 30 days LPG reserves as West Asia conflict persists. National Family Health Survey shows major gains in maternal and child health. Institutional deliveries rise to 90.6%. Myanmar President Min Aung Hlaing to arrive in India this morning on a 5-day visit. IMD forecasts heavy rainfall and thunderstorms across several states in the country today. Indian athletes shine at Asian Under-20 Athletics Championships in Hong Kong, clinch 7 medals including 4 gold on day 2. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Rajasthan Royals by 7 wickets to set up title clash with Royal Challengers Bengaluru. The government has asked the public sector oil marketing companies to set up liquefied petroleum gas LPG reserves for at least 30 days as the West Asia conflict persists, disrupting global energy supplies. Joint Secretary at the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, stated this while talking to reporters yesterday during the inter-ministerial press briefing on the West Asia conflict. Outlining the precautionary measures to safeguard against supply shocks, Ms. Sharma said India was also working to increase crude oil storage capacity.
5: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, Bharat Sarkar ne excise duty kam ki, So these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies ko work out karne ke liye kaha hai ki LPG ka jo reserve hai, that should be minimum 30 days with them. And they are working on it. And similarly for crude also, we are working.
4: Additional Secretary Gulf in the Ministry of External Affairs, Asim Mahajan, said that the government is closely monitoring developments in the Gulf and West Asia region. He said Indian embassies and consulates in the region are operating round-the-clock helplines to provide timely assistance to Indian nationals.
6: Our embassies and consulates in the region are operating round-the-clock helplines. We are also in close touch with the local governments. Advisories are being issued, including information related to local government guidelines, flight and travel situation, consular services, and the various welfare measures being undertaken for the community. Our missions are actively engaged with the resident Indian community. We are regularly interacting with the Indian community associations, organizations, professional groups, and Indian companies to address their concerns.
4: Director in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Upesh Kumar Sharma, informed that the merchant vessel Nissos Keros, a crude oil tanker, has safely transited the Strait of Hormuz and is expected to arrive in Visakhapatnam on the 3rd of June. He said the vessel is carrying around 270,000 metric tons of crude oil.
7: A merchant vessel, Nissos Keros, a Marshall Island flagged crude oil tanker, safely transited Strait of Hormuz on the night of 25-26 and is bound to arrive at Visakhapatnam on 3rd June. This merchant vessel is carrying crude oil, approximately 270,000 metric tons. It has all foreign crew members and is a Marshall Island flag vessel. All Indian seafarers in the region are safe.
4: The Ministry of Health and Family Welfare has released the National Family Health Survey 6, with the data reflecting India's accelerated progress in maternal and child health, nutrition and financial protection. The survey released yesterday highlights that institutional deliveries increased from 88.6% to 90.6%. We have a detailed report.
8: The National Family Health Survey 6 showed 95.9% of pregnant women received antenatal care, while mothers receiving antenatal care in the first trimester increased from 70% to 76.2%. It also said that India's total fertility rate, TFR, remains at 2 and vaccines received by children aged from 12 to 23 months remains consistently high above 96%. The Health Ministry said that these improvements underscore the continued impact of national family planning programs, including Mission Parivar Vikas. The survey also records continued advancement in women's digital inclusion and financial empowerment. It said that women who had ever used the internet nearly doubled from 33.3% to 64.3%. The survey said that Ayushman Bharat, PMJAY, and expanded health protection initiatives strengthen financial security in healthcare. With Akshit, Swati Rakheja, Akashwani News, Delhi.
4: President of Myanmar, U Minh Aung Hlaing, will arrive at Bodh Gaya in Bihar this morning on a 5-day visit to India. He will be accompanied by a high-level delegation comprising several cabinet ministers, senior officials and business leaders. This will be the first visit of President Hlaing to India in his current capacity. We have a report.
9: President of Myanmar, U Minh Aung Hlaing, will offer prayers at Mahabodhi Temple and Sujata Temple in Bodh Gaya. Later today, he will arrive in New Delhi, where he will meet External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. On Monday, he will hold discussions with Prime Minister Narendra Modi on further strengthening the historical and civilizational ties between the two countries. Briefing the media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said all issues that form the part of the gamut of relations between Myanmar and India will come up for discussions during meeting between the two leaders.
10: This is Myanmar's president's first visit and first visit to India in his official capacity right now. Myanmar is a neighbor. It lies at the confluence of India's neighborhood first, Act East and Mahasagar policies. This visit is expected to further strengthen and deepen the multifaceted relations between the two countries.
9: As a part of the visit, the Myanmar president will also travel to Mumbai on 2nd of June for business and industry interactions and site visits. With Suparna and Anupam, this is Jigyasa Pandey, Akashwani News, Delhi.
4: Outgoing Karnataka Chief Minister Siddaramaiah has called a Congress Legislative Party CLP meeting at 4 p.m. today to elect its new leader, with D.K. Shivakumar emerging as the front-runner to succeed him. Governor Thavarchand Gehlot has accepted Mr. Siddaramaiah's resignation and asked him to continue as caretaker Chief Minister until a new leader is chosen. All 136 Congress MLAs have been issued a circular to attend the CLP meeting. AICC General Secretary and Karnataka in charge Randeep Singh Surjewala

अब अंक विस्तार से। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने पोस्ट कोड 26025 के तहत इतिहास के शिक्षकों, पोस्ट कोड 26030 के तहत अर्थशास्त्र के शिक्षकों की भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने बताया कि इन दिनों दोनों श्रेणियों के पदों की परीक्षा 28 जून को होगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा से एक सप्ताह पहले आयोग की वेबसाइट पर एक लिंक का प्रावधान किया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थी अपना रोल नंबर एवं एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। रोल नंबर और परीक्षा केंद्र की जानकारी मोबाइल फोन पर SMS के माध्यम से भी भेजी जाएगी। सचिव ने सभी अभ्यर्थियों से नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट पर या अपने मोबाइल पर SMS और ईमेल का ताज़ा स्टेटस चेक करते रहने की अपील की है। मुख्यमंत्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भोरज में 31 मई को ब्लॉक समिति व जिला परिषद वार्डों की मतगणना सुबह 9 बजे शुरू होगी। मतगणना का कार्य सुचारू रूप से करने में नियुक्त 87 कर्मचारियों को प्रशिक्षित करते हुए निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं भोरंज SDM शशिपाल शर्मा ने कहा कि भोरंज ब्लॉक समिति के 22 वार्डों व जिला परिषद के 4 वार्डों की मतगणना का कार्य नियुक्त समस्त अधिकारियों कर्मचारियों को अनुशासन में रहकर तय सीमा में करना होगा।

जिला मंडी की तीन विधानसभा क्षेत्रों की सीमा पर स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मुरारी धार में आयोजित मुरारी देवी का ऐतिहासिक तीन दिवसीय मेले का विशाल दंगल समापन हो गया। मेले के अंतिम दिन हजारों श्रद्धालुओं और खेल प्रेमियों की भीड़ ने अगाध श्रद्धा का परिचय दिया।

हिमाचल सरकार ने मोटर वाहन चलानों के निपटारे और शिकायतों के समाधान के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों के चलानों की सुनवाई के लिए रेडरेसल अथॉरिटी नामित किया गया है। चलानों के मामलों में संबंधित आरटीओ को रेडरेसल अथॉरिटी बनाया गया है। सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में 14 जून तक 100% तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान अनुपालन और प्रमाणन सुनिश्चित करना होगा। इस संबंध में समग्र शिक्षा ने सभी जिला उपनिदेशकों को निर्देश जारी किए हैं। बाल वाटिका से लेकर जमा दो तक के सभी स्कूलों और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को निर्धारित 9 गतिविधियां पूरी करते हुए स्वमूल्यांकन और प्रमाणन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। हिमाचल प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत 16 जून को होगी। इस दौरान प्रदेश भर में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना की जाएगी। जनगणना के दौरान लोगों से ना तो ओटीपी मांगा जाएगा, ना ही आधार नंबर की जानकारी ली जाएगी। लोगों को परिवार और मकान से जुड़े 33 सवालों के जवाब देने होंगे। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है, यदि काउंसलिंग के समय किसी अभ्यर्थी का अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र पुराना या अमान्य पाया जाता है तो उसकी उम्मीदवारी को सीधे खारिज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में चयन समिति का यह कर्तव्य है कि वह उम्मीदवार को नया प्रमाण पत्र पेश करने के लिए उचित समय दिए। न्यायाधीश अजय मोहन की अदालत ने विभाग की कार्रवाई को कानूनन गलत बताते हुए निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता को वेटरनरी फार्मासिस्ट के पद पर नियुक्ति दी जाए। धर्मशाला स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश शीतल शर्मा ने पुलिस थाना शाहपुर में दर्ज हत्या के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने आरोपी को 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। ये था हिमाचल डायरी का आज का अंक। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 8:35 हुए हैं। अब से लेकर 9:20 तक आप सुनेंगे विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओ, 8:35 हुए हैं, अब आप सुनेंगे स्वास्थ्य चर्चा।

0: मैं सरिता सर्दी जुकाम से पीड़ित थी। सरकारी मेडिकल कॉलेज गई और जांच करवाई। पता चला मुझे स्वाइन फ्लू था। घबराई नहीं, मेरा उपचार हुआ। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ।
1: यदि आपको भी छींक व नाक से पानी बहना, खांसी और गले में खराश जैसे लक्षण हैं, ये स्वाइन फ्लू भी हो सकता है। लापरवाही ना बरतें, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, उपचार करवाएं। शीघ्र उपचार, शत प्रतिशत बचाव। सभी चिकित्सालयों में स्वाइन फ्लू की दवा बिल्कुल उपलब्ध है।
2: NHM द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार दोस्तों, स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त अंजू शर्मा। और जैसा कि आप जानते हैं कि स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दिलवाते हैं, तो आज हमारा विषय है बच्चों में नजर की कमजोरी, कारण और निदान। इसके बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर अनुश्री, ये आई स्पेशलिस्ट हैं, और डॉक्टर राधाकृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में कार्यरत हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत स्वागत।
4: आकाशवाणी हमीरपुर के सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक नमस्कार।
3: डॉक्टर साहब, हम बात करने वाले हैं बच्चों में नजर की कमजोरी की। अक्सर बुजुर्गों को ये समस्या रहती है कि आंखों की कमजोरी होती है, उनको कम दिखाई देता है, लेकिन छोटे बच्चों की अगर हम बात करें तो उनमें नजर की कमजोरी होने के क्या कारण रहते हैं?
4: बच्चों में नजर की कमजोरी के अनेक कारण हो सकते हैं। जैसे जो बच्चे टर्म से पहले पैदा हो जाते हैं यानी प्रीमेच्योर बच्चे, उनमें आरओपी यानी रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी की बीमारी हो सकती है जो एक नेत्र विशेषज्ञ ही डिटेक्ट कर पाता है। तो अगर बच्चे की टर्म से पहले जन्म हो जाए तो उसे जरूर नेत्र विशेषज्ञ से उसके आंख के पर्दे की पूरी जांच करवानी चाहिए
3: जी।
4: और भी कारण है जैसे पुतली सफेद हो जाना या सफेद मोतिया, जो कि बड़ों में ही नहीं छोटे बच्चों में भी पाया जाता है। ग्लोकोमा भी बच्चों में पाया गया है। पुतली सफेद हो जाती है जैसे विटामिन ए डेफिशिएंसी से, मीजल्स से, रूबेला से। बच्चों में रिफ्रैक्टिव एरर भी पाया गया है जिससे आंख किसी वस्तु की इमेज ठीक से नहीं बना पाती और जिसके कारण धुंधला नजर आता है
3: जी।
4: तो ये कुछ कमजोर नजर के कारण हैं बच्चों में
3: जी। डॉक्टर साहब, ये सब चीजें तो आप डॉक्टर्स ही देख पाते हैं, लेकिन किसी माँ के बच्चे को ये प्रॉब्लम है तो वो किस तरह से पहचान कर सकती है कि उसके बच्चों की आंख कमजोर है, ये क्या लक्षण रहते हैं इसके?
4: घर में अगर छोटा शिशु हो तो घर के परिजन, माता पिता ये जरूर अवश्य ध्यान में रखें कि बच्चे की आंख ज्यादा अंदर या बाहर को तो नहीं घूम रही, ज्यादा आंखें मल तो नहीं रहा, आंखें लाल रह रही हों, या सिर में दर्द बता रहा हो, सिर टेढ़ा करके देख रहा हो, ज्यादा प्रकाश से बच्चे को देखने में परेशानी है, सेंसिटिविटी हो रही है, आंख की पुतली सफेद नजर आ रही है
3: जी,
4: बड़ा बच्चा पास से ज्यादा टीवी देख रहा है, किताब को ज्यादा करीबी से पढ़ रहा है, आँख को बार बार मलना, ऐसा कोई भी लक्षण सामने आए तो अपने तुरंत नजदीकी आई स्पेशलिस्ट को जरूर दिखाएं
3: जी। डॉक्टर साहब, नजदीक से टीवी देखना या नजदीक से मोबाइल का यूज करना, कई बार बच्चे नजर कमजोर नहीं भी होती तो टीवी के बिल्कुल नजदीक बैठते हैं, तो वो भी एक कारण रहता होगा आंखें खराब होने का, या मोबाइल का बहुत ज्यादा यूज करते हैं या कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, क्या ये भी एक कारण माना जा सकता है?
4: मोबाइल या टीवी ज्यादा उपयोग करने से बच्चों की आंखों में ड्राइनेस भी आ जाती है, और उसमें ये भी पाया गया है कि इनमें स्क्विंट यानी तिरछेपन भी होने की, स्पेशली मोबाइल में ज़्यादा यूज़ करने से तिरछेपन का भी संभावना बढ़ जाती है। तो मोबाइल और टीवी कम से कम उपयोग करें, बच्चों को स्पोर्ट्स या एक्टिविटीज़ में और इंगेज करें
3: जी,
4: जिससे ये बैड हॉबीज ही कहा जाएगा मोबाइल और टीवी, इससे ये बचें
3: जी। जैसे कि आपने कहा कि आंखों का तिरछापन, तो मैं आपके माध्यम से ये भी जानना चाहूंगी कि बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो वो तिरछा देखते हैं यानी वो प्रॉपर फोकस नहीं कर पाते, तो आप हमें बताइए कि बच्चे की नजर जो है अगर जरूरत से ज्यादा वो तिरछा देख रहा है तो क्या ये भी एक डिफेक्ट है, और कब माता को बिल्कुल सावधान हो जाना चाहिए कि अब बच्चे को नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिखाने की बहुत ज्यादा जरूरत है?
4: ये आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, बहुत अहम बात कही है जिसको हम बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। बच्चा 2 महीने के बाद से, 2 महीने की उम्र के बाद से फोकस करना स्टार्ट करता है
3: जी।
4: और सबसे पहले अपने माता पिता को देखेगा और स्माइल करेगा यानी मुस्कुराएगा उन्हें देख के
3: जी।
4: 3 महीने तक वो आंख घुमाना भी शुरू करेगा, वस्तुओं को पकड़ने की भी कोशिश करेगा। 4 से 6 महीने तक तिरछापन कभी कभी होता है जो कि नॉर्मल भी कहा जा सकता है, और अगर 6 महीने के बाद भी तिरछापन रहे तो ये अबनॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है। बच्चे को लेके आप तुरंत आई स्पेशलिस्ट को जरूर दिखाएं और पूरी जांच करवाएं
3: जी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि ये आंखों के तिरछापन होने के कारण क्या रहते हैं?
4: आँखों में तिरछापन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो कि मैंने पहले भी बताया था, रिफ्रैक्टिव एरर। रिफ्रैक्टिव एरर ज़्यादा है तो बच्चे को धुंधला नज़र आएगा, वो वस्तु की इमेज फोकस नहीं हो पाएगी, उससे आँख में तिरछापन आ जाएगा। और अगर

0: और भी कई कारण हैं, जैसे कि आँख की पुतली सफ़ेद हो जाना, या पीछे पर्दा बहुत कमज़ोर है तो वो बच्चा उस आँख को इस्तेमाल नहीं करेगा और वो आँख भी तिरछी हो जाएगी।
1: जी
0: करीब कुछ प्रतिशत बच्चों में कोई कारण नहीं पाया जाता, तो इसका भी इलाज संभव है। इसको भी दिखाना होता है, जिसका इलाज या तो चश्मे से या सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है इनका।
1: जी डॉक्टर साहब, इन सब लक्षणों के साथ जब कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को आपके पास लेकर आते हैं, तो आप उस बच्चे को कौन से टेस्ट एडवाइस करती हैं?
0: अगर बहुत छोटा बच्चा है तो वो हमारा विजन चार्ट तो नहीं पढ़ पाएगा, तो हम उसको अच्छे से देखते हैं, चीज़ें दिखाते हैं, वो कितनी दूर की चीज़ें देख पा रहा है। और अगर बड़ा बच्चा है जो स्कूल जाने लायक है, तो वो हमारा विजन चार्ट पढ़ लेता है, उसके बेसिस पे हम उसकी विजन रिकॉर्ड करते हैं, उसके आँख का एंटीरियर सेगमेंट, पुतली और उसके आँख के पीछे का पर्दा देखते हैं कि सब नॉर्मल लिमिट्स में हैं। पूरी जांचें करने के बाद ही और टेस्ट्स लिखते हैं जहां हमें परेशानी दिखती है, जिसके लिए और भी टेस्ट हैं जैसे VP ERG, जो कि बहुत छोटे बच्चों में किया जाता है।
1: जी डॉक्टर साहब, ये नज़र की कमजोरी होना, क्या ये हेरिडिटरी प्रॉब्लम भी हो सकती है?
0: हाँ जी, ये हेरिडिटरी बीमारियों की वजह से भी हो सकती है। कई पर्दे की प्रॉब्लम, रेटिना की प्रॉब्लम्स हेरिडिटरी भी होती हैं, कई कंजेनाइटल ग्लोब अबनॉर्मेलिटीज भी होती हैं, इसमें कुछ प्रतिशत बीमारियाँ हेरिडिटरी भी हैं।
1: और डॉक्टर साहब, अब बातों के साथ साथ हमारे कार्यक्रम में म्यूजिकल ब्रेक लेने का वक्त आया है, तो आप हमारे स्टूडियो में आई हुई हैं। आप हमें बताइए कि कौन सा गीत आप अपनी पसंद का हमारे श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगी?
0: मुझे गाइड का एक गाना बहुत पसंद है, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है।

0: जी डॉक्टर साहब, गाने के बाद फिर से हम अपने टॉपिक पे आते हैं। और जैसे कि हम अपने श्रोताओं को बता रहे हैं कि बच्चों में आँखों की दृष्टि कमज़ोर होने के क्या कारण रहते हैं और किस तरह से उसमें सुधार किया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, जैसे आँखों की कमज़ोरी के बहुत सारे कारण आपने बताए, इसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि डाइट का क्या रोल रहता है आँखों की रोशनी में?
1: डाइट का अहम रोल है बच्चों की आंखों की रोशनी में। हमारे यहाँ इंडिया में स्पेशली बच्चों में विटामिन ए डेफिशिएंसी पाई गई है, जिसके कारण बच्चों की नज़र चली जाती है। तो अब इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में विटामिन ए ड्रॉप्स भी दिए जाते हैं,
0: जी
1: तो पूरा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल ज़रूर फॉलो करें। बच्चों को डायरिया हो जाए या मीजल्स हो जाए तो इसके अलावा एक्स्ट्रा डोज दी जाती है विटामिन ए की। बच्चों का आहार का भी ध्यान रखना चाहिए, उन्हें हरी सब्जियां, दूध और पीले फल स्पेशली ज़रूर खिलाने चाहिए। इनमें विटामिन ए भी होता है और मिनरल्स एंड विटामिन्स भी होते हैं। कोशिश करें कि वो टीवी और मोबाइल कम से कम इस्तेमाल करें
0: जी
1: और स्पोर्ट्स में, खेल कूद में भी अवश्य भाग लें।
0: जी स्पोर्ट्स की आपने बात कही, तो खेलते समय बच्चों को किस तरह से सावधानी रखनी चाहिए कि उनकी आंखें ठीक रहें?
1: हाँ जी, ये तो है कि क्रिकेट की बॉल से और इससे बहुत इंजरीज होती हैं बच्चों को। कोशिश करें कि तेज़ गेंद से ना खेलें, शार्प चीज़ हो जैसे स्कूल में पेंसिल, पेन, कंपस, इससे चोट ना लगाएं, इससे बचें।
0: जी, इन सारी बातों के लिए मदर्स को और टीचर्स को ज़्यादा ध्यान देने की
1: हाँ जी,
0: ज़रूरत
1: हाँ
0: होती
1: जी,
0: है ना?
1: हाँ जी,
0: क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उनको नहीं पता होता कि क्या सीरियस बात हो सकती है इससे,
1: हाँ
0: क्या
1: जी,
0: इसका अफेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर हम थोड़ी सी अपनी तरफ से सावधानी रखें तो बच्चों की आंखों को हम ठीक रख सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि माताएं क्या करें अपने तौर पर कि बच्चों की आंखों की रोशनी बिल्कुल ठीक ठाक रहे?
1: बच्चों का आहार का ध्यान रखें और बच्चा टीवी और मोबाइल कम से कम इस्तेमाल करे। और बच्चों में ये ध्यान रखें कि कोई भी लक्षण हो जो उन्हें लगे, मैंने पहले भी बताया जैसे तिरछापन या आंख बार बार मलना या सिर में दर्द बताना या सर टेढ़ा करके देखना, कोई भी उन्हें लक्षण लगे, कोई भी उन्हें शंका हो कि नहीं ये बच्चा कम देख रहा है, रात को बच्चा नहीं देख पा रहा और अंधेरे में नहीं देख पा रहा, बार बार गिर रहा है, तो हो सकता है उसमें उसकी नज़र कमज़ोर हो, इस
0: जी
1: कारण वो अंधेरे में नहीं चल पा रहा बच्चा, तो आप तुरंत आई डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं।
0: जी डॉक्टर साहब, अब कार्यक्रम में एक और गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे। आप बताइए कि कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे और हमारे श्रोताओं को भी सुनवाना चाहेंगे?
1: तू जहां मैं वहां, फ्रॉम सरनाम नमस्ते।
0: जी डॉक्टर साहब, हम तो यही हैं, आपके साथ हैं, और गाना हम जरूर अपने श्रोताओं तक पहुंचा रहे हैं। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: डॉक्टर साहब, इसके अलावा आप हमारे श्रोताओं को आई केयर के रिलेटेड कोई मैसेज भी देना चाहेंगी?
1: मैं सभी श्रोताओं को ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप खुद से इलाज या केमिस्ट के द्वारा इलाज प्लीज़ मत लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर वो इलाज गलत होता है और ज़्यादा नुकसान करता है आँखों को। कोई परेशानी हो तो यहाँ 24 घंटे डॉक्टर होते हैं, दिन में ओपीडी होती है, रात को इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध हैं सरकारी हॉस्पिटल में। आप प्लीज़ ज़रूर आएं और यहीं पे सलाह लीजिए। और बच्चों में चोट लगने की संभावना भी ज़्यादा होती है, जैसे कि खेल कूद में या पटाखों से जो दिवाली पे होते हैं, होली के रंग, अगर होली के रंग अडल्ट्रेटेड हों तो उनसे भी रिएक्शन हो जाता है, केमिकल इंजरीज हो जाती हैं। तो इन सब से सावधानी ही बचाव है।
0: जी।

0: नॉर्मल चेकअप ज़रूर हॉस्पिटल में करा लेना चाहिए, 3 से 5 साल की उम्र में पहला चेकअप,
1: जी
0: जिसमें पूरा विजन टेस्टिंग होता है, ताकि बच्चे को स्कूल में ब्लैक बोर्ड देखने में परेशानी ना हो, और अगर उसके चश्मे का नंबर है या कुछ तो वो चश्मा पहले ही लग जाए उसे।
1: जी डॉक्टर साहब, ये बात आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बताई हमारे श्रोताओं को कि अगर बच्चा स्वस्थ भी है तब भी उसकी आंखों का चेकअप एक बार ज़रूर करवा लेना चाहिए। आपने बच्चों की आंखों की कमजोरी के कारण और उनके निदान के बारे में इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
2: इस घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता।
3: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। 9 बजने वाले हैं, अब से लेकर 9:20 तक आप सुनेंगे विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

आपने ट्यून किया है भारत नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम चित्रलोक में।

चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। ये प्यारा सा गाना भी आप सुन रहे थे कदर टू फिल्म से, विशाल मिश्रा, नीति मोहन और साथियों की आवाज़ें, गीतकार थे सईद कादरी और संगीतकार मिथुन। दोस्तों आज है इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो यानी अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस। इसका उद्देश्य आलू के पोषण, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा में उसके महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है।

आलू विश्व की प्रमुख खाद्य फसलों में से एक है। ये हर आय वर्ग के भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। भारत सहित अनेक देशों में आलू की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। ये किसानों की आय बढ़ाने में भी सहायक है। आलू से अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, जैसा कि हम लोग रोज़ खाते भी हैं, इसलिए इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। आलू की खेती और उससे बनने वाले नाना प्रकार के व्यंजन आजीविका का महत्वपूर्ण साधन उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए इस वर्ष की थीम भी शायद यही बात कह रही है। इस वर्ष की थीम है वेयर पोटैटोज ग्रो लाइवलीहुड्स फ्लरिश। तो चलिए चित्रलोक कार्यक्रम में आगे बढ़ा जाए और आपको सुनवाते हैं ये

0: अभी आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान की आवाज में पिंटू की पप्पी फिल्म का गाना। रमन रघुवंशी ने लिखा इसे और संगीत से संवारा डॉक्टर निट्स ने। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: कुछ रे

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए रश्मि रॉकेट फिल्म का गाना। आवाजें हैं भूमि त्रिवेदी और साथियों की, कौसर मुनीर के बोल और तर्ज अमित त्रिवेदी की।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 9:20 होने को हैं। बस थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप हेमंत शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे व अंतिम चरण के चुनावों के लिए परिषद व पंचायत समिति सदस्यों तथा चार नगर निगमों के लिए मतगणना की तैयारियां पूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 31 मई को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ साझा करेंगे विचार। और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत ऊना जिले में पांडुलिपियों के दस्तावेजीकरण। प्रदेश में आज तीसरे व अंतिम चरण के लिए मतदान जारी है। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ, जो दोपहर 3 बजे तक चलेगा। मतदान के तुरंत बाद पंचायतों में प्रधान, उप प्रधान और सरपंचों के लिए पड़े वोटों की गिनती होगी, जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुए मतदान की गिनती कल 31 मई को होगी। इसी दिन प्रदेश के चार नगर निगमों सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला के लिए हुए चुनाव की मतगणना भी की जाएगी। आज प्रदेश की 1187 पंचायतों में वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में करीब 16 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न करवाने के लिए प्रशासन और पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं।
1: ये आज हमारा 7 बजे से प्रातः से तीसरे चरण का मतदान जो है वो शुरू हो गया है। आज टोटल हमारी 1199 पंचायतें जो है पूर्ण हो रहा है, और इस पूर्ण को कंडक्ट करने के लिए हमारी 6615 पोलिंग पार्टीज गई हैं। और इस चरण में हमारे 15,40,324 मतदाता जो है वो अपने पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों को चुनेंगे। इससे पूर्व जो हमारे फर्स्ट और सेकंड फेज में निर्वाचन हुए थे, तो पहले चरण में हमारे 1293 पंचायतों में चुनाव हुआ था, और उसके बाद सेकंड फेज में हमारी 1276 पंचायतों में चुनाव हुआ। थर्ड फेज में आज लोगों में काफी उत्साह है, तो उम्मीद है कि आज 2021 में हमारा 78% रहा था। दो चरणों में शांतिप्रिय चुनाव हुए हैं, और चरण में पूरी आशा है कि हिमाचल प्रदेश वैसे भी शांतिप्रिय स्टेट है, और चुनाव जो है वो यहाँ पे पूरी उम्मीद है कि शांतिप्रिय ही रहेगा। पंचायतों के नतीजे हैं।

0: वो शाम तक आ जाएंगे।
1: इस बीच शिमला के रामपुर में नैन पंचायत के वार्ड नंबर 1 में नोटा स्टाम्प के साथ स्वास्तिक चिन्ह स्टाम्प इस्तेमाल होने से चुनाव स्थगित हुआ था। इस पंचायत में भी आज ही मतदान संपन्न करवाया जा रहा है। सिरमौर जिला में 89 पंचायतों में मतदान जारी है। मतदान सुबह ठीक 7 बजे शुरू हुआ, जो सायं 3 बजे तक चलेगा। जिले में 515 बूथों पर वोट डाले जा रहे हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे सिरमौर जिला संवाददाता।
2: पंचायती राज चुनाव के अंतिम चरण में सिरमौर जिला में आज 89 पंचायतों में मतदान किया जा रहा है। सुबह ठीक 7 बजे ये मतदान प्रक्रिया शुरू हुई है, जो दोपहर बाद 3 बजे तक चलेगी। सिरमौर जिला में 515 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां तमाम पुख्ता इंतजाम प्रशासन द्वारा किए गए हैं, ताकि यहां निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न करवाया जा सके। मतदान को लेकर मैदानी इलाकों में बढ़ती गर्मी को देखते हुए लोग सुबह के समय मतदान के लिए अधिक संख्या में आगे आ रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।
1: इधर सोलन जिला में आज तीसरे व अंतिम चरण के लिए जिला की 82 ग्राम पंचायतों में मतदान जारी है। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने बताया कि इन ग्राम पंचायतों में कुल 1,08,156 मतदाता हैं। इनमें 55,123 पुरुष तथा 53,033 महिला मतदाता हैं। निर्वाचन के लिए कुल 490 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। जनजातीय जिला किन्नौर में तीनों विकास खंडों की 26 पंचायतों में मतदान जारी है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारी किन्नौर जिला संवाददाता।
3: जिले के तीनों विकास खंडों की 26 पंचायतों में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान शुरू होते ही विभिन्न मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली। महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों में मतदान को लेकर विशेष उत्साह देखा जा रहा है। कल्पा विकास खंड की रोगी, तेलिंगी, शुदारंग, रुबनी, मेबर, चांसू, थेमगारंग और बड़सेरी पंचायतों में मतदान जारी है। वहीं पूर्व विकास खंड की चांगो, लियो, डुबलिंग, नेसंग, सुन्नम, ठंगी, आसरंग, रारंग और चारंग पंचायतों में भी मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चयन कर रहे हैं। इसके अलावा निचार विकास खंड की चौरा, तरांडा, बरी, यांगपाटू, शांगो, उर्नी, पूनंग, पानवी और पौंडा पंचायतों में भी मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। आकाशवाणी के लिए किन्नौर से मैं सुमेश नेगी।
1: उधर कुल्लू जिला के 76 ग्राम पंचायतों में मतदान के लिए 426 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिले में 99,607 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं। चंबा जिला में भी आज 86 ग्राम पंचायतों में मतदान प्रक्रिया जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस चरण के लिए विकासखंड चंबा की 15, तीसा की 17, महला की 17, सलूणी की 14 और भटियात की 23 पंचायतों में वोट डाले जा रहे हैं। चंबा के उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने मतदाताओं से लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़ कर भाग लेने का आह्वान किया है।
4: जो हमारा तीसरा फेस है, उसमें जिले के 5 ब्लॉक्स पांगी और भरमौर को छोड़ के बाकी सब जगहों पे 86 ग्राम पंचायत हैं जो तीसरे चरण में कवर की जाएंगी। मैं पुनः जिला चंबा के सभी मतदाताओं से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार उत्साहपूर्वक आपने पहले और दूसरे चरण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करी है, उसी प्रकार से अपना सहयोग हमें दें और अपने मत का प्रयोग करके चुनाव को फ्री एंड फेयर और सक्सेसफुल बनाने में हमारी मदद करें। तो ये सुनिश्चित करें कि हमारे प्रधान, उप प्रधान, वार्ड मेंबर, BDC मेंबर, जिला परिषद मेंबर ऐसे लोग हों जो आपके मुद्दों को, आपके इश्यूज को और जिला के और पंचायत के विकास को अपनी प्राथमिकता बना के कार्य करें।
1: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश के जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्यों तथा नगर निगमों के लिए मतों की गणना कल 31 मई को की जाएगी। प्रदेश के 91 विकास खंडों में ये मतगणना सुबह 9 बजे शुरू होगी। जिला परिषद वार्डों की मतगणना के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रत्येक जिला परिषद वार्ड में मतगणना के लिए 15 से 20 टेबल लगाए जाएंगे, जबकि एक वार्ड की मतगणना में करीब 35 कर्मचारी और अधिकारी तैनात होंगे। प्रदेश के 4 नगर निगमों सोलन, मंडी, धर्मशाला और पालमपुर के चुनावों की मतगणना भी कल ही की जाएगी। कुल्लू जिला के बंजार जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों

0: कि मतगणना प्रक्रिया में इस वर्ष पहली बार महिला अधिकारियों व कर्मचारियों को स्वतंत्र रूप से मतगणना कार्य के लिए नियुक्त किया गया है। महिला सशक्तिकरण व प्रशासनिक कार्यों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने की दिशा में ये महत्वपूर्ण पहल है। मतगणना कार्य को त्रुटि रहित व सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न करवाने के उद्देश्य से इन महिला अधिकारियों व कर्मचारियों का पृथक रूप से विशेष पूर्वाभ्यास भी करवाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 31 मई को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज़, DD न्यूज़, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी के द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण के माध्यम से देश की प्राचीन दुर्लभ और हस्तलिखित पांडुलिपियों को सहेजने, उनका दस्तावेजीकरण करने और उन्हें डिजिटल रूप से संरक्षित किया जा रहा है। विभिन्न परिवारों, मंदिरों, मठों, शैक्षणिक संस्थानों और संग्रहालयों में शताब्दियों से रखी पांडुलिपियों को आधुनिक तकनीक से ज्ञान भारतम मोबाइल ऐप द्वारा आम नागरिक, मंदिर या निजी संग्रहकर्ता अपनी पांडुलिपियों की जानकारी और तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं। प्रदेश के ऊना जिले में भी इस सर्वेक्षण को गति दी जा रही है। विस्तृत ब्यूरो के साथ हमारे ऊना जिला संवाददाता।
1: केंद्र सरकार का ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण ऊना जिला में प्रदेश कला, भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। सर्वेक्षण में 75 वर्ष से या उससे अधिक पुरानी पांडुलिपियां जो ताड़पत्र, भोजपत्र, कपड़ा अथवा कागज पर लिखित हों, उनको सूचीबद्ध करना और भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने हेतु विशेष प्राथमिकता दी जा रही। आम नागरिकों, धार्मिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं के संचालकों को ज्ञान भारतम मोबाइल ऐप द्वारा दुर्लभ पांडुलिपियों के चित्रों को अपलोड करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है, ताकि न केवल आने वाली पीढ़ियां इनसे ज्ञान अर्जित कर सके बल्कि हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत संबंधी ज्ञान में इजाफा हो सके। आकाशवाणी के लिए ऊना से राजेश शर्मा।
0: अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला व पंजाब केसरी की एक जैसी सुर्खी है, अंतिम चरण का मतदान आज, 1189 पंचायतों में 17 लाख वोटर चुनेंगे प्रतिनिधि। जबकि दैनिक जागरण का शीर्षक है, 1189 पंचायतों में मतदान आज, आयोग का निर्देश, लापरवाही पर होगी कार्रवाई। हिमाचल दस्तक की सुर्खी है, आचार संहिता खत्म होने के बाद 6 जून को होगी कैबिनेट बैठक। पंजाब केसरी लिखता है, सुक्खू ने 6 जून को बुलाई मंत्रिमंडल बैठक। दैनिक जागरण का कहना है, चतुर्थ श्रेणी पेंशनरों को मिलेगा एरियर। अमर उजाला की एक अन्य सुर्खी है, चेस्टर हिल्स मामले में हाईकोर्ट सख्त, राज्य और केंद्र से जवाब तलब। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे व अंतिम चरण के चुनावों के लिए 1189 पंचायतों में मतदान जारी। जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों तथा 4 नगर निगमों के मतगणना के लिए तैयारियां पूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 31 मई को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा करेंगे विचार। और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के ज्ञान भारत मिशन के अंतर्गत ऊना जिला में पांडुलिपियों के दस्तावेजीकरण को दी जा रही गति। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 9:30 हो चुके हैं। अब से लेकर 10 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
3: बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: सुनने वालों को नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे अभिनेता की जो सिनेमा के पर्दे पर बतौर विलेन भी नजर आए।
1: मैं थूकता हूं तेरी सूरत पे, थूक कर दिखाऊं? हवेली पे आ जाना, कल यहां पे हजारों लोग होंगे, पूरी पूरी फोर्स बदलवा के।

0: दूंगा मैं, हाहाकार मचा दूंगा यहाँ तक, हाहाकार।
1: तेरे बाप का राजा क्या?
2: Keep quiet विक्रम, मामा ठाकुर इससे गलती हुई है।
1: क्या बात करे सर,
0: ये बात मैं दिल्ली तक लेकर जाऊंगा।
1: चलिए अभी दिल्ली।
3: बतौर चरित्र अभिनेता भी, बतौर कॉमेडियन भी।
4: ए खालिद भाई, मेरा नंबर है।
5: अरे यार तू दोस्त है अपन का, मैं गया तू गई की
4: ना,
5: बात है।
4: ना ना ना दोस्त है तो घर पे आ।
5: क्या बात करता है, सिर्फ 50 रुपया, ये तो बहुत कम है यार। तू टेंशन मत ले यार, कोयला ले और 50 के आगे एक जीरो लिख डाल, 500 हो जाएगा, बात खत्म।
6: क्या बात सु, खालिद भाई मेरी बीवी क्या?
5: अरे सॉरी सॉरी, ये तो बहुत बुरा हुआ, सॉरी।
6: एक बार ये लिखने वाला खालिद भाई मेरे हाथ में आ जाए, मैं उसकी डेथ सर्टिफिकेट लिख डालूंगा, देखना।
5: मेरे को मालूम है किसने लिखा है।
3: और उन्होंने रंगमंच पर भी अपनी अभिनय प्रतिभा दिखाई। आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम सलाम कर रहे हैं जाने माने अभिनेता परेश रावल को। हंसता हूं।

परेश रावल का जन्म 30 मई 1950 को मुंबई में हुआ था। उनका परिवार जुहू में रहता था और उनका एडमिशन वहां जुहू स्कूल में करवा दिया गया। जब वो 11-12 साल के थे तो स्कूल के मंच पर अभिनय करने लगे और जुहू स्कूल की प्रिंसिपल ने उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने नन्हे परेश से कहा कि वो अगर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, मंच पर वो अपनी अभिनय प्रतिभा की जौहर दिखाना जारी रख सकते हैं। स्कूल की पढ़ाई इसी तरह से चलती रही। रंगमंच और पढ़ाई को किसी तरह से परेश रावल ने बैलेंस किया और फिर मुंबई के नरसी मुंजी कॉलेज में पढ़ने लगे। यहां के प्रिंसिपल ने भी परेश रावल की अभिनय प्रतिभा को समझा और उनके साथ सहयोग किया, यानी उन्हें कॉलेज के लेक्चर्स छोड़ देने की अनुमति मिल गई क्योंकि वो अपने कॉलेज के लिए थिएटर किया करते थे। परेश रावल ने अपने कॉलेज को कई प्रतियोगिताओं में जिताया। उसके बाद 1973 आया जबकि परेश रावल ने पेशेवर थिएटर ज्वाइन किया। इंडियन नेशनल थिएटर के बैनर तले उन्होंने अपना पहला प्ले किया जिसका नाम था वेन छे मौत। ये वो दिन थे जब परेश फिल्मों में काम नहीं करना चाहते थे, वो थिएटर की दुनिया में खुश थे क्योंकि यहां उन्हें अपने मन मुताबिक एक्टिंग करने मिल रही थी। लेकिन फिर उनकी नजर पड़ी नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी और अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेताओं के काम पर और तब उन्हें यह एहसास हुआ कि थिएटर के अलावा फिल्मों में भी अभिनय की दुनिया का विस्तार है। और तकरीबन 4-5 साल बाद सन 1978 से 1980 के बीच परेश रावल ने यह फैसला किया कि उन्हें फिल्मों की दुनिया में जाना है। फिल्मी दुनिया में संघर्ष करना शुरू किया। श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी, कुमार साहनी जैसे कला फिल्मों के निर्देशकों से उन्होंने समय समय पर मुलाकात की और बताया कि वो फिल्मों में काम करने के इच्छुक हैं और फिलहाल थिएटर में सक्रिय हैं। लेकिन परेश रावल का काम नहीं बना।

अब परेश को ये समझ में आ गया था कि फिल्मों में उनके लिए फिलहाल तो जगह नहीं है। वो थिएटर में अपना पूरा ध्यान लगा रहे थे। एक दिन की बात है, मुंबई के मशहूर पृथ्वी थिएटर में परेश रावल के किसी नाटक का शो चल रहा था। जाने माने प्रोड्यूसर करीम मोरानी उस शो को देखने आए और उन्होंने नेपथ्य में जाकर परेश रावल से भी बात की और बाद में निर्देशक राहुल रवेल से परेश के नाम की सिफारिश की। राहुल रवेल उन दिनों फिल्म बना रहे थे अर्जुन, और सन 1985 में परेश रावल को फिल्म अर्जुन के लिए साइन कर लिया गया। शूटिंग का पहला दिन था, पहली बार परेश रावल कैमरे का सामना कर रहे थे। उन्होंने अपना टेक इतनी अच्छी तरह से दिया कि निर्देशक राहुल रवेल ने कहा, परेश जी अब आप मेरी हर फिल्म में काम करेंगे। और इस तरह से परेश रावल थिएटर की दुनिया से होते हुए फिल्मों में चले आए। धीरे धीरे परेश रावल ने

फिल्मी दुनिया में अपने पैर जमाने शुरू किए, लेकिन इन दिनों वो नाटक करते चले जा रहे थे। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, सन 1976-77 का जमाना था। परेश रावल एक गुजराती नाटक कर रहे थे ठोकर, जो पीटर श्वाफर्स के नाटक इक्वल पर आधारित था, और इन दिनों उनकी मुलाकात हुई मॉडल और अभिनेत्री स्वरूप संपत से। परेश रावल को स्वरूप संपत से प्यार हो गया, लेकिन दिक्कत यह थी कि परेश रावल का ताल्लुक एक मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार से था और स्वरूप संपत एक अंग्रेजीदा परिवार से आई खूबसूरत मॉडल, मिस इंडिया और एक बेहद खूबसूरत नाजुक शख्सियत थी। दोनों का कहीं कोई मेल नहीं था। परेश कहते हैं कि ये उनके लिए सपनों जैसे दिन थे। आखिरकार एक दिन परेश रावल और स्वरूप संपत ने शादी कर ली।

0: परेश रावल कहते हैं कि फिल्मों में अभिनय के लिए अगर हिंदुस्तानी सिनेमा के कोई आदर्श हैं उनके लिए तो वो हैं बलराज साहनी, नसीरुद्दीन शाह और ओम पुरी। परेश रावल का ये भी मानना है कि अभिनय उन्हें बड़ा ही दिलचस्प करियर लगता है, क्योंकि एक्टिंग की दुनिया में एक जीवन में कई जीवन जीने का मौका मिलता है। अर्जुन के बाद परेश रावल को फिल्मी दुनिया में अपना नाम अच्छी तरह से कमाने का मौका मिला तो वो थी महेश भट्ट की सन 1986 में आई फिल्म नाम। इसमें भी परेश रावल ने विलेन का रोल किया था। इसके बाद तो परेश रावल ने कई फिल्मों में तरह तरह के रोल किए। कभी वो बतौर विलेन नजर आए, कभी चरित्र अभिनेता के तौर पर, और कभी आपको हंसाते हुए नजर आए, कॉमेडी करते हुए।
1: विश्वजीत, हाँ बोल, ये इसमें कौन सी साड़ी पहननी है, है?
2: पता नहीं इनकी नाम भूलने की बीमारी कब जाएगी। इतनी सारी साड़ियाँ लेकर क्या कर रहे हो?
1: अरे भाई, कल तुमने जो 15-20 साड़ी खरीदी थी ना, है ना, तो मैं ये चिल्लाते रहने का है।
3: ओहो डैडी, मेरा नाम सोना नहीं मोना है।
1: ये साड़ी की उलझन में मैं इसका नाम भी भूल गया, परिमल।
4: डैडी जी, मेरा नाम परिमल नहीं, अनमोल है।
1: ए यार, तेरे को क्या हो गया? जीसस, अभी तुमने बोला ना मेरा नाम मेथीलाल है, अभी जीसस
3: की। गेट आउट, गेट आउट।
0: परेश रावल की सबसे मशहूर कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी। परेश मानते हैं कि हेरा फेरी की सफलता का

0: सारा श्रेय जाता है इस फिल्म के लेखक नीरज वोरा को, जिन्होंने कॉमेडी को बड़ी अच्छी तरह से निभाया था।
1: बाबू भैया, आप गांव में घर है ना आपके?
2: नहीं है। क्यों
1: नहीं? क्योंकि अगर कल शाम ने आपको घर से निकाल दिया तो मेरा तो ठीक है, आप इस उम्र में कहां कुत्ते की तरह भटकोगे।
3: देख राजू, जबान को लगाम दे, समझा?
1: देखा, चोर की दाढ़ी में तिनका।
2: सच बात बोलता तो मेरे को कोरा कागज पे अपना दस्तखत दे दे रे बाबा।
4: आपको मुझ पे भरोसा नहीं?
1: ये इसके दिल में खोट है।
3: तेरे दिल में खोट है? मैं तो किराया देके रहता हूँ, तू तो मुफ्त में रहता।
1: हाँ तो मुफ्त में रहता तो क्या हुआ, मैं दस्तखत करने को तैयार हूँ।
3: तो मैं भी दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ।
1: हाँ तो करना तू।
3: हाँ तो तू भी करना।
1: हाँ तो कागज लेके आना तू।
3: तू कागज ले।
1: अरे मैं क्यों लेके आऊं?
3: मैं
1: तुम दोनों के दोनों बाहर जाओ और पेपर लेके आओ, जाओ।
2: इन दोनों के लफड़े में मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले।
1: हेलो, पेपर पे साइन किया है, इसने अभी तक नहीं किया, खोट है इसके दिल में।
3: बताओ ना, साइन कर रे बाबा, साइन कर। तू कर ले साइन, साइन कर।
5: गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है।
4: क्या हुआ? आपको गाना सुनाई दिया?
3: गाना?
1: ये सब बहानेबाजी है, मैं चैलेंज मार के बोलता हूँ ये साइन नहीं करने वाला।
3: ये तो साइन कर रहे बाबा, साइन करना, जल्दी साइन कर रहे, साइन कर।
5: गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है।
4: आपको गाना नहीं सुना दे रहा?
3: कौन सा गाना
4: साफ सुनाई दे रहा है?
1: ये गुरु घंटाल आदमी है, साइन नहीं करने वाला। मैं कहता हूँ इसका बोरिया पिस्तौल उठाओ, बाहर फेंक दो उसको।
3: ये तो साइन कर रहे, साइन कर रहे, गाना गाना लगा ले, साइन कर रहे गाने।
6: हेलो
1: हेलो, देवी प्रसाद?
3: चम्मा नहीं, देवी प्रसाद नहीं है, तुम क्या करोगे?
1: सर वो मेरी मछली का क्या हुआ?
3: वो तो मैं खा गया।
1: खा गए?
3: हाँ, वो मैं मस्त तेल में फ्राई करके वो मैं खा गया।
0: बतौर विलेन परेश रावल अपनी दो फिल्मों को बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं, एक है फिल्म डकैत और दूसरी फिल्म कब्जा। आज परेश रावल 100 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं, और एक कलाकार के लिए सबसे मुश्किल होता है अपनी कुछ प्रतिनिधि फिल्मों का चुनाव करना। लेकिन अपने एक इंटरव्यू में परेश रावल ने अपनी पसंदीदा फिल्मों के बारे में बताया है। उनकी सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है केतन मेहता की फिल्म सरदार, जिसमें उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का किरदार निभाया था। परेश रावल से जब पूछा गया कि इस फिल्म के लिए उन्होंने तैयारी कैसे की, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल से तो वो मिल नहीं सकते थे, वो इस दुनिया में नहीं है, तो परेश का जवाब था कि उन्होंने असंख्य तस्वीरें उनकी देखी और उन तस्वीरों के जरिए ये अंदाजा लगाया कि सरदार पटेल किस तरह से बोलते होंगे, किस तरह से चलते होंगे और उनका स्वभाव किस तरह का होगा। इसके अलावा उन्होंने इस अभिनय के लिए बहुत सारी रिसर्च भी की।
7: फिर वही बात, हम यहाँ पे आजादी की बात करने आए हैं, बंटवारे की नहीं। और अगर बंटवारा होना ही है तो उसका निर्णय एक आजाद देश के आजाद लोग करेंगे, अंग्रेज सरकार नहीं।
0: पूजा भट्ट की फिल्म तमन्ना को वो अपनी बहुत महत्वपूर्ण फिल्म मानते हैं, क्योंकि इस फिल्म में उन्होंने एक वृहन्नला का, एक हिजड़े का किरदार निभाया था। परेश ये कहते हैं कि ऐसे किरदार भी मानवीय होते हैं, उनका अपना संघर्ष, उनकी अपनी तकलीफें होती हैं, और इस फिल्म के जरिए उन्होंने इस तरह के चरित्र की तकलीफों को सिनेमा के पर्दे पर जीवंत कर दिया था।

0: हीरा फेरी फिर हीरा फेरी, आंखें आवारा पागल दीवाना, गरम मसाला, दीवाने हुए पागल, मालामाल वीकली, गोलमाल, हलचल, छुप छुप के, भागम भाग, शंकर दादा, भूल भुलैया, वेलकम, मेरे बाप पहले आप, दे दनादन और हंगामा जैसी ना जाने कितनी फिल्में हैं जिनके जरिए परेश रावल ने आपको हंसाया है।
1: और नाचते नाचते तुम्हारे पांव कहां पड़ रहे थे और घुंघरू किस ताल में बज रहे थे वो मैं अच्छी तरह समझ गया हूं। अब जब तुम्हारी चोरी सामने आ गई है तो उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा कर लौंडे के साथ गुलछर्रे उड़ाने का बहाना बना रही हो।
2: अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे?
1: अरे नौटंकी, मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? क्या बेवकूफ समझ रखा है मुझे? इतना याद रखना, हम सब समझ गया हूँ और ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। और ये जो महंगी महंगी साड़ी है जो तुम्हारी इस गोल घूमर जैसे बदन को पहनाई है उसका क्या? और दिन रात जो तरह तरह के खाने जो तुमने चाट चाट के रसोई घर में खाए हैं उसका पैसा कौन देगा?
0: सन 1994 में परेश रावल को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला फिल्म वो छोकरी के लिए, और फिल्म सर के लिए उन्होंने जीता फिल्म फेयर पुरस्कार।
3: हम लोगों को इतना खुश देखकर आपको अजीब लग रहा है ना? मैं बताता हूँ, बात यह है कि जब ये छोटी थी ना तो खुश रहती थी, खेलती रहती थी, हाँ, लेकिन जिस दिन से इसकी माँ गई है ना, चुप हो गई है, घर एकदम शमशान हो गया था। और इतने साल के बाद आपने सर पे हाथ रख दिया, मेरे घर में जान आ गई है।
0: सन 2001 में फिल्म हेरा फेरी के लिए परेश रावल चुने गए सर्वश्रेष्ठ कॉमेडियन फिल्म फेयर की ओर से। सन 2003 में आवारा पागल दीवाना फिल्म के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ कॉमेडियन का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता।
4: मेरा गला बैठने को आया है? तू क्या काम दुकान पे बेच के आया है? है साला बेरा, इधर कचरा नहीं डालने का? ये तो तू नया है ना, इसके लिए मैं प्यार से बात करता हूँ। ये गुलाब वाले, तेरा नाम क्या है?
5: लिसन जेंटलमैन।
4: लिसन जेंटलमैन, ये साला कौन सा नाम है? समझ में नहीं आता, इधर कचरा नहीं डालने का।
5: I'm sorry.
4: अबे सॉरी क्या, इंडिया समझा? गुना करो, सॉरी बोलो, चलता बनो। अब ये साला घन चक्कर को मैं एक कलाक से समझा भी नहीं, थकी गया। इधर कचरा नहीं डालने का, इसको बोल इधर से कचरा उठावे वरना।
0: परेश रावल की एक महत्वपूर्ण फिल्म है अंदाज अपना अपना, जिसमें वो सलमान खान और आमिर खान के साथ नजर आए थे। परेश रावल रंगमंच पर भी सक्रिय हैं, उनकी कंपनी टेलीविजन के लिए सीरियल्स बनाती है और उन्होंने एक फिल्म का निर्माण भी किया है, ओ माई गॉड। ये फिल्म गुजराती के एक प्रसिद्ध नाटक पर आधारित थी।
6: किसे भेजनी है नोटिस?
7: भगवान को।
6: मिस्टर भगवान? सरनेम?
7: पता नहीं, क्योंकि हम लोग मिले नहीं है।
6: अरे कहीं तो रहता होगा मिस्टर भगवान। अरे ये नोटिस किसे भेजूं?
7: हाँ, लोग कहते हैं कि वो मंदिरों में रहते हैं।
6: अच्छा है?
8: भगवान, भगवान।

0: सन 2014 में भारत सरकार ने परेश रावल को पद्मश्री से सम्मानित किया था। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जाने माने अभिनेता परेश रावल पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: थी धन्य वो उनकी जवानी।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 10 बजने वाले हैं। बस थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउ लयान 5 दिन की भारत यात्रा पर आज बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी शामिल होगा। राष्ट्रपति के रूप में ओ मिन आउ लयान की यह पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की, so these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies को workout करने के लिए कहा है कि LPG का जो reserve है, that should be minimum 30 days with them, and they are working on it. And similarly for crude also, we are working.
0: सुश्री सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरक केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव वसीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। पोत पत्तन परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोस कोरोस हुरमुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। इस पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि गोवा न केवल अपने समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार अतिथि सत्कार के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि शिक्षा, प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप और सतत विकास में उल्लेखनीय प्रगति के लिए भी जाना जाता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह अवसर उन सभी को याद करने का है जिन्होंने राज्य की प्रगति और पहचान के लिए अथक परिश्रम किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पत्रकारों, लेखकों और हिंदी भाषा के लिए समर्पित प्रबुद्ध व्यक्तियों को हिंदी पत्रकारिता दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री

0: बिरला ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता ने सामाजिक चेतना जगाने, लोकतंत्र को सुदृढ़ करने और लोगों की भावनाओं को अभिव्यक्त करने के सशक्त माध्यम के रूप में कार्य किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी पत्रकारिता ने जन जागरूकता को बढ़ावा देने, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्रीय एकता मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम विधायक दल की बैठक बुलाई है। उसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। नए नेता के चुने जाने तक उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने का निर्देश दिया गया है। सभी 136 कांग्रेस विधायकों को बैठक में उपस्थित रहने को कहा गया है। ओडिशा में आज मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाले निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी। और खेलों में हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक 8 पदक जीत लिए हैं। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल है। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। वहीं IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस फाइनल में पहुंच गया है। न्यू चंडीगढ़ में कल उसने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 10:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे लघु वार्ता।

लघु वार्ता सुनने वालों को हमारा नमस्कार। जी हाँ, आपसे हम बहुत से विषयों पर चर्चा करते रहते हैं, कभी नैतिक मूल्यों पर, कभी नारी की सुरक्षा के ऊपर, कभी हम सरकार की कई नीतियों पर चर्चा करते हैं, लेकिन आज का महत्वपूर्ण विषय जो हमारे वार्ता का है वह है औषधीय पौधे। जी हाँ, औषधीय पौधे स्वास्थ्य, आजीविका और पर्यावरणीय सुरक्षा का आधार हैं। आज हम आपसे ऐसी अमूल्य धरोहर की बात करने जा रहे हैं जो ना बोलती है ना शिकायत करती है, लेकिन फिर भी हमें जीवन देती है, स्वास्थ्य देती है, स्वच्छ वायु देती है और भविष्य की आशा भी देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं औषधीय पौधों की। जरा कल्पना कीजिए, यदि धरती पर पेड़ ना होते तो क्या होता? ना शुद्ध हवा होती, ना भोजन होता, ना छांव होती और शायद अनेक ऐसी दवाइयां भी नहीं होती जिन्होंने लाखों लोगों का जीवन बचाया है। सदियों से प्रकृति मानव की पहली चिकित्सक रही है। जब ना अस्पताल थे ना आधुनिक दवाइयां, तब हमारे पूर्वज जंगलों और पौधों में ही उपचार खोज लेते थे। आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और लोक चिकित्सा की परंपराएं इसी प्राकृतिक ज्ञान की अमूल्य विरासत हैं। हम आपको बता दें, भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में है जिन्होंने प्रकृति ने जैव विविधता का अनमोल खजाना प्रदान किया है। हिमालय की ऊंची चोटियों से लेकर पश्चिमी घाटों तक, रेगिस्तानों से लेकर घने वनों तक, हजारों प्रकार के औषधीय पौधे हमारे देश की पहचान हैं। लेकिन आज यह धरोहर खतरे में है, संकट में है। वजह, तेजी से बढ़ता शहरीकरण, जंगलों की कटाई, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हमारे औषधीय पौधों के लिए अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। देखिए, जबकि कोई जंगल कटता है तब केवल पेड़ ही नहीं गिरते, बल्कि संभव है कोई ऐसी औषधि भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है जो भविष्य में किसी असाध्य रोग का इलाज बन सकती थी। कई बार हम गर्मियों में आग लगा देते हैं, कोई शरारत कर देता है, कोई जानबूझकर आग लगाता है। अब देखिए, जंगल में ऐसी ऐसी

औषधियाँ होती हैं जो आग लगने की वजह से नष्ट हो जाती हैं। वही औषधियाँ हमारे लिए भविष्य में किसी असाध्य रोग का इलाज बन सकती थी, लेकिन हमारी गलती के कारण ये सब खत्म हो जाता है। जी हाँ, सोचिए, यदि प्रकृति की यह जीवित औषधि पुस्तक ही नष्ट हो गई तो आने वाली पीढ़ियों को हम क्या सौंपेंगे? औषधीय पौधे केवल स्वास्थ्य का आधार नहीं हैं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी बन सकते हैं। इनकी खेतीबाड़ी भी हम कर सकते हैं, इसके कारण हमारी आर्थिकी भी सुदृढ़ होती है। आज देश के हजारों किसान औषधीय पौधों की खेती करके अपनी आय बढ़ा रहे हैं। बढ़ती हुई वैश्विक मांग के कारण हर्बल उत्पादों और प्राकृतिक औषधियों का बाजार तेजी से विस्तार कर रहा है। यह केवल खेती नहीं बल्कि हरित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ता हुआ एक सशक्त कदम है। विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों के किसानों के लिए औषधीय पौधों की खेती रोजगार और आत्मनिर्भरता का एक नया मार्ग खोल सकती है। लेकिन विकास तभी सार्थक है जब वह प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर किया जाए। यदि हम केवल लाभ कमाने के लिए प्रकृति का दोहन करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब ना जंगल बचेंगे, ना औषधीय पौधे, ना ही हमारा पर्यावरण। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन के संकट से जूझ रही है, उसकी वजह हम हैं। कहीं भयंकर गर्मी है, कहीं सूखा, कहीं बाढ़, कहीं अनियमित वर्षा। इन बदलते मौसमों का प्रभाव हमारे औषधीय पौधों पर भी पड़ रहा है। अनेक प्रजातियां धीरे धीरे विलुप्त के कगार पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन यही पौधे इस संकट का समाधान भी हैं। पेड़ पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, मिट्टी को सुरक्षित रखते हैं, जल स्रोतों को संरक्षित रखते हैं और पृथ्वी के तापमान को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अर्थात यदि हम प्रकृति को बचाएंगे तो प्रकृति भी हमें बचाएगी। आज आवश्यकता केवल सरकारी योजनाओं की नहीं बल्कि हमारी जन भागीदारी की बहुत जरूरत है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में एक औषधीय पौधा लगाए, यदि प्रत्येक विद्यालय एक हर्बल गार्डन विकसित करे, यदि प्रत्येक गांव अपनी जैव विविधता की रक्षा करे, तो यह एक राष्ट्रीय आंदोलन बन सकता है। तुलसी, आंवला, गिलोय, अश्वगंधा, एलोवेरा जैसे पौधे न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं बल्कि हमें प्रकृति से जोड़ने का माध्यम भी हैं। हमें अपने बच्चों को मोबाइल और इंटरनेट के साथ साथ प्रकृति की भाषा भी सिखानी होगी, क्योंकि आपको पता है जो पीढ़ी प्रकृति से जुड़ी होगी वही भविष्य को सुरक्षित रख पाएगी। एक बात और हम आपसे साझा करने जा रहे हैं, वो ये है हम पृथ्वी अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं लेते बल्कि अपने बच्चों से उधार लेते हैं। इसलिए यह हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरा भरा, स्वस्थ और समृद्ध भारत छोड़कर जाएं। आइए आज हम संकल्प लें कि हम औषधीय पौधों का संरक्षण करेंगे, प्रकृति का सम्मान करेंगे और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाएंगे। क्योंकि जब हम एक पौधे को बचाते हैं तब हम केवल एक पौधे को नहीं बल्कि स्वास्थ्य, संस्कृति, आजीविका और भविष्य को सुरक्षित करते हैं। देखिए, यदि धन खो जाए तो कुछ भी नहीं खोता, यदि स्वास्थ्य खो जाए तो बहुत कुछ खो जाता है, लेकिन यदि प्रकृति खो जाए तो समझिए सब कुछ ही खो गया। आइए प्रकृति को बचाएं, औषधीय पौधों को अपनाएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भारत का निर्माण करने का हम संकल्प लें।

अभी आप सुन रहे थे लघु वार्ता औषधीय पौधे स्वास्थ्य आजीविका और पर्यावरणीय सुरक्षा का आधार। ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.5।

आज का शीर्षक कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजय शर्मा का नमस्कार। देखिए, आज मौसम ने करवट ली है। मौसम कहते हैं कूल कूल हो गया है, पानी का एक बहाव हमारी तरफ आया है, रिमझिम बुहारें बरसी हैं और इत चिलचिलाती गर्मी में मौसम भी कूल कूल हो चुका है। तो चलिए, आज का शीर्षक है पानी।

शोर फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ थी मुकेश और लता मंगेशकर की, एक ही शीर्षक से। यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

कहीं और चल। अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना। आवाज़ें थी लता मंगेशकर और साथियों की। कार्यक्रम एक ही शीर्षक से आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। आज का शीर्षक है पानी। तो आइए सुनते हैं एक और गीत।

अपना देश, अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना। आवाज़ थी लता मंगेशकर की। कार्यक्रम एक ही शीर्षक से आप सुन रहे हैं FM हमीरपुर से। आज का शीर्षक है पानी। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: एक ही शीर्षक से ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।
1: बोल सहेली बोल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही शीर्षक से। आज का शीर्षक था पानी। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 10:45 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक रंग।

लोक रंग कार्यक्रम सुनने वाले सारे श्रोतियां जो असां दा प्यार भरा नमस्कार। दिखा अज मौसम ने बड़ी अच्छी करवट बदली है। मौसम बड़ा ठंडा ठंडा हो चुके है। बरखा दियाँ फुहारा भी पवा कर दियाँ। इस गर्मी च दियाँ नौतप्पा लगे उथे, लेकिन नौतप्पा जड़ा सा 25 मई ते 2 जून तक चलना तय है, लेकिन इस दे बिच ही 24 दिन बाद बरखा का होना भी एक नवी गल हो गई है। खैर, ये प्रकृति है अपने ढंगने चलती, इंसान अपने ढंगने चलता, लेकिन प्रकृति भी जैलू साढ़े ढंगे सौगी चलती, जैलू असा प्रकृति जो अपने किसी निर्देश मुताबक हाँ चलते हैं। तो खैर कोई गल नहीं, गलबात तो चलती रहनी और सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: वही अंतराल ते बाद कार्यक्रम लोकरंज तोड़ा फिर स्वागत है। तो आओ सुन दिन कार्यक्रम का अगला लोकगीत दिखा। हिमाचल की संस्कृति बड़ी निराली है, इत्थू समय समय के लोकगीत सांझो सुनने जो मिलते है ना। एक वक्त वक्त की गल है कि जलू जे लौंग कढ़ाते थे, नके छुपाते थे, तिस पर भी लोकगीत बने हैं है ना। चाहे नथनी होए, चाहे बेसर होए, चाहे बालियाँ होन, चाहे चक होए। संस्कृति साड़ी बड़ी भारी महान है कि हर चीज़ जो असा शब्दों च परोया।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: अंतराल के बाद आवाज सुन देने कार्यक्रम दा अगला लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकरंग। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। 11 बजे हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप हेमंत शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में आज तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान जारी है। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ, जो दोपहर 3 बजे तक चलेगा। मतदान के तुरंत बाद प्रधान, उपप्रधान तथा वार्ड सदस्यों के लिए पड़े वोटों की गिनती होगी। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुए मतदान की गिनती कल 31 मई को होगी। इसी दिन प्रदेश के 4 नगर निगमों सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला के लिए हुए चुनावों की मतगणना भी की जाएगी। आज प्रदेश की 1189 पंचायतों में वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में करीब 16 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न करवाने के लिए प्रशासन और पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। शिमला के रामपुर में नैन पंचायत के वार्ड 1 में स्थगित हुए चुनाव के लिए भी आज ही वोट डाले जा रहे हैं। निर्वाचन अधिकारी संजीव महाजन ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी, स्वतंत्र व निष्पक्ष ढंग से जारी है।
1: देखिए, आज हमारा 7 बजे से प्रातः से तीसरे चरण का मतदान जो है वो शुरू हो गया है। आज टोटल हमारी 1199 पंचायतें जो हैं पूर्ण हो रहा है, और उस पूर्ण को कंडक्ट करने के लिए हमारी 6615 पोलिंग पार्टीज गई हैं, और इस चरण में हमारे 15,40,324 मतदाता जो हैं वो अपने पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों को चुनेंगे। इससे पूर्व जो हमारे फर्स्ट और सेकंड फेज में निर्वाचन हुए थे, तो पहले चरण में हमारे 1293 पंचायतों में चुनाव हुआ था, और उसके बाद सेकंड फेज में हमारी 1276 पंचायतों में चुनाव हुआ। थर्ड फेज में आज लोगों में काफी उत्साह है, तो उम्मीद है कि आज 2021 में हमारा 78% रहा था। दो चरणों में शांतिप्रिय चुनाव हुए हैं, और चरण में हमें पूरी आशा है कि हिमाचल प्रदेश वैसे भी शांतिप्रिय स्टेट है, और चुनाव जो है वो यहाँ पे पूरी उम्मीद है कि शांतिप्रिय ही रहेगा। पंचायतों के नतीजे हैं वो शाम तक आ जाएंगे।
0: सिरमौर जिला में 89 पंचायतों में मतदान जारी है। मतदान सुबह ठीक 7 बजे शुरू हुआ, जो सायं 3 बजे तक चलेगा। जिले में 515 बूथों में वोट डाले जा रहे हैं। जिले की ग्राम पंचायत खड़ाहन में 101 वर्षीय पदमदास ने वोट डाला। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे सिरमौर जिला संवाददाता।
2: पंचायती राज चुनाव के अंतिम चरण में सिरमौर जिला में आज 89 पंचायतों में मतदान किया जा रहा है। सुबह ठीक 7 बजे ये मतदान प्रक्रिया शुरू हुई है, जो दोपहर बाद 3 बजे तक चलेगी। सिरमौर जिला में 515 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां तमाम पुख्ता इंतजाम प्रशासन द्वारा किए गए हैं, ताकि यहां निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न करवाया जा सके। मतदान को लेकर मैदानी इलाकों में बढ़ती गर्मी को देखते हुए लोग सुबह के समय मतदान के लिए अधिक संख्या में आगे आ रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।
0: इधर सोलन जिला में आज तीसरे व अंतिम चरण के लिए जिला की 82 ग्राम पंचायतों में मतदान जारी है। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने बताया कि इन ग्राम पंचायतों में कुल 1,08,156 मतदाता हैं। इनमें 55,123 पुरुष तथा 53,033 महिला मतदाता हैं। निर्वाचन के लिए कुल 490 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। चंबा जिला में आज 86 ग्राम पंचायतों में मतदान प्रक्रिया जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस चरण के लिए विकासखंड चंबा की 15, तीसा की 17, महिला की 17, सलूणी की 14

0: और भटियात की 23 पंचायतों में वोट डाले जा रहे हैं। चंबा के उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने बताया कि लोकतंत्र में मतदाताओं ने इस महापर्व में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। उधर कुल्लू जिला की 76 ग्राम पंचायतों में मतदान के लिए 426 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिले में 99,607 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा किए गए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। जिला की जरड़ पंचायत में 85 वर्षीय देवी सिंह ठाकुर ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। प्रदेश में जिला परिषद पंचायत समिति सदस्यों तथा 4 नगर निगमों के मतों की गणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रदेश के 91 विकास खंडों में कल 31 मई को सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू होगी। जिला परिषद वार्डों की मतगणना के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रत्येक जिला परिषद वार्ड में मतगणना के लिए 15 से 20 टेबल लगाए जाएंगे, जबकि एक वार्ड की मतगणना में करीब 35 कर्मचारी और अधिकारी तैनात होंगे। प्रदेश के 4 नगर निगमों सोलन, मंडी, धर्मशाला और पालमपुर के चुनाव परिणामों को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। कुल्लू जिला के बंजार जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना प्रक्रिया में इस वर्ष पहली बार महिला अधिकारियों व कर्मचारियों को स्वतंत्र रूप से मतगणना कार्य के लिए नियुक्त किया गया है। महिला सशक्तिकरण व प्रशासनिक कार्यों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने की दिशा में ये महत्वपूर्ण पहल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 31 मई को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण के माध्यम से देश की प्राचीन दुर्लभ और हस्तलिखित पांडुलिपियों को सहेजने, उनका दस्तावेजीकरण करने और उन्हें डिजिटल रूप से संरक्षित किया जा रहा है। विभिन्न परिवारों, मंदिरों, मठों, शैक्षणिक संस्थानों और संग्रहालयों में शताब्दियों से रखी पांडुलिपियों को आधुनिक तकनीक से ज्ञान भारतम मोबाइल ऐप द्वारा आम नागरिक, मंदिर या निजी संग्रहकर्ता अपनी पांडुलिपियों की जानकारी और तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं। प्रदेश के ऊना जिले में इस सर्वेक्षण को गति दी जा रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 3 बजे। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है। 11:05 हो चुके हैं। अब से लेकर 12:00 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: चित्रपट संगीत कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं चंबल की कसम। इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। गीत को लिखा साहिल लुधियानवी ने, संगीत तैयार किया खय्याम ने।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत ये कार्यक्रम संपन्न हुआ।
1: दोस्तों नमस्कार, आज के मैटिनी शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विश्व तंबाकू दिवस पर आइए सुनते हैं BEST के चीफ मेडिकल ऑफिसर अनिल कुमार सिंगल से जयंत पात्रीकर की ये बातचीत।
2: नमस्कार श्रोताओं, विविध भारती के मैटिनी शो में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम सब जानते हैं 31 मई ये जो दिन है, इस दिन मनाया जाता है विश्व तंबाकू विरोधी दिवस। और तंबाकू विरोध क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में क्या किया जाना चाहिए, सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए आज हमने विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है BEST के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल जी को। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: थैंक यू।
2: सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो लत है तंबाकू की, ये जो नशा होता है, ये लत के अलावा भी तंबाकू का कोई इस्तेमाल होता है, वो किस तरह से होता है?
3: जी एक्चुअली ह्यूमन ने तंबाकू का जो सेवन करने से पहले उसको कोई अलग तरीके से यूज करते थे। जैसे कि हमारा देश खेती प्रधान देश है
2: जी,
3: तो वहाँ पे खेती हमारा पूरा डिपेंडेंसी रहता है। तो खेती को जो दो तीन चीजें से जो खतरा है, जैसे कि वाइल्ड एनिमल्स या बड़े जानवर वगैरह, उनसे खतरा रहता था, तो उनके खेती के जो बॉर्डर पे ये तंबाकू के प्लांट्स लगाए जाते थे।
2: अच्छा।
3: और उनकी वो स्मेल से जो वाइल्ड एनिमल्स वो दूर चले जाते थे। दूसरा था कि खेती को दूसरा जो प्रॉब्लम था वो चूहे से, तो चूहे खेती खराब कर देते थे। तो अभी आज भी की तारीख में भी जो तंबाकू के जो लीव्स रहते हैं
2: जी जी,
3: वो जो बड़े रहते थे वो सूखने के बाद उसको गर्म करके,
2: अच्छा गर्म करके
3: उसको आग लगा के उसको चूहे के जो अंडरग्राउंड जो उनके
2: बिल होते हैं,
3: बिल होते हैं, उसमें डाल देते, चूहे भाग जाते या मर जाते थे।
2: अच्छा, अच्छा।
3: आज की तारीख में भी हमारे जो गाड़ी
2: में, ग्रामीण इलाकों में ऐसा होता है,
3: इवन सिटी में भी,
2: सिटी में
3: जो ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन चूहे गाड़ी के जो वायर
2: कुतर जाते हैं,
3: तो उसको रोकने के लिए भी तंबाकू डाल देते थे उससे। तो उसके अलावा जो तंबाकू का जो पान रहते हैं उसको सूखने के बाद उसका पाउडर करते, उसको ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड करके भी यूज होता था। जैसे इंसेक्ट्स है जो खेत को या धान को खराब ना कर दे। सो ये कुछ तरीके थे जो अदर देन सेवन हम इंसान इसको यूज करते थे। तो ये मुझे यहाँ पे कहना है कि तंबाकू से किसी को भी सेफ नहीं है, सब खतरे में है। अगर वो जीव छोटा है तो जल्दी मरेगा, अगर बड़ा है स्लोली स्लोली, लेकिन मरेगा जरूर। तो तंबाकू के लिए कहा जाता है कि तंबाकू के जो सेवन करने वाले में से 50% लोग को तंबाकू मारी डालता है। तो ये मैं श्रोताओं को, मैं चाहता हूँ कि बात ध्यान से सुने और अपने दिमाग में उसको हमेशा के लिए स्थापित कर दे।
2: जी जी जी, ये तो बस एक पेस्टिसाइड की तरह इसको जो इस्तेमाल किया जाता है वो केवल उतनी बात अच्छी है तंबाकू की, ये कह सकते हैं बस,
3: बाकी
2: कुछ नहीं। चलिए एक और आपसे बात जाननी थी कि आप BEST के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं और 2014 से आपने एक मुहिम चलाई थी तंबाकू विरोधी, क्योंकि हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट लाइन में जितने लोग काम करते हैं, खासतौर से जो ड्राइवर्स होते हैं बस के और ट्रकों के ड्राइवर्स होते हैं, इन लोगों में ज्यादा लत होती है तंबाकू।
3: yes, yes.
2: तो आपने जो मुहिम चलाई है इसके विरोध में, तो उसके 12 साल हो गए, क्या फायदे आपको नजर आए?
3: या तो मैं श्रोताओं को बताऊं कि तंबाकू में 7000 अलग अलग प्रकार के केमिकल्स रहते हैं।
2: ओह,
3: रसायन,
2: 7000 रसायन।
3: जब कोई भी इसको कंज्यूम करता है तो वो शरीर में जाके अलग अलग बीमारियां करते हैं, जैसे कि सिंपल हार्ट बीट्स बढ़ जाती है
2: जी,
3: ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट अटैक आ सकता है, देन लकवा मार सकता है, अपने जो बोन्स है वो वीक हो जाते हैं, और तंबाकू खाने वाले लोगों को बैक पेन या शोल्डर पेन या फ्रैक्चर के भी प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा तंबाकू की वजह से TB शरीर की बीमारियाँ होती है, और सबसे डेंजर जैसे कि कैंसर, पर्टिकुलरली मुंह का कैंसर। तो ये सब बीमारी की वजह से हमारे पास हमारे एम्प्लॉयज जो कर्मचारी उसकी लत के वजह से पीड़ित थे, और उसके वजह से हमारा जो रेवेन्यू जनरेशन भी कम हो रहा था, बिकॉज बीमारी की वजह से वो काम पे नहीं आ सकते थे। तो हमने ये सब चीज को देख के हमने 2014 में तंबाकू मुक्त बेस्ट ये अभियान शुरू किया,
2: और तंबाकू मुक्त बेस्ट। अच्छा।
3: और आज तक उसको हमने कंटिन्यू किया है। तो 12 साल के आज ये अभियान को हो गए, तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि ये 12 साल में 5000 हमारे कर्मचारी ने तंबाकू की व्यसन परमानेंटली छोड़ दिया है।
2: वाह।
3: उसके अलावा एक जो सर्वे है उसको हम गेट्स बोलते हैं, ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे।
2: अच्छा।
3: उसके मुताबिक कि सरकार अगर 100 रुपीज टैक्स लेती है तंबाकू के ऊपर तो सामने 816 रुपए का हमें अतिरिक्त भार हमें भुगतना पड़ता है। वो जो भार है मेनली तंबाकू वजह से जो बीमारियां होती है उसके ट्रीटमेंट के लिए, और दूसरा जो बीमारी की वजह से लोग काम पे नहीं जाते या प्रोडक्टिविटी लॉस के हिसाब से ये नुकसान। तो 12 साल में हमने देखा है कि बीमारियां कम हो गई, उसका जो ट्रीटमेंट का खर्चा कम हो गया, बीमारियां कम हो गई, इसलिए सिकनेस एब्सेंटिज्म भी हमारे कम हो गया, और इसके वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई और रेवेन्यू भी बढ़ गया, और साथ साथ में बीमारियां कम हुई है तो जो उसकी वजह से मॉर्टेलिटी थी
2: जी,
3: जो डेथ, वो भी हमारे इधर कम हो गई है, कैंसर के प्रमाण हमारे उधर कम हो गए। तो लोगों में एक अच्छी भावनाएं तैयार हुई है तंबाकू के विरुद्ध में। तो ये बीमारियां कम होने से ये जो लोग ठीक हो रहे हैं या जो बीमार कम पड़ रहे
2: जी,
3: तो ये नोटिफाई किया गया और हमारी जो अभियान को नेशनली और इंटरनेशनल भी रिकॉग्निशन मिला है, एक्नॉलेज किया गया, अवार्ड भी मिला है।
2: क्या बात है।
3: तो ये तो मैं चाहता हूँ कि पूरी भारत में ऐसे अभियान अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में
2: चलाया जाए
3: जो लोग अच्छे हो, प्रोडक्टिविटी बढ़े हमारी।
2: से आप सभी, आप और आपकी पूरी टीम जो ये मुहिम चला रही है, अभियान चला रहे हैं, आप इसके लिए अभिनंदन के पात्र हैं।
3: यस, थैंक यू।
2: पुरस्कार भी आपको मिल चुका है और काफी उपलब्धियां रही इस अभियान के। बेसिक एक बहुत ही सवाल ये है कि लोग क्यों खाते हैं तंबाकू, क्या होता होगा, ये नशे की शुरुआत कैसे होती है, और वो खाने के बाद क्या उन्हें महसूस होता होगा कि फिर वो बार बार उसे खाने लग जाते हैं।
3: बेसिकली वो तंबाकू खुद से तो कोई खाता नहीं है
2: जी,
3: मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है कि पीयर प्रेशर, स्कूल कॉलेज के जमाने से दोस्त खा रहा है,
2: अच्छा
3: कलीग खा रहे, ले लेना,
2: अच्छा
3: ले लेना, तो छोटी छोटी शुरुआत छोटे से होती है। लेकिन यहाँ पे साइंटिफिक रीजन ऐसा है, जब तंबाकू का सेवन किया जाता है
2: जी,
3: आइदर स्मोक से या स्मोकलेस से, तो अपने ब्रेन में एक केमिकल्स जो है
2: जी,
3: वो उसकी मात्रा बढ़ जाती है। वो केमिकल का नाम है डोपामिन।
2: ओके।
3: और डोपामिन जो कहते हैं इसको हैप्पीनेस हार्मोन भी बोलते हैं
2: जी।
3: वो जब डोपामिन का लेवल ब्रेन में बढ़ता है तो लोग स्ट्रेस फील करते हैं, उसको खुशी महसूस करते हैं, और सिंपल भाषा में बोले तो किक आती है उनको।
2: ओह।
3: और किक के वजह से लोग, ये पर्टिकुलर ड्राइवर्स, ये किक के वजह से ये तंबाकू का सेवन करते हैं। तो ये जो देन शुरुआत में बहुत कम मात्रा में तंबाकू की सेवन, बहुत कम मात्रा में डोपामिन लेवल बढ़ता है।
2: अच्छा।
3: लेकिन डे बाय डे जैसे जैसे आगे ये लत बढ़ती है तब वो डोपामिन लेवल बढ़ता है, तब तंबाकू का लेवल कंजम्पशन की मात्रा भी बढ़ जाती है।
2: अच्छा।
3: उसको कहते हैं कि निकोटीन रिसेप्टर, डोपामिन रिसेप्टर्स, वो जो है वो रेजिस्ट हो जाते हैं, तब थोड़ा भी डोपामिन बढ़ने के लिए ज्यादा मात्रा तंबाकू की कंज्यूम करने की जरूरत पड़ती है। तो ये विशेष साइकिल तैयार होती है,
2: यानी पहले 1 ग्राम खाने पर भी जो खुशी मिलती थी वो 10 ग्राम खाने के बाद भी नहीं मिलती है।
3: आगे
2: फिर वो मात्रा बढ़ती जाती है,
3: बढ़ते बाद इसलिए वो उसकी लत लगती जाती है और पेशेंट उसके पूरी अधीन हो जाता है, उसकी पूरी डिपेंडेंस तैयार हो जाती है, और देन वो बीमारियां शुरू होती है।
2: अच्छा, फिर वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि एक बार लत लग जाए तो फिर वो कौन कौन सी बीमारियां, बहुत लंबी लिस्ट है।
3: यस, बहुत बड़ी लिस्ट है। शुरुआत में लोगों को लगता है कि कैंसर ठीक है, होता है, 100% होता है वो, लेकिन उसको टाइम लगता है। लेकिन उससे पहले जो होते हैं कि मैंने पहले बताया कि पहला तो जब तंबाकू खाते हैं तो पहला हमारी हार्ट बीट्स बढ़ जाती है और कोई वो नोटिस नहीं करता है। हार्ट बीट्स बढ़ जाती है, देन ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, देन ये ब्लड प्रेशर बढ़ता है देन डेफिनेटली हार्ट पे उसकी असर होने लगती है, तो देन हार्ट अटैक आने के रिस्क बढ़ जाती है। देन जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो पैरालिसिस उसके भी, जब तंबाकू कंज्यूम करते हैं तो हमारे जो खाने की जो पचन शक्ति है वो पुअर हो जाती है, और उसके वजह से लोग उनको अपचन समस्या रहती है, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी की दिक्कत होती है। जब ये अपचन होता है तो बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट विटामिन्स या कैल्शियम मिनरल्स जो एब्जॉर्ब होने चाहिए वो एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, और उसके वजह से पर्टिकुलरली कैल्शियम जो बोलते हैं।
2: डॉक्टर साहब आप तो बता रहे हैं तंबाकू खाने का ये असर है,
3: ये
2: साइड इफेक्ट देखा गया है।
3: हाँ।
2: कि वो जब तक वो तंबाकू नहीं खा लेते सुबह सुबह चाय पीने के बाद या सिगरेट नहीं पी लेते तब तक उन्हें हाजत नहीं आती और वो टॉयलेट नहीं जाते।
3: वो एक मिथ है, वो ऐसा कुछ नहीं है, इट्स अ मिथ। अपचन होता है तो कैल्शियम, सबसे बड़ा कैल्शियम का प्रॉब्लम शुरू होता है और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाए, इसलिए वजह से बेसिकली हड्डियां और मसल्स में कैल्शियम की बहुत नीड रहती है, जरूरत रहती है। तो ये मसल्स एंड हड्डियां भी वीक हो जाती है और
2: ऐसे लोग डेंसिटी कम हो जाती है,
3: बोन डेंसिटी कम हो जाती है। तो ऐसे जो तंबाकू जो खाने वाले लोगों में बैक पेन, मसल्स पेन और फ्रैक्चर की मात्रा भी ज्यादा रहती है। देन तंबाकू खाने की वजह से हमारी जो रोग प्रतिरक्षक शक्ति है, इम्यूनिटी बोलते हैं
2: जी,
3: वो
2: जी.
3: कम हो जाती है। और उससे अलावा लोग ड्यूटी पे रहते हैं तो लंच या डिनर या स्किप करने के लिए भी लोग तंबाकू खाते हैं।
2: ओ हो,
3: तो ये सब की वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती है। उसकी वजह से जैसे कि जो क्षय रोग या टीबी शरीर की बीमारी का उनको ज्यादा खतरा रहता है
2: जी.
3: और ऑफकोर्स लास्ट बट नॉट द एंड या नॉट द लीस्ट ये कैंसर की बीमारी
2: जी, जी.
3: अभी मैं यहाँ पे बताऊंगा कि तंबाकू को सबसे ज्यादा मुंह का कैंसर होता है और भारत देश पूरे विश्व में
2: जी
3: तंबाकू की वजह से होने वाले
2: कैंसर के
3: मुंह के कैंसर के प्रथम नंबर पे आता है।
2: ओहो।
3: और ये कलेक्टिवली ये जो भी मैंने बीमारियां बोली उसके वजह से भारत में हर दिन 3,500 लोग की मृत्यु होती है। तो ये श्रोताओं को जानना बहुत जरूरी है,
2: ये बहुत दर्दनाक
3: दर्दनाक चीज है,
2: मगर तो सत्य है,
3: लेकिन ये सत्य है
2: जी,
3: और
2: जी,
3: ये
2: जी.
3: मैं नहीं बोल रहा हूँ,
2: हाँ.
3: ये ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे के रिपोर्ट में लिखा है
2: जी, जी, जी. हमने ये भी सुना है डॉक्टर साहब कि तंबाकू खाने से डायबिटीज होता है, मधुमेह।
3: यस, इस पे थोड़ा बाहर दूंगा
2: जी जी,
3: कि पहला तो हम समझ लेते कि पूरी दुनिया भर में दो देश में सबसे ज्यादा तंबाकू प्रोडक्शन होता है, उसका कंज्यूम भी होता है, वो है एक है चीन और दूसरा नंबर पे हमारा भारत देश है।
2: अच्छा,
3: और दोनों देश में ही सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट है, मधुमेह के पेशेंट है।
2: ओ, अच्छा।
3: तो ये इनडायरेक्टली कोरिलेशन है कि
2: हाँ,
3: तंबाकू वजह से डायबिटीज हो सकती है। आज की तारीख में देखें तो पूरी दुनिया में डायबिटीज के सबसे ज्यादा मरीज भारत में पाए जाते हैं, पहले दो साल पहले चाइना में था, अभी भारत में हो गया, और दोनों में ज्यादा ही कंजम्पशन होता है। जैसे मैंने बताया कि तंबाकू में 7,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स रहते हैं, वो कंज्यूम करने के बाद हमारे जो डायबिटीज का जो मेन जो कंट्रोल मैकेनिज्म है इंसुलिन
2: जी, जी।
3: ये जो इंसुलिन के प्रोडक्शन को और इंसुलिन को फंक्शन को ये तंबाकू अल्टर करता है।
2: अच्छा,
3: और बहुत सारे रीजंस है और इसके वजह से शुगर कंट्रोल मैकेनिज्म हमारी बॉडी का डिस्टर्ब हो जाता है।
2: अच्छा।
3: अगर आप WHO की साइट पे जाओगे और डायबिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन मांगोगे तो उसके
2: जी।
3: जो पांच प्रमुख कारण है उसमें पांचवा कारण है तंबाकू का व्यसन।
2: अच्छा,
3: तो लोगों को ये भी जानना जरूरी है कि तंबाकू वजह डायबिटीज भी होती है।
2: मगर जरूरी नहीं कि डायबिटीज है तो उसको तंबाकू की लत होगी,
3: नॉट नेसेसरी, बट तंबाकू खाने वालों को रिस्क ज्यादा रहती है,
2: इसकी रिस्क है, तो डायबिटीज हो सकता है।
3: यस, हो सकता है, और वो डायबिटीज मतलब बहुत कड़वी बीमारी है।
2: जी जी जी, तंबाकू अगर कोई किसी को अगर उसका नशा है, लत है और वो छोड़ना चाहे तो निश्चित रूप से बहुत उसके फायदे उसको मिलेंगे।
3: यस, yes,
2: yes. और उसके विड्रॉल सिम्टम्स भी होते होंगे।
3: यस, yes.
2: तो हमें दोनों बातें बताइए।
3: yeah.
2: छोड़ने के बाद में विड्रॉल सिम्टम्स क्या होते हैं, yes, कैसे होते
3: yes,
2: हैं
3: yes.
2: और एक बार वो छोड़ दे, निश्चय कर ले, अपना निर्धार पक्का हो जाए उसका कि छोड़ना है, तो उसके क्या क्या फायदे उसे होने वाले।
3: तो पहला हम उसके फायदे के बारे में बोलेंगे।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: जब तंबाकू अगर सपोज वो सिर हर एक घंटे में खाता है या किसी बहुत बार तो वो जब नींद से सुबह में उठता है तो अब कितने समय में उसको तंबाकू की जरूरत पड़ती है, वो एक भी बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फैक्टर है।
2: अच्छा।
3: उसकी उसकी लत के बारे में हमें मालूम पड़ता है कि उठने के बाद कितने समय के बाद उसको तंबाकू खाने की जरूरत पड़ती है। तो जब तंबाकू उस समय पे नहीं खाया तो पहला तो उसकी हार्ट बीट्स नॉर्मल रहती है।
2: अच्छा,
3: वो बहुत जरूरी है हार्ट हेल्थ के लिए,
2: बेशक
3: हृदय की स्वास्थ्य के लिए उसकी हार्ट बीट्स नॉर्मल रहना बहुत जरूरी है। तो वो नॉर्मल रहने लगती है, देन उसके बाद ब्लड प्रेशर जो, इसलिए अब हम जब भी एज अ डॉक्टर हम जब किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तब उसको पूछते हैं अगर तंबाकू आप एडिक्ट हो तो आधे घंटे के बाद ही हम आपका बीपी चेक करेगा अगर आपने, क्योंकि हमें मालूम है वो ज्यादा ही दिखाने वाला है।
2: अच्छा,
3: तो इसलिए तो इनडायरेक्टली जब तंबाकू का लत या एडिक्शन छोड़ते हो तो बीपी नॉर्मल होना शुरू हो जाता है।
2: अरे वाह,
3: तो ये दोनों हार्ट बीट्स और ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाता तो छोटा का हार्ट अटैक रिस्क भी कम हो जाता
2: है। कम हो जाती है। जी जी जी।
3: देन मैंने बताया कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी होने लगती है, हमारी जो पचन शक्ति है वो इम्प्रूव हो जाती है, हमारे हड्डियाँ हमारे मसल्स वो स्ट्रांग होने लगते हैं। देन आगे जाके छोटा का तंबाकू के जो खाने वाले जो सबसे डेंजर प्रॉब्लम है वो है कैंसर, उसकी भी रिस्क कम हो जाती है। देन डायबिटीज, मैं हमारे पास लोग है जिन्हें तंबाकू छोड़ दी है,
2: हाँ।
3: उनकी डायबिटीज की गोलियां भी बन हो गई क्योंकि शुगर भी नॉर्मल होने लगी है उसकी।
2: अच्छा।
3: ऐसे बहुत सारे हमारे पास पेशेंट है,
2: हाँ, हाँ।
3: कि तंबाकू की लत छोड़ने के बाद उनकी डायबिटीज की गोलियां भी बन हो गई है।
2: क्या बात।
3: तो ये सब उसके फायदे है। तो हमें ये जानना जरूरी है कि इसके क्या फायदे है छोड़ने के बाद। तब यस, ये जरूरी है कि जब तंबाकू में जो 7000 केमिकल है उसमें से एक केमिकल का नाम है निकोटीन, और निकोटीन की वजह से हमारे ब्रेन में डोपामिन बढ़ता है और उसकी वजह से उसकी लत लगती है।
2: अच्छा।
3: तो जब तंबाकू सडनली आप छोड़ देते हो, लोग कहते हैं कि हम आज मैं अगर 5 बार खाता हूँ तो कल 4 बार खाऊंगा, 3-3, तो ऐसा कभी नहीं होता। उसको झटके से ही छोड़ना है।
2: अच्छा।
3: तो ही फायदा होगा, तो ही उसकी लत छूटेगी। तो जब झटके से छोड़ते हो तब आपको निकोटीन का विड्रॉल सिम्टम 100% महसूस होगा,
2: शरीर जो है अपनी प्रतिक्रिया देता है।
3: तो महसूस होगा ही।
2: हाँ।
3: और जो विड्रॉल सिम्टम जैसे कि वीकनेस आ जाएगा, कंसंट्रेशन नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा। पर्टिकुलर डाइवर कंडर को ये बहुत होता था हमारे पास। तो ये लेकिन यहाँ पे जरूरी है कितना टाइम तक ये विड्रॉल सिम्टम रहता है।
2: अच्छा।
3: वो 2 दिन से ज्यादा 2 हफ्ते चलता है, उसके बाद अपनी बॉडी खुद को एडजस्ट करने लगती है।
2: जी जी जी।
3: उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है,
2: तो पूरा शरीर अपने जो है सामान्य स्थिति में
3: आ जाता है बस,
2: जैसा तंबाकू खाने से
3: पहले था वैसा।
2: वाह।
3: बस थोड़े दिन के लिए अपने को सहन करना है, और वो समय अगर निकाल डाला तो वापस कभी तंबाकू खाता नहीं।
2: कितनी जरूरी बात है।
3: यस।
2: हमारे श्रोताओं को, उनमें से किसी को अगर ये लत है तो ये समझना बहुत जरूरी है कि वो छोड़ना चाहते हैं तो तुरंत छोड़ दें,
3: झटके से छोड़ना है,
2: झटके से एक साथ, और उसके बाद
3: 2 दिन से 2 हफ्ते
2: सोचना ही नहीं, 2 हफ्ते ज्यादा 2 हफ्ते
3: ज्यादा से ज्यादा 2
2: ये लक्षण रहेंगे
3: बस, विड्रॉल सिम्टम,
2: विड्रॉल सिम्टम्स, और उसके बाद वो
3: सामान्य हो जाएगा, अपनी बॉडी अपने आप को रिकवर करती है।
2: वाह वाह। तो फायदे हमने जान लिए। हम तंबाकू की बातें जब होती है तो एक एक्ट है, एक ऐसा नियम है, कुछ वो कानून है, कोप्टा एक्ट कुछ ऐसा कहते हैं।
3: यस।
2: ये क्या होता है, क्या कोप्टा एक्ट क्या है?
3: सी, जैसे तंबाकू की वजह से हमारे पास जैसे सबसे ज्यादा मौतें होती है, खर्चा होता है।
2: जी जी।
3: 100 रुपए के टैक्स के सामने 816 रुपए का हमें खर्चा हो रहा है। तो ये उसको और कम करने के लिए कुछ कानून बनाया है, उसको कोप्टा एक्ट बोलते हैं। उसका फुल फॉर्म है कंजम्पशन ऑफ टोबैको प्रोडक्ट एक्ट।
2: अच्छा। कंजम्पशन ऑफ टोबैको प्रोडक्ट एक्ट,
3: कोप्टा एक्ट। उसके अंतर्गत आपको पब्लिक प्लेस में तंबाकू का कोई भी प्रकार का सेवन प्रतिबंध है, इज अ पनिशेबल ऑफेंस।
2: जी जी।
3: देन वो खाके पब्लिक प्लेस में थूकना भी इज अ पनिशेबल ऑफेंस। देन उसके एडवर्टाइजमेंट जो होती है वो भी अलाउड नहीं है आपको कोई भी प्रकार के। सो ये एक एक्ट इसलिए लाया है कि लोग एक दूसरे को देख के जो खाते है वो ना खाए, और उसकी लत और उसको कम करते जाए हम लोग। उसका फायदा हुआ है, कम हुई है, जो लोग खाने वाले परसेंटेज कम हुआ है, लेकिन जो उसे और हमें आगे लेके जाना है उसको एक्ट को, और अभी कुछ सरकार ने उसको कड़क किया है कि उसके अंतर्गत वो सरोगेसी एड बोलते हैं।
2: अच्छा।
3: उसको भी बैन किया है।
2: हाँ।
3: कि कुछ नाम सेम रखते हैं लेकिन कुछ अलग प्रोडक्ट रहता है। एक्स तंबाकू का जो प्रोडक्ट था पहले उसको खाली नाम सेम रखते हैं और प्रोडक्ट कुछ अलग रहता
2: है, होता तंबाकू ही है मगर उसको कुछ एक नया नाम और नया रूप दे देते हैं,
3: या तो फिर उसका प्रोडक्ट अलग कर देते हैं।
2: अच्छा, अच्छा।
3: जो पहले वो नाम तंबाकू के वजह से के लिए यूज होता था, अब वो तंबाकू के वजह से नहीं होते, कुछ अलग प्रोडक्ट जो नॉर्मली लोग खाते पीते हैं उसके लिए, तो सरोगो एड बोलते हैं, उसको भी बैन किया है। तो ये इसका उद्देश्य यही है कि तंबाकू का कंजम्पशन कम हो जाए, उसकी वजह से जो बीमारियां है कम हो जाए और खर्चे भी कम हो जाए।
2: तंबाकू तो नहीं मगर तंबाकू जैसे और तंबाकू इस्तेमाल करके कुछ नए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, इसी की अभी बात कर रहे थे। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि लोग सीधे सीधे तंबाकू तो नहीं खाते मगर ऐसे प्रोडक्ट जरूर इस्तेमाल करते हैं इनडायरेक्टली जिससे तंबाकू उनके शरीर में जाता है।
3: जैसे अभी बहुत कुछ आ गया है, वो इनहेलेशन आ गया है।
2: हाँ हाँ।
3: भले सिगरेट नहीं पीते लेकिन कुछ इनहेलेशन

0: सिगरेट कर
1: ई सिगरेट आ गई
0: सिगरेट
1: है,
0: हाँ
1: उसको भी अलाउ नहीं है, वो भी हानिकारक है,
0: जी,
1: उसमें हानिकारक वो
0: हाँ हाँ तो ये जो तंबाकू ना खा के अगर ये ऐसे
1: भी
0: प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, उन्हें भी
1: उसे,
0: उतना ही धोखा है,
1: यस यस
0: उतना ही रिस्क है।
1: यस यस अमेरिकन
0: जो व्यक्ति तंबाकू नहीं खाता वो गलती से उसके शरीर में तंबाकू चला जाए, तो पहला रिएक्शन बॉडी का तो ये होता है कि जैसे कभी पान खाते हुए पान में किसी ने हल्का सा
1: हाँ,
0: तंबाकू डाल
1: तो
0: दिया और वो हमने खा लिया,
1: और दिक्कत
0: तो
1: होती है,
0: तुरंत उल्टियां होने लगती हैं।
1: यस यस यस। और बहुत बार तो जैसे कि
0: और लेकिन जिनको लत लगती है उनको पहली बार ऐसा नहीं होता।
1: उनको नहीं होता ये जो आपने बताया,
0: हाँ
1: वो सबसे
0: हाँ
1: ज्यादा अफेक्ट करता है पेसिव स्मोकिंग बोलते हैं उसको, कि
0: हाँ
1: अगर हस्बैंड स्मोक करता है,
0: जी जी
1: उसके वाइफ है या उसके बच्चे है,
0: हाँ
1: तो उसमें भी वो धुआं जाता है ना,
0: बिल्कुल
1: वो धुआं
0: हाँ
1: जाता है। देन या घर में कोई तंबाकू खाता है तो उसको देख के बच्चे भी उसके खाने लगते हैं,
0: अच्छा
1: तो ये बहुत ज़रूरी है। तो पेसिव स्मोकिंग की वजह से इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, जैसे
0: जी
1: कोई एक फैमिली में एक हस्बैंड स्मोक करता है
0: जी
1: और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो उसके वो धुआं उसको जाए तो उसके बच्चे को भी खतरा है,
0: जी
1: जो अभी तक दुनिया में आया नहीं है उसको भी खतरा है,
0: उस पर भी
1: तो
0: असर हो रहा है
1: बहुत खतरा है उसके लिए, सबसे ज़्यादा खतरा है उसको, तो
0: जी।
1: द पेसिव स्मोकिंग बोलते हैं उसको।
0: हाँ
1: ये सब चीज़ें लोगों को आई डोंट नो मालूम है या उसको इग्नोर करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, आई
0: हाँ
1: डोंट नो, बट लोगों को मालूम होना ज़रूरी है ये बातें।
0: अच्छा, हमने सुना है कि कुछ दवाइयों के तरीके में कुछ तरह के मेडिसिन्स है, उसमें तंबाकू का इस्तेमाल भी होता है।
1: नहीं, आई डोंट थिंक सो,
0: अच्छा,
1: आई डोंट थिंक सो, आई
0: या कुछ लोगों ने कहा कि हमें तो फलां डॉक्टर साहब ने कहा है कि पान में थोड़ा तंबाकू खा लिया करो ताकि आपका पेट अच्छा
1: नहीं,
0: रहे, आपकी पाचन
1: ये
0: संस्था।
1: सब मिथ्स है, मिथ्स है, ये
0: अच्छा,
1: मिथ्स है सर।
0: ऐसा कुछ भी
1: सी
0: नहीं,
1: तंबाकू इतनी क्वांटिटी इज नॉट इज हार्मफुल फॉर द बॉडी,
0: बस
1: बस
0: वो।
1: उसको छोड़ना ही है ना, उसको नजदीक जाना ही नहीं उसके, बस
0: हाँ
1: बस।
0: हाँ
1: जैसे मैं शुरुआत में बताया,
0: जी
1: छोटा जीव है तो जल्दी मरेगा, बड़ा है तो बाद में मरेगा,
0: हाँ, मरेगा जरूर।
1: मरेगा जरूर,
0: ओह, तो इस
1: उससे
0: कठोर सत्य
1: दूर
0: को, इस कटु सत्य को जो है हमें
1: जाना
0: जान लेना चाहिए,
1: और
0: हमें
1: एक्सेप्ट करना है हमें।
0: एक्सेप्ट करना है। कोई जादुई मिक्स आपने बनाया है,
1: यस, उसको हमने
0: ये कैसे हुआ, कब
1: यस
0: हुआ
1: या
0: और इसका क्या आपको परिणाम कैसा देखने को मिला?
1: उसको हमने नाम दिया मैजिक मिक्स या
0: अच्छा,
1: मैजिक
0: मैजिक
1: चूरन,
0: मिक्स, जादुई चूरन,
1: जादुई चूरन।
0: वाह।
1: जैसे अभी तंबाकू की जो एडिक्ट लोगों में दो प्रकार की एडिक्शन है, एक है साइकोलॉजिकल एडिक्शन जो 90% लोगों में है, 10% लोग में ही फिजिकल डिपेंडेंसी है,
0: अच्छा।
1: तो 90% लोग बस उसको वो कलर का चूरन मांगता है और उसको हाथों में घसना है और खाना है, और उसका जो कैनिस्टर है या डब्बी बोले हैं जो महाराष्ट्र में मिलती है, तो
0: हाँ
1: वो उसको दिख गई तो उसको लगता है मैंने तंबाकू खा लिया। तो
0: अच्छा
1: हमने वो बेस को ध्यान में रखते
0: हाँ
1: हमने चूर्ण बनाया है जिसमें दालचीनी, अजवाइन, जीरा, बड़ी शोभ
0: वाह
1: और लवंग का इस्तेमाल किया है। जब उसको आप ग्राइंड करोगे
0: हाँ
1: तो हूबहू तंबाकू सरीका ही लगेगा,
0: अच्छा
1: और जो चूने की जगह पे हमने राइस पाउडर यूज करते हैं उसमें,
0: अच्छा
1: तो जब आप उसको हाथ में लेके घसोगे तो फील सेम ही आएगा कि आप तंबाकू
0: हाँ
1: को घिस रहे
0: जो
1: हो,
0: लोग तंबाकू मल के खाते हैं।
1: तो उसको कलर भी वैसा ही है उसका
0: हाँ
1: ना।
0: हाँ
1: उसमें साइंस ऐसा है कि
0: जी
1: जो दालचीनी है
0: हाँ
1: इसकी प्रॉपर्टी है कि जो निकोटिन के विड्रोल को और कम करती है,
0: अरे वाह,
1: तो साइंस भी है उसके पीछे।
0: क्या बात है,
1: तो इसके वजह से हमने चूर्ण बनाया, उसका नाम रखा है मैजिक मिक्स,
0: मैजिक मिक्स,
1: मैजिक मिक्स।
0: वाह वाह वाह।
1: और वो मैजिक ने सच में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में उस मैजिक किया है, और
0: हाँ
1: वो खा के बहुत सारे लोगों ने तंबाकू छोड़ दिया है।
0: वाह वाह
1: तो मैं लोगों को बोलूंगा कि उसकी लिस्ट अवेलेबल है यूट्यूब में,
0: अच्छा
1: मैजिक मिक्स मेरा नाम डाल के आपको मिल जाए कैसे बनाना है।
0: हाँ
1: हमने उसको कॉपीराइट किया है, आप कोई भी घर पे बना सकता है और
0: अच्छा
1: उसको यूज करे और अपनी जब भी तलब लगे
0: हाँ,
1: तंबाकू की जगह उसको खाए।
0: मतलब ये मैजिक मिक्स कोई कमर्शियल प्रोडक्ट नहीं
1: नो, इट इज
0: है,
1: नॉट कमर्शियल प्रोडक्ट,
0: ये सबके लिए है, सबके फायदे के
1: सबके
0: लिए
1: फायदे के
0: है।
1: लिए हमने उस खाली कॉपीराइट किया कि उसको कमर्शियल यूज कोई ना करे उसको,
0: अच्छा हाँ,
1: आपके लिए ही है, आप खाओ, खुद बनाओ,
0: सबके लिए ये मुफ्त है, फ्री है,
1: खुद बनाइए घर पे और खाइए
0: तो ये
1: उसको,
0: फॉर्मूला जो है वो यूट्यूब पे देख करके
1: ये
0: बनाया जा सकता
1: बनाए।
0: है।
1: और मेन बात उसको खा के थूकना भी नहीं है,
0: हाँ,
1: तो स्वच्छ भारत अभियान को भी हम प्रमोट कर रहे हैं उससे।
0: क्या बात है, वाह वाह,
1: उसके खाने के बाद वो निगलना ही है, क्योंकि वो
0: हाँ
1: निगलने के बाद बहुत सारे बेनिफिट देता है,
0: बिल्कुल
1: सब
0: बिल्कुल,
1: ये अपने गर्म मसाले वो फायदेकारक ही हमारे बॉडी को।
0: हमारे सुनने वालों के बेनिफिट के लिए
1: यस
0: हम इस मैजिक मिक्स का जो फॉर्मूला है उसे एक बार दोहराते हैं। इसमें क्या-क्या चीजें आपने डाली हैं?
1: हाँ, दालचीनी,
0: दालचीनी,
1: अजवाइन,
0: अजवाइन,
1: जीरा,
0: जीरा,
1: बड़ी शोप, सोप
0: सौंफ,
1: सोप
0: सौंफ, हाँ,
1: और एकाध
0: लौंग।
1: लौंग,
0: अच्छा,
1: उसको मिक्स करके
0: लौंग तो एक ही ले
1: एक
0: रहे हैं,
1: ही
0: मगर
1: लेना,
0: बाकी जितनी
1: बाकी
0: चीजें
1: इक्वल
0: हैं
1: क्वांटिटी, इक्वल क्वांटिटी,
0: इक्वल क्वांटिटी
1: इक्वल
0: में।
1: वन,
0: अच्छा
1: उसको ग्राइंड करना है मिक्सचर में, मिक्सचर होगा वो बहुत तंबाकू सरीका लगेगा लेकिन
0: अच्छा
1: उसमें तंबाकू नहीं है।
0: हाँ
1: चूने की जगह पे
0: हाँ
1: राइस पाउडर यूज करने का, वो भी
0: चावल
1: घर
0: का
1: चावल
0: आटा,
1: चावल का आटा,
0: अच्छा,
1: तो ये आप करके उसको
0: तो
1: सेम कैनिस्टर में
0: जिसे
1: यूज
0: तंबाकू
1: करें।
0: मलने की आदत

0: ऐसे ही
1: उसे
0: मल
1: हाथ
0: के
1: में
0: खाओ
1: लेके मल के जो है अपना पूरा
0: पूरा
1: एक्शन कंप्लीट करे,
0: एक्शन
1: और
0: कम्प्लीट
1: उसके बाद चाहे तो उसको होठों में दबा ले थोड़ी देर के लिए,
0: गया दबा
1: उसका
0: लो
1: जो जूस निकलेगा
0: वो खा
1: वो आपके
0: पी
1: शरीर के लिए फायदेमंद है।
0: फायदे कर,
1: वाह वाह
0: उसको
1: वाह,
0: थूकना भी नहीं
1: क्या बात
0: है।
1: है। बहुत ही जादुई बात है ये तंबाकू के बारे में, इस लत को छोड़ने के लिए जो है कारगर सिद्ध होगी। तो डॉक्टर साहब, अब कार्यक्रम के आखिर में कुछ तंबाकू छोड़ने के बारे में कुछ पते की बात हो जाए, आप क्या बताना चाहेंगे इस मौके पे?
0: मैं भारत के वासियों को बताना चाहता हूँ कि तंबाकू कभी भी हमें फायदा नहीं करता है, उससे सिर्फ नुकसान नुकसान नुकसान ही होता है, शारीरिक मानसिक आर्थिक भी नुकसान होता है।
1: जी जी
0: वो
1: जी
0: लोगों को मालूम नहीं है, ऐसा सर्वे हुआ है कि अगर आपने तंबाकू की लत छोड़ दी तो
1: जी
0: आपका जो एक इंडिविजुअल घर की जो आर्थिक परिस्थिति 10% इम्प्रूव हो जाती है।
1: क्या बात है। मुझे एक और बात याद आई कि
0: जी
1: मेरे कॉलेज के दिनों में मेरा एक दोस्त था और
0: हाँ
1: वो कृषि बैकग्राउंड से था,
0: हाँ
1: उसके घर वाले जो है खेती करते थे,
0: हाँ
1: तो वो कहता वो तंबाकू खाया करता था बहुत नियमित रूप से, और वो कहता है मुझे सांप ने अगर काट लिया तो मुझे जहर नहीं चढ़ेगा।
0: हाँ
1: तो ये कितना बड़ा मिथ है आप जरा
0: मिथ से
1: बताइए,
0: मिथ वो गल मिथ सी है, सब सब मिथ सी है
1: बहुत
0: सर,
1: बड़ी गलत
0: बहुत
1: फहमी है।
0: गलत फहमी है। ये तंबाकू छोड़ना बहुत जरूरी है,
1: जी
0: वो सिर्फ वो इंडिविजुअल को नहीं खाता है, पूरी फैमिली को बर्बाद कर देता है वो। जैसे हमने देखे हैं, आप किसी को अगर अगर देखना है तो टाटा हॉस्पिटल में जाके एक बार चक्कर मार के आए, बस खाली
1: हाँ
0: समझ जाएंगे ये तंबाकू से क्या गड़बड़ होती है।
1: जी।
0: लोगों को जिंदा है लेकिन मुंह में खाना नहीं खा सकते, नाक में नलीड से खाना खाया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि अपने फैमिली को, अपने देश को स्ट्रांग करने के लिए,
1: जी
0: उसको मजबूत करने के लिए, शारीरिक और मानसिक और आर्थिक मजबूत करने के लिए, हमें तंबाकू की लत को छोड़ना ही है।
1: और कोई भी फॉर्म हो तंबाकू का,
0: कुछ भी कोई भी
1: या
0: फॉर्म,
1: तो कच्चा तंबाकू है, या वो उसकी पाउडर नसवार
0: नस
1: होती
0: वाली
1: है,
0: हो, स्मोकिंग
1: या
0: है,
1: स्मोकिंग है,
0: कोई भी प्रकार का
1: किसी भी तरह
0: तंबाकू,
1: से,
0: बस उसको छोड़ दो, बस खत्म करो, अपनी फैमिली और अपने देश के लिए उसको छोड़ दो।
1: बहुत ही अच्छी बात है। आज तंबाकू विरोध जो है इसके बारे में आपने बताई, और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आप यहाँ आए और इतनी अच्छी जानकारी हमें दी,
0: थैंक यू,
1: बहुत
0: धन्यवाद।
1: बहुत धन्यवाद।
0: तंबाकू की वजह से भारत में हर दिन 3,500 लोगों की मृत्यु होती है। तंबाकू की वजह से मनुष्य, उसकी शारीरिक मानसिक और आर्थिक स्थिति खतरे में पड़ जाती है, और उसके वजह से उनकी फैमिली बहुत नुकसान भुगतना पड़ता है। तो मैं आज तंबाकू विरुद्ध दिवस के निमित्त श्रोताओं को अपील करूँगा कि तंबाकू की व्यसन को पूरी तरह छोड़ दे, और झटके से छोड़ दे, और अपने फैमिली को और हमारे देश को मजबूत बनाए। धन्यवाद।
2: देख।

विश्व तंबाकू दिवस पर अभी आप सुन रहे थे VEST के चीफ मेडिकल ऑफिसर अनिल कुमार सिंगल से जयंत पात्रीकर की ये बातचीत। आज का मैटिनी शो बस यहीं तक, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में सुनिए समाचार।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। अभी तक आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। दोपहर के 12 बजे हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम देवधरा के गीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: अंतराल के बाद कार्यक्रम का एक होर लोकगीत थोड़ी नजर है, आवाज है रीना कुमारी दी।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: अंतराल के बाद कार्यक्रम चुनाव फिर स्वागत है। आवाज सुनते हैं लहर राम संख्या वाली आवाज ए लोकगीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: लहर राम संख्या आवाज़ के बाद और सुनते हैं एक और लोकगीत, आवाज़ है रंजना कुमारी दी।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेज।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम देवधरा के गीत। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। 12:30 हुए हैं। आप पेश है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों, अभी आपने गीत सुना। आवाज़ें थी उदित नारायण भूपेंद्र सिंह की और फिल्म थी शहीद। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

सैनिक भाई, अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी आन, आवाज़ें थी अनुराधा पौडवाल और अभिजीत की। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। आइए सुनते हैं गीत, फिल्म है आए दिन बहार के और आवाज़ है आशा भोसले की।

सैनिक भाइयों आयो, कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति में सुनते हैं गीत। फिल्म है अपना बना लो और आवाज़ लता मंगेशकर की।

सुनेंगे विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। 2 बजे आप सुनेंगे मिड डे न्यूज़ और 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर समाचार और 2:30 पर पुनः आप सुनेंगे विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस सुरीला सफ़र कार्यक्रम में। कार्यक्रम के साथ मैं हूँ मंजू द्विवेदी। दोस्तों, आज जो इबारत या जो टेक्स्ट हमने फेसबुक पेज पर पोस्ट किया है, तो उसको आपको एक बार पढ़ के सुना देते हैं कि एक हसीन शाम को मन किया कि ठंडे ठंडे पानी से नहा लूँ, ये सोचते हुए कि ऐ दिल तू किस पे आ गया है। मन में उथल पुथल थी कि पीते पीते कभी कभी यूँ अंडे का फंडा भी समझ लेना चाहिए, इसलिए मैंने कहा सूरज जरा आ पासा। तो उसने कहा आला बर्फ़ी वाला। मैंने कहा जब तक समोसे में आलू रहेगा, इश्के दी चाशनी का बोलबाला रहेगा। इसके बाद मन सोचने लगा हाय रे वो दिन क्यों ना आए। ये आज की इबारत है। एक हमारे साथी लिखते हैं कि इबारत हो या शरारत हो, हमारी ये इनायत है, चलेंगे साथ सफ़र में चाहे कहीं कयामत हो। एक साथी लिख रहे हैं कि शाम तो नहीं, हमारा तो दिन सुबह से ही हसीन बन पड़ा है। सुबह से मौसम अटकेलियां कर रहा है, कभी धूप कभी छांव, कभी तेज़ हवा हल्की सी बूंदाबांदी। इस मौसम का क्या वर्णन करूं, मन सुबह से झूम उठा, ये मौसम का जादू है मितवा, अब दिल पर काबू है मितवा। दोस्तों, आज जो इबारत हमने पोस्ट की उसमें कुछ जो गाने हैं वो खाने पीने की चीज़ों को लेकर है। आपको बता दें कि आज इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस है। आलू को हम एक सब्ज़ी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे स्नैक्स या बनाने में या फिर जो छोटा मोटा नाश्ता शाम के समय का होता है उसमें आलू का बहुत महत्व होता है। हम सभी को पसंद होता है, चाहे वो समोसा हो, आलू बड़ा हो, या फिर एक कोई सैंडविच हो जिसमें आलू डाला जाता हो। इस तरह के बहुत सारे नाश्ते बनाए जाते हैं आलू से। तो आलू हमारे जीवन में या हमारे रसोई घर में क्या महत्व रखता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, या इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे इसके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे हमें मिल सके, इस बारे में आज हम बात करेंगे। वैसे जब शाम के नाश्ते की बात होती है तो सबसे पहले हमारा मन करता है कि आलू के पकोड़े खा लिए जाए, या आलू से बनी हुई ऐसे ही किसी नाश्ते की हमें याद आ जाती है। वैसे सबकी पसंद जो है वो अपनी अपनी अलग होती है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस पर हम थोड़ी आलू की बातें करेंगे, और इसके अलावा कुछ और भी गीत हम सुनेंगे। सबसे पहले जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं वो है दुल्हन एक रात की, इस फिल्म का गाना, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, राजा मेहंदी अली खां के बोल हैं। संगीत किसका है ये आप हमें बताइए। धर्मेंद्र और नूतन पर फिल्माया गया ये गाना है।

उनको देखा तो मौसम सुहाना हो गया। जी हाँ, शाम का वक्त हो और अगर आपको पता चले कि आपकी पसंद का आलू का बना हुआ कोई बहुत ही मज़ेदार नाश्ता आपके सामने आया है तो आप भी यही कहेंगे ना कि उनको देखा तो दिल उस पर आ गया है। मदन मोहन का इसमें संगीत है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आलू सब्जियों का राजा है और वो हर किसी के साथ मिलकर बनाया जा सकता है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि बेफिक्र और रूमानी शाम की याद दिलाती है आज की इबारत। इसे पढ़कर मन में एक चुलबुली और हास्य से भरी तस्वीर उभर रही है जिसमें खुद से बातें करते करते अचानक से शायरी और फिर खाने पीने की चीज़ों जैसे कि ठंडे पानी, समोसे, बर्फ़ी पर आ जाते हैं। ये बोलचाल की भाषा का एक बहुत ही प्यारा और अनूठा मिश्रण है जो कह रहा है कि जीवन की उलझनों को भी हंसी मजाक के चाशनी में डुबोकर आसान बनाया जा सकता है। जिंदगी में चाहे जितनी समस्याएं हों, हंसी मजाक का स्वाद कभी कम नहीं होना चाहिए। अंत में गुजरे हुए उन सुनहरे दिनों की याद इस पूरी इबारत को एक बहुत ही भावुक और प्यारा सा मोड़ दे देती है। और एक साथी लिख रहे हैं कि हर रोज हसीन शाम को इतने लू वाली गर्मी है, शाम को ऑफिस से आने के बाद ठंडे ठंडे पानी से दोबारा शावर में नहाना ही पड़ता है, उसके बाद ही आगे की दिनचर्या शुरू हो पाती है और हम थोड़े से रिलैक्स हो पाते हैं। तो चलिए आपके दिल दिमाग को हम थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं क्योंकि गर्मी ज़्यादा है और ठंडे पानी से नहाने का इसमें जो मज़ा है वो तो और भी है ही। पति पत्नी और वो, इस फिल्म का गाना महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज़ें, आनंद बख्शी के बोल रविंद्र जैन का संगीत।

0: लगता है कोई आया।
1: अरे कह दो के आ रहे हैं साहब, नहा रहे हैं।

आलू से बना हुआ कोई स्वादिष्ट नाश्ता जब आपके घर में बन रहा हो तो उसकी सुगंध चारों तरफ फैल जाती है, और जब वो सुगंध फैलती है तो ऐसा भी कभी होता होगा ना कि आसपास में आपके कोई पड़ोसी, आपके कोई नाते रिश्तेदार, आपके कोई दोस्त आपका दरवाज़ा खटखटाते होंगे और पूछते होंगे, भाई आज क्या बन रहा है। एक साथी लिख रहे हैं, आलू वो सादगी है जो हर स्वाद में रंग भर देता है, इसलिए हर घर की रसोई में उसकी खास जगह होती है। हर सब्जी उसका साथ पाकर और भी स्वादिष्ट हो जाती है। आलू सच में रसोई का राजा है। आलू न दिखावे में बड़ा है न नाम में, लेकिन काम में सबसे बड़ा है। यही उसकी असली पहचान है जो हर मौसम, हर सब्जी और हर थाली में फिट हो जाए, वही असली राजा कहलाता है। आलू, आलू की कहानी सादगी की जीत है, कम में भी सबसे ज्यादा स्वाद देने की कला है। एक साथी लिख रहे हैं कि आज मैं आलू की टिक्की बना रही हूँ। एक साथी लिख रहे हैं कि मुझे बटाटा वड़ा और फ्रेंच फ्राइज बहुत पसंद है। और एक हमारे साथी जो है उन्होंने हमें अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस की शुभकामनाएं दी है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आलू की खोज दक्षिण अमेरिका में हुई थी और आलू की कहानी वहीं से शुरू हुई थी। एक साथी लिख रहे हैं कि आज आलू की बात चल रही तो आलू के पराठे, समोसे, पकौड़े से लेकर चिप्स, पापड़ तक सभी का स्वाद निराला है। सुबह सुबह आलू के पराठे मिल जाए, दोपहर में आलू की सब्जी और पूरी मिल जाए और शाम को समोसे मिल जाए तो कहना ही क्या। ये सिर्फ आलू ही नहीं, ये हमें सिखाता है कि हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। जैसे आलू हर सब्जी में मिलकर इसका स्वाद बढ़ा देता है, वैसे ही हमें जीवन में होना चाहिए, सबके साथ मिलकर चलना चाहिए ताकि हमारा महत्व हमेशा बना रहे। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू के बिना भारतीय रसोई अधूरी है। यद्यपि आज आलू भारतीय रसोई का एक अभिन्न अंग बन गया है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से भारतीय मूल की सामग्री नहीं है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आलू महज एक सब्जी नहीं है, ये एक एहसास है, ये वो निश्चल साथी है जो हर दूसरी सब्जी के साथ अपनी पहचान मिटाकर घुल मिल जाता है। कभी वह गोभी के साथ जुगलबंदी करता है तो कभी मटर के साथ मिलकर एक नया स्वाद रचता है। वह किसी राजा के थाल का हिस्सा भी है और एक गरीब की झोपड़ी में तसल्ली का निवाला भी है। और एक साथी लिख रही है कि मुझे तो पता ही नहीं आज आलू दिवस है, आज अजीब संयोग बना है, आज हमारी श्रीमती जी ने आलू के पराठे बनाए हैं, दही के साथ सेवन कर रहे हैं हम। बहुत धन्यवाद आपका। एक साथी लिख रहे हैं कि बेहद खूबसूरत गीत के साथ शुरुआत की है। वैसे आलू दिवस पर हमारे यहाँ आलू पालक टमाटर की सब्जी बनी है, मुझे आलू बहुत ज़्यादा पसंद है और बच्चों को भी ये बहुत पसंद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए कि आपका दिल आलू से बनी हुई कौन सी रेसिपी पर सबसे ज़्यादा आता है, कौन सी रेसिपी है जब आप ये कहते हैं कि ये दिल मुझे बता दे कि क्या खाऊं और क्या नहीं खाऊं। भाई भाई फिल्म का गाना, गीता दत्त की आवाज़, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन का संगीत, अशोक कुमार और श्यामा पर फिल्माया गया गाना।

तो बताया क्या आपने कि आपका दिल आलू से बनी हुई कौन सी चीज़ पर आ गया है? बहुत सारे श्रोताओं ने इतनी सारी बातें लिखी है, लिखते हैं कि लाल टमाटर हरे मटर में मंडी चलने की ठानी, आलू भी तैयार हो गया, साथ चली गोभी रानी। मुझे आलू इसलिए पसंद है कि वो सभी के साथ बहुत अच्छी तरह एडजस्ट हो जाता है, इसीलिए सबको आलू भाता है। एक साथी लिख रहे हैं कि आज भी लंच में दही वाले आलू बनाए हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि उदयपुर ज़िले में फतेह स्कूल के पास में एक जगह है जहाँ के आलू बड़े बहुत फेमस है, मैं कल परीक्षा देने जा रहा हूँ, ज़रूर वहाँ के स्वादिष्ट आलू बड़ों का आनंद लूँगा। और एक साथी लिख रहे हैं कि इबारत कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया आपने, आज आलू दिवस पर गीतों का मज़ा मिलेगा। और लिखा है कि आलू दुनिया के हर कोने में मिलते हैं, आलू बिना कोई रसोई बन नहीं सकती, ये सभी सब्जियों में मिक्स हो जाता है, चिप्स और पराठा तो आलू के ही स्वादिष्ट होते हैं, खिचड़ी और तहरी में मिलाकर उसका टेस्ट भी बदल दिया जाता है जो सबको पसंद आता है। अब तो मिठाइयों में भी आलू का प्रयोग होने लगा है, समोसा तो बिना आलू के बन ही नहीं सकता, आलू की पकौड़ी तो चटनी के साथ गर्मा गर्म खाने में बड़ा ही मज़ा आता है। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू कार्बोहाइड्रेट और ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है, आलू पौधे का भूमिगत तना होता है, जड़ नहीं होता है। एक साथी ये लिख रहे हैं कि आलू सब्जियों के राजा है, पर मैं तो कहूँगी रसोई की रानी है, एक माँ जानती है कि बच्चों को कैसे सब्जी खिलाना पड़ती है, आलू के साथ कुछ मिला दो तो खा लेते हैं। और हमारा जो बिहारी खाना है वो तो बिना आलू के पूरा ही नहीं बनता है, दाल भात चोखा लिट्टी चोखा, और अगर आलू नहीं है तो ये व्यंजन अधूरा है। संक्रांति में दही चूड़ा, उसके साथ आलू दम, सफर में जाना है पूरी के साथ आलू की भुजिया, बरसात के दिनों के लिए आलू का सूख होता, अतिथियों के लिए आलू के चिप्स, सर्दियों में आलू के अचार, आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि आलू सब सब्जियों के साथ घुल मिल जाता है, और अपने यहाँ आलू का रायता बहुत पसंद किया जाता है जो दही के साथ बनाया जाता है। और एक साथी ने हमारे ये बात लिखी है कि अगर ठंडे ठंडे पानी से ही नहाना था तो सूरज को और पास क्यों बुलाना था। बात तो आपकी सही है, लेकिन अगर इस गाने में अगर आप गौर करेंगे तो एक लाइन आती है कि आलू टमाटर का साग। जी हाँ, जब बहुत भूख लगी हो तो आलू टमाटर का जो साग होता है ना, वो हमारे मन को कितना ललचाता है, ये इसमें दिखाया गया है, इसीलिए हमने इस गाने को चुना है। तो सुनिएगा आप ये गाना। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू साधारण सा दिखता है लेकिन हर रसोई की जान है, हर मसाले और हर सब्जी के साथ मिलकर स्वाद दो गुना कर देता है, इसलिए उसे सब्जियों का राजा कहा जाता है। जिस थाली में आलू हो वो थाली अधूरी नहीं लगती, वो हर स्वाद को पूरा करने की ताकत रखता है। आलू की खासियत यही है कि वो खुद में सादा होकर भी हर व्यंजन को खास बना देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और बैराग फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। ऐसा कभी होता होगा ना कि आपने फरमाइश की है कि मुझे आलू से बना हुआ समोसा खाना है, लेकिन बन कुछ और जाता है, आलू के पकोड़े बन जाते हैं या आलू की टिकिया बन जाती है, तो आपके दिल में यही आता होगा ना कि अरे मैंने तो ये बनाने के लिए कहा था पर आज तो ये बन गया है, कुछ अलग ही हो गया है। चलिए ऐसा ही कुछ गाना है, सुनते हैं बैराग फिल्म से।

कभी-कभी ऐसा भी होता है ना कि रेसिपी कौन सी बनने वाली होती है और क्या बन जाती है, हम कोशिश करते हैं एक नई चीज़ कुछ बनाने की और कुछ और बनाने का सोचते हैं, लेकिन वो बन नहीं पाता, कुछ और ही बन जाता है। हो सकता है कि वो उससे ज़्यादा स्वादिष्ट, और कभी-कभी वो स्वाद जिसकी हम उम्मीद रखते हैं वो कभी नहीं आता है, तो भी मन बड़ा खिन्न हो जाता है। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू को ध्यान से खाओ, क्योंकि आलू बाहर से ठंडा होता है लेकिन अंदर से गर्म होता है। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू ज़्यादा खाओगे तो आलू जैसे हो जाओगे, और लौकी खाओगे तो लौकी जैसे बनोगे। एक साथी लिख रहे हैं कि आज सचमुच संयोग है, मैंने आज आलू के पराठे ही बनाए, पति देव को बहुत पसंद है, मक्खन और अचार के साथ। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू की लौंज एक प्रकार की मिठाई है। और एक साथी लिख रहे हैं कि सर्दियों में नए आलू को मिट्टी की हांडी में जिसमें आग तपती उसमें रख देते हैं, उस पके आलू खाने का अलग ही आनंद और स्वाद है। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की आप सभी को बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। भाई इसके भी दिन बहुरे हैं और वो भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और एक साथी लिख रहे हैं कि आलू के भल्ले भी बड़े स्वादिष्ट होते हैं, दही भल्ले की तरह ही। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू और दाल की बड़ी की चटपटी भाजी बहुत पसंद है, और तो और मैंने आपका कार्यक्रम सुनकर श्रीमती जी से वही भाजी का आग्रह किया, और उन्होंने भोजन बन जाने के बाद भी मेरी फरमाइश के अनुरूप मुझे भाजी बनाकर वो दे रही है। एक साथी लिख रहे हैं कि किसी पड़ोसी ने तो दरवाजा नहीं खटखटाया, पर हाँ कई बार हमारी बेटी और उसकी सहेलियों ने जरूर कहा कि बाहर से अंदर आते ही कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है आलू बेसन की, क्योंकि हम जब सैंडविच के लिए मसाला तैयार करते हैं तो उसमें अहम भूमिका तो आलू की होती है, पर उस पर और भी कई चीजें डाली जाती है, सबसे तेल, फिर उसमें थोड़ा जीरा, सौंफ और खड़ा धनिया, और फिर थोड़ा सा बेसन डालकर भुनना, फिर अमचूर या नींबू डालकर उसमें उबले आलू को डालना, और फिर कहीं जाकर इस मसाले को ब्रेड में डालकर सेकना, तब जाकर सबको खिलाना, और फिर उसके बाद सबकी तारीफ पाना। एक साथी लिख रहे हैं कि बंगाल का आलू, बिहार और मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें आलू से बनाई जाती है, उसके बारे में इन्होंने लिखा है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आजकल थोड़ा मौसम का मिजाज ठंडा है, बारिश हो जाने से प्याज की पकौड़ी, समोसे और कुछ गर्म नाश्ता खाने का मन करता है, मौसम के साथ जुबान का मिजाज भी बदल जाता है तो अच्छा खाने का मन करता है, चाहे जितनी भी गर्मी हो, पर बाजारों में चाट के ठेलों पर खूब भीड़ होती है, आलू की टिक्की समोसे बहुत खाए जाते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब आलू का जो आकार होता है गोल गोल होता है, लेकिन एक लंबे आकार की भी चीज़ होती है, और उसके बारे में भी बहुत सारी बातें इस गाने में कही गई है, तो उसे भी हम सुन लेते हैं। जोड़ी नंबर वन इस फिल्म का गाना है, प्रतीक जोसेफ की आवाज है, इन्हीं का लिखा हुआ गाना है, संगीत किसका है ये आप हमें बताइए।

जोड़ी नंबर वन इस फिल्म का ये गाना आपने सुना, इसमें संगीत हिमेश रेशमिया का, और बड़े दिलचस्प अंदाज में इन्होंने जो है जीवन का फलसफा वो सिखाने की कोशिश की गई है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आलू की टिक्की के साथ चटपटी इमली की चटनी, ऊपर दही से डाल दे फिर खाने में स्वाद आ जाता है। और एक साथी लिख रहे हैं कि व्रत में तो आलू बहुत इस्तेमाल किया जाता है, उबला आलू और दही का रायता, फ्राई में फिंगर चिप्स, हर हाल में आलू बहुत अच्छा लगता है, समोसे तो आलू के बगैर ही नहीं सकते। एक हमारी साथी लिख रहे हैं कि आज ही मेरी मम्मी ने मुझे बोला था कि आलू टमाटर की रसीली सब्जी बनाना, कहते हैं कि डायबिटीज वालों को लाल आलू खाना चाहिए और उबले हुए आलू को 12 घंटे फ्रिज में रखने के बाद खाना चाहिए, जिसमें से आलू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है। एक साथी लिख रहे हैं कि कटक का आलू दम दही बड़ा जिस किसी ने खाया उसे कटक घूमने आने का मज़ा आया, विश्व प्रसिद्ध आलू दम दही बड़ा के स्वाद सभी मुसाफिर के पेट भरने के लिए ये याद किया जाता है। और एक साथी लिख रहे हैं कि जब हमारे बच्चे छोटे थे तो उनकी फरमाइश होती थी कि फिंगर आलू बनाने हैं, तो सच कह रहे हैं हम बनाते बनाते थक जाते पर वो सब खाते जाते थे, और तो और एक दो दोस्त भी आ जाते, वो दिन भी क्या दिन थे। आजकल तो मम्मी आलू ज़्यादा नहीं खाने चाहिए ऐसा कहती है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आलू तो हम लोगों के यहाँ पहले भी बोया जाता था और वो अगस्त सितंबर तक सब्जी का पूरा काम करता था, लेकिन धीरे धीरे जो है इसके कम हो गया है ये। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू भारतीय रसोई की रीढ़ है, इससे यदि इसे सही और संतुलित तरीके से जैसे कि उबाल कर या बेक करके पकाया जाए तो ये सेहत और स्वाद दोनों के लिए बेहतरीन है। आलू भारतीय रसोई का राजा है जिसके बिना हर घर का भोजन अधूरा माना जाता है। स्वाद, पोषण और उपयोगिता के मामले में भारतीय व्यंजनों में आलू का स्थान सबसे ऊपर है। आलू वाकई स्नैक्स का राजा है, ये इतना वर्सेटाइल है कि इसमें कोई भी लाजवाब डिश मिनटों में बनाई जा सकती है। तो फिलहाल अगला जो हम गीत सुनवा रहे हैं उसमें तो केवल आलू टमाटर का जो साग होता है उसे ही कितने इस तरीके से इसमें हम सुनेंगे इस गाने में कि भूख होती है तब तो वो चीज़ हमें और भी ललचाती है, लेकिन नहीं भी भूख हो तो बोलने का जो अंदाज़ है इस के बारे में सुनकर ऐसा लगता है कि हाँ आलू टमाटर का साग खा लिया जाए। संगीत किसका है बताइए हमें।

उजाला फिल्म का गाना हमने सुना, शंकर जयकिशन का इसमें संगीत है। और ये सही बात है कि जब हम पिकनिक पर जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो सब्ज़ी या कुछ चीज़ बना के ले वो आलू की होती है। आलू की सब्ज़ी और पूरियां, या फिर मसाले वाली पूरियां, या फिर आलू के पराठे, या इस तरह की चीज़ें हम बना करके ले जाते हैं। या यहाँ तक कि हम जब सफ़र में जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो भी सबसे ज़्यादा जो सब्ज़ी आपको दिखाई पड़ेगी वो आलू की सब्ज़ी ही होगी। एक साथी लिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का फरुखाबाद शहर के जो आलू होते हैं वो भारत में नंबर वन तरह के आलू होते हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि पुराने ज़माने और आज तक आलू बैंगन की सब्ज़ी सबसे ज़्यादा गुजरात के घरों में खाई जाती है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि ज़्यादा खाओगे तो एसिडिटी करेगा। जी हाँ, कोई भी चीज़ हो उसे अति किसी भी चीज़ की नहीं होनी चाहिए। एक साथी लिख रहे हैं कि छोटे छोटे आलू को जाड़े के दिनों में हर घर में तापने के लिए जो अलाव जलाते हैं उसमें भून कर

बच्चे अक्सर कटोरी में नमक उसमें डाल करके खाते हैं, गरम गरम बड़ा टेस्टी होता है। पहले गन्ने की पेराई होती थी तो खोलते कढ़ाई में, जब राब तैयार होने को होती थी तो छोटे छोटे आलू को धागे में गूंथ कर कढ़ाई में डाल देते थे। कितना मीठा और टेस्टी वो आलू के लिए जो है हम झगड़ा करते थे। अब तो गाँवों में गन्ने की पेराई बंद हो गई है तो मीठा आलू भी अब नहीं मिलता है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आजकल लाल आलू बहुत मिल रहे हैं जिनमें कम मात्रा में स्टार्च होता है और भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और मिनरल्स होते हैं। और एक साथी लिख रहे हैं कि आलू की भाजी, बैंगन का भरता, बोले जी बोलो तो क्या खाओगे, ये एक इस गाने के बारे में इन्होंने लिखा है। और एक साथी लिख रहे हैं कि सबसे सस्ता आलू है, जो सभी सब्जियों के भाव ज़्यादा हो जाते हैं तो केवल आलू धनिया डालकर रसदार सब्जी चावल और रोटी के साथ खाने का जो मज़ा है वो बड़ा आता है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आज आलू की बातें सुनकर हमारी बेटी ने भी फरमाइश कर दी कि अभी तो खाना बन गया है तो डिनर में आज मस्त आलू की रसेदार सब्जी, जिसमें डाली हो थोड़ी सी केरी और उसके साथ हो जाए थोड़े से जीरा राइस, ऐसा इन्होंने लिखा है। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू की बात हो रही तो मुझे चूल्हे की आँच में सेक कर आलू बहुत पसंद आते हैं। जब कभी लंबी यात्रा पर जाता हूँ तो मम्मी हमेशा ही आलू के पराठे और आलू की चटनी ही रखती है जो सूखी रहती है और आसानी से हम ले जा सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब हम आलू की बातें तो हम कर रहे हैं, उससे चटपटे व्यंजन भी, लेकिन हो सकता है कि हमारे कई साथी हो जिन्हें कुछ मीठी चीज़ें भी पसंद हो, जैसे बर्फ़ी वगैरह, इस तरह की चीज़ें भी तो उन्हें पसंद आती है। या फिर आलू से भी हम आलू की बर्फ़ी भी बना सकते हैं। कई साथियों ने हमारे लिखा है कि आलू का हलवा बनाया जाता है, आलू की बर्फ़ी भी बनती है। तो चलिए एक गाना सुन लेते हैं, बर्फ़ी फिल्म का, स्वानंद किरकिरे के बोल, प्रीतम का संगीत है, आवाज़ किसकी है आप

मोहित चौहान की आवाज़ में ये गाना आपने सुना है। हमारे एक साथी की बात है कि आज अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस है। आलू को हम सब्जियों का राजा कह सकते हैं, एक ऐसा ऐसी सब्जी जिसके सहारे हम कोई भी उत्सव मना सकते हैं, कोई भी त्यौहार की शान बढ़ा सकते हैं। सब्जियों को खाने में मुंह बिगाड़ने वाले बच्चों के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। गोभी आलू, मटर आलू, परवल आलू, कटहल आलू, टमाटर आलू, किसी भी कॉम्बिनेशन में सुपर हिट है आलू। समोसे में आलू, पराठे में आलू, पकौड़े में आलू। और एक साथी ने हमारी ये लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र ने आलू के महत्व को समझाने के लिए हर साल 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस के रूप में घोषित किया है। इस साल की थीम है, जहां आलू उगते हैं वहां आजीविका फलती फूलती है। और ये थीम ग्रामीण अर्थव्यवस्था और छोटे किसानों को सहारा देने में आलू की भूमिका को रेखांकित करती है। और एक साथी लिख रहे हैं कि माँ के हाथ के बने आलू के पराठों का स्वाद अब कहाँ मिलेगा, आज आपने माँ की याद दिला दी। और एक साथी लिख रहे हैं कि भंडारे में आलू पूड़ी खाने का स्वाद तो खाने वाला ही जानता है। और एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है कि मेरी बेटी पूना के एक घर में रहकर पढ़ रही थी, मैं कभी कभार 10-15 दिन के लिए जाती थी। उसकी सहेलियों को बहुत आलू के भरवां पराठे और दही का रायता बनाकर खिलाया था। आए दिन यही फरमाइश उनकी होती थी। चलिए, धन्यवाद आपका। मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी इस फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं, और देव कोहली के बोल हैं, अनु मलिक का इसमें संगीत है।

मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी फिल्म का ये गाना हमने सुना, और सचमुच जब समोसे की बात आती है तो ज़्यादातर उसमें आलू ही डाल करके बनाया जाता है। आलू के बगैर समोसे का मज़ा हमें तो नहीं आता है। हो सकता है बहुत सारे साथी हमारे इस बात से इत्तेफाक रखते हों। एक साथी हमारे लिख रहे हैं, उन्होंने आलू बोने का सबसे अच्छा तरीका जो है उसके बारे में बहुत विस्तृत विवरण लिखा है। पूरा तो हम आपको नहीं सुनाएंगे, लेकिन हाँ, अगर आप चाहें तो ये बात आपके काम की हो सकती है कि उन्होंने लिखा है कि सबसे अच्छा तरीका यह कि खेत में 3-4 बार गहरी जुताई करके और मिट्टी को भुरभुरा और समतल बना ले। बुवाई से पहले बीजों को फफूंदनाशक जैसे कि कार्बेंडाजिम से उपचारित करें और बीज को मेड़ों पर 5 से 7 सेंटीमीटर की गहराई में रोपे, जहां लाइन से लाइन की दूरी सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी इतने सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बारे में बहुत विस्तृत विवरण इन्होंने लिखा है जो हो सकता है कि आपके काम का हो। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि एक ही इबारत रहती है, ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसे किस नज़रिए से देखते हैं। किसी को इसमें बहुत कुछ अच्छा नज़र आता है और किसी को इसमें कुछ बिल्कुल नहीं भाता है। तो ये हमारी सोच पर निर्भर करता है कि अब गिलास पानी से आधा भरा है, इसे आधा भरा कहें या आधा खाली कहें, ये हमारी सोच पर है। वैसे सबसे जो अच्छी बात यह है कि इससे हमें बहुत सारे गानों के बारे में जानकारी मिलती। चलिए, अब बात ऐसी है कि कई बार ऐसा होता है कि हमने अपने जीवन में वो चीज़ें खाई होती है और हमें अच्छी लगती है, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है जब हमें कोई बीमारी हो जाती है और डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, आपको आलू नहीं खाना है या मीठा नहीं खाना है या तला हुआ नहीं खाना है। और तब हमारे दिल में एक ही बात आती है कि हाय रे, वो दिन क्यों ना आए कि जब आलू की इतनी स्वादिष्ट रेसिपी बनती। चलिए, अनुराधा फिल्म का गाना सुनते हैं।

और अब एक बड़ी सुंदर बात, आलू का रस चेहरे पर लगाने से ग्लो आता है, ऑलराउंडर है आलू, ये हमारी एक साथी ने बात लिखी है। और इसी के साथ कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: बेंगलुरु में नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा, अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करेगा। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
1: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवक के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण है। अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
2: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांगिला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड्स की रक्षा मंत्री दिलेन एसेलगो जिगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। यह भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन ऑलाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है।
3: म्यांमार के राष्ट्रपति आज सुबह 9 बजे विशेष विमान से गया जी एयरपोर्ट पहुंचे। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और अन्य अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति यू मिन ऑंग हलाइंग विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना किया। साथ ही वे म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों का भी दौरा किया। राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का एक शिष्ट मंडल भी मौजूद था। म्यांमार के राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए महाबोधि मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
0: राष्ट्रपति ओ मिन ऑलाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से भी वो मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति ऊ सोमवार को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: के साथ चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ोन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से निर्वाचित किए जाने की संभावना है।
1: आज डीके शिवकुमार राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मिले, स्वेयरिंग इन सेरेमनी के दिनांक और जगह के बारे में चर्चा करने वैलोक भवन गए थे। इस बार युवा विधायकों को अवसर मिलने की संभावना है। अगले महीने राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव होने के कारण जल्दी से जल्दी सरकार बनाने का प्रक्रिया समाप्त करने पर गौर किया जा रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: कांग्रेस के 136 विधायकों को विधानसभा बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह गुर्जेवाला कार्यवाही का अवलोकन करेंगे। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष ज्ञान पुनरीक्षण एसआईआर अभियान शुरू हो गया है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की परीक्षा पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि उसके साझेदार टीसीएस की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की शुरुआत देरी से हुई। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि समस्या का समाधान हो गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र को असुविधा न हो, परीक्षा पूर्ण समय सीमा के साथ आयोजित की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि दोपहर के सत्र का समय संशोधित किया गया है। विद्यार्थियों को दोपहर 2:30 बजे से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि परीक्षा निर्धारित समय 3 बजे के बजाय 4 बजे से शुरू होगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने अब तक कोचिंग संस्थानों को 60 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और 1,46,00,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। गोवा ने आज पणजी स्थित कला अकादमी में 40वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सभा में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने गोवा को एक आदर्श राज्य बताया जिसने विकास और अपनी समृद्ध संस्कृति को संरक्षित रखा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि गोवा इस बात का प्रेरणादायी उदाहरण है कि पहचान और प्रगति साथ साथ कैसे आगे बढ़ सकती हैं। पणजी के कला अकादमी में गोवा के 40वें राज्य स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा ने आधुनिक विकास को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सफलतापूर्वक संरक्षित रखा है। गोवा केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामाजिक सद्भाव और बौद्धिक खुलेपन से निर्मित एक जीवंत सभ्यता है। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, स्मारक डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किए, पुरस्कार और नियुक्ति पत्र वितरित किए तथा दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत बढ़ी हुई सहायता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकसित गोवा आवश्यक है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप

0: हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स एट एआई या न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका के सेना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेक्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमरीका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्री हेक्सेथ ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष में शामिल होने के बावजूद अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता बनाए हुए है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ 2 घंटे की बैठक की। इसमें ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते की संभावना पर चर्चा की गई। सिचुएशन रूम में हुई बैठक को स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और तटीय कर्नाटक में भी वर्षा की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओले पड़ने का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
1: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों के हित के हेत जैसे अमर संकल्प और भारतीय पत्रकारिता की नींव रखने वाले ध्येय वाक्य के साथ उदंत मार्तंड समाचार पत्र की कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके से नींव रखी। उस दौर में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब हिंदी में समाचार पत्र निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ ये सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 दिसंबर 1827 को उदंत मार्तंड का अंतिम अंक प्रकाशित हुआ, जिसमें श्री शुक्ल ने लिखा कि आज दिवस लो उग्यो मार्तंड उदंत, अस्ताचल को जात है दिनकर दिन अब अंत। समाचार पत्रों से शुरू हुआ सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी। साहस की कलम से किसी ने क्या खूब लिखा है, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमा के राष्ट्रपति ओमेनाउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आशिक फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं मुकेश की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अपना बना के देखो ये फिल्म का नाम है। आशा भोंसले और साथियों की आवाजें, SH बिहारी के बोल, संगीत है रवि का।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आजाद फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, श्री रामचंद्र का संगीत।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

बाजे घुंघरू फिल्म का ये गाना आपने सुना, मोहम्मद रफ़ी, सबिता बनर्जी, सीता और साथियों की आवाज़ों में, शिवराज श्रीवास्तव का लिखा हुआ गाना, धनी राम का संगीत। अगला गाना बात एक रात की, इस फिल्म का गाना हेमंत कुमार और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है एसडी बर्मन का।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गाना आपको सुनवाते हैं, बगदाद की रातें। इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, प्रेम धवन के बोल, संगीत है डी दिलीप का।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, बनारसी ठग इस फिल्म का ये गाना है। लता मंगेशकर की आवाज, प्रेम धवन का लिखा हुआ गाना, संगीत है इकबाल कुरैशी का।

0: इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम संपन्न होता।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे व अंतिम चरण के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। तीसरे चरण के तहत प्रदेश की 1189 पंचायतों में वोट डाले गए। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक तीसरे चरण में कुल 6615 वार्डों में मतदान हुआ। पंचायती राज चुनाव के अंतिम चरण में सिरमौर

0: मैं वोट डालने आई हूँ, खुशी से वोट डालने आई हूँ। अपना अच्छा मेंबर चुनना चाहिए जो कि अच्छे काम करे।
1: मेरा नाम मोहन सिंह है, मेरी उम्र 82 साल है और मैं यहाँ पे वोट डालने आया हूँ। और मैंने सभी से ये निवेदन है कि पहले तो निर्विरोध चुनने की कोशिश करो, आपस में मेल मिलाप हो जाए, लेकिन अगर फिर भी लेकिन टकराव की स्थिति ना रखो कर। और सभी से ये निवेदन है कि 18 साल से ऊपर सभी को अपना मत उसका प्रयोग करना चाहिए कर।
2: उधर सोलन जिला की 82 ग्राम पंचायतों में भी आज अंतिम चरण का मतदान हुआ। बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों तक पहुंचे। मतदाताओं का कहना है कि पंचायत के सर्वांगीण विकास के लिए मतदान किया है ताकि उनकी पंचायत का चहुंमुखी विकास सुनिश्चित तो हो सके।
3: मेरा नाम पारुल शर्मा है और मैं आंजी पंचायत की रहने वाली हूँ। आज हमारे यहाँ पे मतदान था और मैं स्पेशली चंडीगढ़ से यहाँ आई हूँ वोट डालने। और रीज़न बिहाइंड कि मैंने आज वोट दिया है बिकॉज इन फ्यूचर जो हम एज न्यू जनरेशन देखते हैं, हमें एक ऐसा नेता चाहिए, हमें एक ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो छोटी छोटी चीजों का ना ध्यान रखे।
4: पर मैं कुलदीप मेहता वार्ड नंबर 2 से, यहाँ चौमुखी विकास के लिए हम अपने चुनने आए हैं सदस्य को, तो हम चाहते हैं कि अच्छा विकास हो पंचायत का।
2: वहीं धर्मशाला से भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने धर्मशाला की रक्कड़ पंचायत में मतदान किया। मतदान के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए सुधीर शर्मा ने कहा कि पंचायती राज संस्थाएं लोकतंत्र की बुनियाद हैं और स्थानीय विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव आपसी भाईचारे और सामाजिक सहभागिता का प्रतीक होते हैं।
5: आज पंचायती चुनाव का तीसरा चरण है और पंचायतें जैसा कि आप जानते हैं प्रजातंत्र की नींव है। पंचायती राज में ज़्यादातर देखने को मिला आपसी भाईचारे का चुनाव है और परिणाम जो भी हो सबको अपने अपने गांव में पंचायत में भाईचारे के साथ रह करके अपने पंचायत को गांव को प्रदेश को कैसे आगे ले जाना उसके लिए कार्य करना है, भावना यही है सब।
2: पंचायत प्रधान उप प्रधान व वार्ड सदस्यों के लिए आज डाले गए वोटों की गिनती मतदान के तुरंत बाद शुरू हो जाएगी और आज रात तक सभी नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों सहित 4 नगर निगमों सोलन मंडी पालमपुर और धर्मशाला के लिए डाले गए वोटों की गिनती कल 31 मई को होगी। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने 3 चरणों में हुए जिला परिषद पंचायत समिति सदस्यों जबकि 17 मई को 4 नगर निगमों धर्मशाला पालमपुर मंडी और सोलन में हुए चुनाव के मतों की गणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रदेश के 91 विकास खंडों में कल 31 मई को सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू होगी। जिला परिषद वार्डों की मतगणना के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कुछ स्थानों पर मतगणना की वेबकास्टिंग भी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में सुबह से रुक रुक कर हल्की वर्षा व तेज हवाएं चलने से तापमान में गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। राज्य के कई स्थानों पर ओलावृष्टि का भी समाचार है जिससे सेब सहित अन्य फसलों को नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश व बर्फबारी की संभावना जताई है। विभाग ने कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि व 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
6: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे थे। 3:05 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं लाहौल स्पीति जिले की चिट्ठी। लेखक हैं सुरेंद्र कुमार और वाचन स्वर है राजकुमारी चंदेल का।
7: लाहौल स्पीति जिला की स्पीति घाटी स्थित प्रसिद्ध की गोम्पा में 1 मई को भगवान गौतम बुद्ध की जयंती को बड़े ही हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन नवांग छेरिंग के सानिध्य में किया गया जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान गेशे केसंग ने भगवान बुद्ध की जीवनी और उनके उपदेशों पर प्रकाश डालते हुए लोगों को राग द्वेष और क्रोध त्याग कर प्रेम व सद्भाव से जीवन जीने का

संदेश दिया कि गोम्पा में आयोजित ये समारोह शांति, करुणा और मानवता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने में सफल रहा। लाहौल स्पीति के होनहार युवा आइस हॉकी खिलाड़ी तंजिन टशी ने एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए देश का नाम रोशन किया है। आइस हॉकी एशिया कप में भारत और चीन के मकाऊ के बीच खेले गए एक अहम मुकाबले में तंजिन टशी ने अपना दूसरा अंतर्राष्ट्रीय गोल कर प्रतियोगिता में अपनी एक खास पहचान बनाई है। उनके इस बेहतरीन प्रदर्शन ने मैच का रुख पूरी तरह से भारत की ओर मोड़ दिया। पूरे मुकाबले में उनकी तेज रफ्तार, स्टिक नियंत्रण और आक्रामक खेल शैली देखने लायक रही। इस दौरान एशिया कप में शानदार प्रदर्शन कर हिमाचल प्रदेश और देश का नाम रोशन करने वाले स्पीति घाटी के लोसर गांव के युवा खिलाड़ी तंजिन टशी को प्रदेश के मुख्यमंत्री और जनजातीय विकास मंत्री ने सम्मानित किया। भारतीय टीम में हिमाचल प्रदेश से शामिल एकमात्र खिलाड़ी तंजिन टशी ने प्रतियोगिता में कई शानदार गोल किए और चीन के खिलाफ मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब भी हासिल किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तंजिन टशी को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि तंजिन टशी जैसे खिलाड़ी प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और सरकार आइस हॉकी सहित शरदकालीन खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास करती रहेगी। इस दौरान ये भी बताया गया कि मुख्यमंत्री के प्रयासों से काजा में लगभग 75 करोड़ रुपये की लागत से आइस हॉकी स्टेडियम और 8 करोड़ रुपये की लागत से क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। दोनों परियोजनाओं को केंद्र सरकार से स्वीकृति मिल चुकी है और इस वर्ष कार्य शुरू होने की संभावना है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के जिला मुख्यालय केलंग में जिला स्तरीय रेडक्रॉस दिवस बड़े उत्साह और भागीदारी के साथ मनाया गया। पुराने सर्किट हाउस में आयोजित इस कार्यक्रम में उपायुक्त किरण भड़ाना ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मानवता की सेवा, स्वास्थ्य जागरूकता और समाज में सहयोग की भावना को बढ़ावा देना रहा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और कुल 39 यूनिट रक्तदान किया गया। वहीं पुलिस विभाग की ओर से नशा निवारण पर आयोजित कार्यशाला में युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों और उससे बचाव के उपायों की जानकारी दी गई। एक लंबे इंतजार के बाद 12 मई को मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग 3 को आधिकारिक रूप से यातायात के लिए बहाल कर दिया गया। प्रोजेक्ट हिमांक की स्नो क्लियरेंस टीम द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के तहत सरचू तक सड़क संपर्क सफलतापूर्वक बहाल किया गया, जिससे लद्दाख और देश के अन्य हिस्सों के बीच संपर्क दोबारा स्थापित हो गया है। अभियान के दौरान टैंगलंगला, लाचुलुंगला, नाकिला और गाटा लोप्स जैसे दुर्गम क्षेत्रों में भारी बर्फ हटाने का कार्य किया गया। कई स्थानों पर शून्य से नीचे तापमान, हिमस्खलन का खतरा और बर्फीले तूफानों के बीच मशीनरी और जवानों ने दिन रात मेहनत कर सड़क को डबल लेन स्वरूप में तैयार किया। उपायुक्त लाहौल स्पीति किरण भड़ाना ने ग्राम पंचायत तांदी स्थित राजकीय प्राथमिक पाठशाला का औचक निरीक्षण कर विद्यालय की शैक्षणिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला लाहौल स्पीति में प्रवासी मजदूरों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सराहनीय पहल की जा रही है। जिला बाल संरक्षण इकाई अधिकारी हीरानंद ने जानकारी देते हुए बताया कि मार्च 2026 से जिला बाल कल्याण समिति और चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम लगातार विभिन्न निर्माण स्थलों और मजदूर बस्तियों का निरीक्षण कर रही है। अभियान के तहत बीआरओ, लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग में कार्यरत प्रवासी मजदूरों के बच्चों को स्कूलों से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। टीम द्वारा उदयपुर से कोकसर और दारचा तक कई बार सर्वेक्षण किया गया, जिसमें कुल 16 ऐसे बच्चों की पहचान हुई जो शिक्षा से वंचित थे।

0: जिला अहमदनगर बालम टाकली से नंद कुमार अदवंत, उर्मिला नीलेश मयूरी, कल्पेश और संगीता अदवंत। आपने जिस गाने की फरमाइश की है वो है मर्यादा फिल्म का गाना, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया हुआ। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने, धुन बनाई कल्याण जी आनंद जी ने।
1: तू भी आ जा के आ गई रुत मस्त।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला जो गीत है ये खानदान फिल्म का गाना आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में है। राजेंद्र कृष्ण के बोल है, संगीत रवि का। ये गीत सुनना चाहते हैं रामलीला मैदान सचेंडी से बाबा शिवानंद त्रिपाठी, शशि त्रिपाठी, मनु मनी, मीत, शिवांश, अनूप सिंह और अभिजीत सिंह। आपकी पसंद का ये गाना सुनिए।

अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कच्चे धागे फिल्म का गाना। 1999 की फिल्म है ये कच्चे धागे। अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ें, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना, नुसरत फ़तेह अली खान का संगीत है। इस गाने को सुनने के लिए फरमाइश हमारे जिन श्रोताओं ने लिख भेजी है वो हैं गर्ल्स स्कूल रोड मनिहारी से अवधेश गुप्ता, गोलू, नीलू, विशाल राज और वंशराज। आपकी पसंद का कच्चे धागे फिल्म का ये गाना।

मनचाही गीत कार्यक्रम में अब जिन श्रोताओं की पसंद पर हम ये गीत सुनवा रहे हैं वो हैं रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा और सोमनाथ कालिया। आप सुनना चाहते हैं धर्मात्मा फिल्म का गाना मुकेश और कंचन की आवाज़ों में। इंदिवर के बोल हैं संगीत कल्याण जी आनंद जी का। आइए सुनते हैं धर्मात्मा फिल्म का गाना।

0: इस गीत के साथ ही आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: प्रस्तुत है नाट्य तरंग। नाट्य तरंग कार्यक्रम में आइए सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का पहला भाग। ये है मलयालम नाटक अग्निवल्यम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। सुनिए इस नाटक का पहला भाग।

0: हेलो
1: जी,
0: इस तरह टकटकी लगाकर आकाश की ओर क्या देख रही हो?
1: आप मेरी ओर क्यों देख रहे हैं?
0: ऐसे ही।
1: मैं भी बस ऐसे ही बाहर देख रही हूँ।
0: क्या नाम है आपका? मेरा मतलब है आप कौन हैं?
1: आप कौन हैं?
0: मैं जेल का अध्ययन करने आया हूं।
1: और मैं जेल में सड़ने आई हूँ।
0: ये तो देखते ही मालूम हो गया था।
1: लेकिन आपको देखकर तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं हुआ। आप कौन हैं?
0: मैं एक नाटककार हूं। मैंने मलयालम भाषा में कई नाटक लिखे। इस बार मैंने जेल की पृष्ठभूमि पर नाटक लिखने का निश्चय किया है। इसी सिलसिले में आपके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं।
1: आप दूसरे कैदियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं?
0: कोशिश कर रहा हूं। हाँ, आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं।
1: मेरा नाम डेजी है।
0: डेजी?
1: क्या हुआ?
0: मुझे मुझे कुछ याद आ रहा है।
1: क्या?
0: कुछ महीने पहले मैंने अखबार में पढ़ा था, डेजी नाम की युवती को सेशंस जज ने सजा दी थी। तुम आप वही डेजी है ना?
1: हाँ।
0: आपने हाई कोर्ट में अपील नहीं की?
1: अपील तभी की जाती है जब सजा पाने वाले को कोई शिकायत हो।
0: आपकी बातें बड़ी विचित्र लग रही हैं।
1: मेरी कहानी भी बड़ी विचित्र है।
0: क्या आप इस सब के लिए अपने को दोषी मानती हैं?
1: दोष परिस्थितियों का है या मेरे भाग्य का, जिसने मुझे उन परिस्थितियों में डाल दिया, कह नहीं सकती।
0: आपकी कहानी जानने के लिए बहुत उत्सुक हो उठा हूं। क्या आप?
1: हाँ, मैं सुनाऊंगी आपको अपनी कहानी। एक साधारण देहात के गरीब घर में मेरा जन्म हुआ। मैं छोटी ही थी कि मेरे पिता चल बसे। खेतों में मजूरी करके और इधर उधर के छोटे मोटे काम करके मेरी माँ ने मुझे पाला पोसा, बड़ किया। हायर सेकेंडरी की परीक्षा मैंने फर्स्ट डिवीजन में पास की। मैं चाहती थी कि पढ़ाई जारी रखूं और कोई डिग्री या डिप्लोमा ले लूं। संयोग से तभी एक वैभव संपन्न युवक बेनी से मेरा परिचय हुआ। उन्होंने मुझसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। बेनी देखने में सुंदर नहीं थे, रंग भी उनका काला था, किंतु मन से वो बहुत सुंदर थे। हम दोनों का विवाह हो गया। बेनी ने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया कि विधाता को जैसे मेरे सौभाग्य से ईर्ष्या होने लगी। एक दिन सहसा उनकी छाती में एक विचित्र ही प्रकार का दर्द उठा और वो बेहोश होकर गिर पड़े। जब उन्हें इस तरह के 2-3 अटैक और हुए तो उन्हें मर्सी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया।
2: ओह, डॉक्टर रामदास। गुड मॉर्निंग डॉक्टर।
3: गुड मॉर्निंग बेनी। गुड मॉर्निंग।
2: कभी तबीयत कैसी है?
3: बीच बीच में कभी कभी सीने में थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन थकान बहुत है डॉक्टर।
2: चिंता की कोई बात नहीं। अब डॉक्टर लॉरेंस तुम्हें एग्जामिन करेंगे। वो आज छुट्टी से वापस आ रहे हैं।
3: क्या ऑपरेशन होगा डॉक्टर?
2: क्यों, ऑपरेशन से डर लगता है क्या?
3: नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था।
2: क्या करने से तुम्हें आराम होगा ये निर्णय वही लेंगे। उन्होंने विदेश में शिक्षा पाई है और सर्जरी में स्पेशलाइजेशन किया है। अरे ये क्या, गिटार? गुड, कितना मधुर स्वर है इसका। बेनी, इसे बजाना आता है क्या?
3: डॉक्टर, किसी गुरु से तो शिक्षा नहीं ली है, फिर भी थोड़ा बहुत बजा लेता हूं।
2: बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट।

0: एक तरह से इसमें मेरी जान बसती है।
1: अच्छा,
0: अपनी पत्नी के बाद मैं इसी को सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। पत्नी जीवन में प्रेम भर देती है और गिटार मधुरता।
1: तब तो दोनों ही दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हुए, क्यों?
2: नमस्ते डॉक्टर।
1: ओ नमस्ते,
0: कहाँ गई थी तुम?
2: सुना था कि डॉक्टर छुट्टी के बाद लौट आए हैं।
0: अच्छा, तो तुम जल्दी से उनका पता लगाने गई थी।
1: मई पत्नी जी ठहरी, उत्कंठा हो सकती है। डेजी, ये टॉनिक किसके लिए लाई?
0: हम दोनों के लिए।
2: नहीं डॉक्टर, सिर्फ इनके लिए।
0: इसकी बात पर ध्यान ना दीजिए डॉक्टर, खाएंगे तो हम दोनों एक साथ ही खाएंगे, वरना।
1: अच्छा अच्छा, मैं जरा वार्ड हुआ हूं, फिर मिलेंगे।
0: अच्छा,
2: तुमने डॉक्टर रामदास को ये सब क्यों बताया कि हम एक साथ खाते हैं? हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं।
0: इसमें हर्ज क्या है? सच तो यही है ना।
2: सच होने पर भी अपनी बातों को दूसरों के सामने इस तरह खुल्लम खुल्ला क्यों कहते हो? मुझे तो बहुत शर्म आ रही थी।
0: इसमें शर्म का है कि क्या मुझे ये कहना चाहिए था कि हम दोनों में झगड़ा रहता है? देखो डेजी, सत्य किसी के सामने किसी भी समय कहा जा सकता है।
2: अच्छा जी, तब तो एक काम करें, इस कमरे के बाहर एक बोर्ड लटका दें। इस कमरे में रहने वाले पति पत्नी एक दूसरे के गहरे प्रेम में डूबे हुए हैं।

0: देजी, कल डॉक्टर रामदास ने हमसे एक सवाल पूछा था, तुम्हें ख्याल है?
1: क्या?
0: हमारे बच्चे हैं या नहीं?
1: हाँ, ख्याल है।
0: मुझे याद है, ये सवाल सुनते ही तुम उदास हो गई थी।
1: नहीं तो?
0: नहीं?
1: हाँ शायद। बेनी, बेनी तुम अच्छे हो जाओ, फिर सब ठीक हो जाएगा। बेनी,
0: तुम्हें लगता है मैं ठीक हो जाऊंगा?
1: हाँ बेनी, बिल्कुल ठीक हो जाओगे मेरे अच्छे बेनी।
0: इधर आओ ना
1: बेनी, ये अस्पताल है।
0: तो क्या हुआ? आओ ना।
1: बेनी, बेनी, बेनी, बेनी, बेनी, क्या हुआ?
0: कुछ दर्द सा हो रहा है।
1: अरे मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। तुम लेट जाओ बेनी, लेट जाओ ना तुम। अरे तुम्हारे तो चेहरे पर पसीना आ रहा है।
0: नहीं नहीं नहीं, नहीं। फिक्र मत करो, जरा सी गिरी ना से चिंता की कोई बात नहीं।
1: नहीं नहीं, नहीं। मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ।
0: ठीक जी।
1: बेनी, एक बात बताओ।
0: पूछो।
1: तुम्हें सबसे ज्यादा कौन अच्छा लगता है, गिटार या मैं?
0: बताऊं? दोनों।
1: मेरा मतलब है कि तुम्हें तुम्हें सबसे अधिक सुख किसमें मिलता है?
0: तुम्हें निहारते हुए गिटार बजाने में।
2: तो आप कलाकार भी हैं?
0: कलाकार तो नहीं, लेकिन कला प्रेमी रोगी हूँ। आप
1: डॉक्टर लॉरेंस है ना?
2: जी हाँ, मैं डॉक्टर लॉरेंस हूँ। तुम बेनी हो ना?
0: हाँ डॉक्टर, तुम लॉरेंस हो ना?
2: हाँ, मैं लॉरेंस हूँ भाई।
0: माय गुडनेस, तुमसे अचानक मिलकर मुझे कितनी खुशी हो रही है बता नहीं सकता।
2: और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है।
0: मैं तो तुम्हें पहचान नहीं सका लॉरेंस।
2: मैं ही तुम्हें कहाँ पहचान पाया बेनी।
0: कुछ भी हो, तुम यहाँ अस्पताल में मेरे डॉक्टर के रूप में, मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैंने सुना कि अमेरिका से एक फेमस डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर लॉरेंस, तो सोचा कि जरूर कोई कॉम्पिटेंट डॉक्टर होंगे।
2: तो क्या मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ?
0: मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरे वही पुराने दोस्त लॉरेंस हो। सुनो, हमें एक दूसरे से मिले कितने साल हुए होंगे?
2: यही कोई 14 या 15 साल।
0: और तुम मुझे देखते ही पहचान गए, खास तौर पर इस हालत में।
2: Exactly.
0: गजब की याददाश्त है तुम्हारी। अरे हाँ, मैंने परिचय तो करवाया ही नहीं। लॉरेंस, मेरी पत्नी डेज़ी।
2: नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। तो मैं देखते ही समझ गया था
1: आप आ गए हैं, तो लगता है जैसे।
2: सब वो बातें रहने दीजिए अब। बेनी, पहले बताओ तुम्हें तकलीफ क्या है?
0: चेस्ट में पेन है।
2: हाँ,
0: दिल की तरफ भी पेन है। सांस लेने में अक्सर बड़ा कष्ट होता है।
1: ये ठीक से नहीं बताते। बस यही कह देते इन्हें कोई तकलीफ नहीं, इनकी आदत।
2: हाँ, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। स्कूल में हम 3 साल एक साथ पढ़े हैं। डेजी
1: जी,
2: मैं इन्हें ठीक करने में कोई कसर नहीं रखूंगा, जो भी जरूरी होगा जरूर करूंगा।
1: थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, आप इनकी बीमारी के बारे में क्या सोचते हैं?
0: डेजी, मेरे सारे रोगों की लिस्ट तुम ही इन्हें दे दो। लॉरेंस, मैंने अपने को डेजी के सुपुर्द कर दिया है।
2: बेनी, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारा कोई तो है जो तुम्हारी हर बात की तरफ ध्यान देता है।
0: हाँ, हूँ सौभाग्यशाली, लेकिन इस 24 घंटे की देखभाल से मेरा दम घुट रहा है।
2: खुद सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो इस पर देखभाल से भी दम घुटने लगे तो। हाँ। खैर जो भी हो भाई, बेनी तुम्हारा कंप्लीट चेकअप करना होगा। अभी तो मैं वार्ड में जा रहा हूँ, बाद में आऊंगा। सही हो गया ना?
0: बाय।
1: भगवान की बड़ी कृपा है जो डॉक्टर लॉरेंस को यहाँ भेज दिया।
0: ये फ्लास्क क्यों ले रखा है?
1: अरे बाबा, मैं तो पानी गर्म करने को रखाई थी, शायद गर्म हो गया होगा। मैं अभी जाकर ले आती। सो रहे हैं क्या?
0: अरे गिरिजा, तुम?
1: आप यहाँ?
0: हाँ, मैं एक बीमार की हैसियत से आया हूँ। सीने में और दिल में दर्द है।
1: दिल में दर्द? जिसके दिल ही नहीं उसके दिल में दर्द?
0: जरा शिष्टता से बात करो।
1: जो शिष्टता का मतलब ही नहीं समझता वो कह रहा है शिष्टता से बात करो।
0: जरा आहिस्ता बोलो।
1: मुझे पहचान लिया आपने?
0: हाँ, पहचाना ही नहीं, इस दौरान बीच बीच में तुम्हें याद भी किया है।
1: अब भी मन में विष भरा है, दूषित विचारों का विष।
0: तुम ऐसा सोचती हो?
1: सोचती नहीं, बल्कि अनुभव से कहती हूँ। मुझे देख पाएंगे इसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्यों?
0: हाँ, ये कल्पना नहीं की थी कि तुम्हें नर्स की ड्रेस में देखूंगा।
1: हाँ, आपने तो मुझे किसी हीन वेश में देखने की कल्पना की होगी। हा? इस कदर गिर तो नहीं गई हूँ?
0: ये तो बहुत ही अच्छी बात है गिरिजा।
1: मैं किसी का आशीर्वाद नहीं चाहती।
0: क्या?
1: आपके पास खड़ा रहना तक मुझे अच्छा नहीं लग रहा।
0: मैं तुम्हारा पेशेंट हूँ गिरिजा।
1: ये तो आज की बात है, उन दिनों तो आप एक टेरर थे, टेरर।
0: मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आखिर बात क्या है?
1: आपको ये कहते हुए शर्म नहीं आती?
0: तमीज से बात करो। मैंने ऐसा किया क्या है जो तुम ये सब कह रही हो?
1: अच्छा, 4 साल पहले उस दिन जो कुछ हुआ था आपको याद नहीं? मेरे पिताजी बीमार पड़े थे, उनके प्राण बचाने का कोई उपाय नहीं था। मैं नौकरी की तलाश में आपकी संस्था में गई तो आपके दुष्ट मैनेजर ने मुझे अपनी वासना का शिकार बनाने की कोशिश की। मैंने बाघिन की तरह उसका सामना किया, मेरे कपड़े फट गए, लेकिन वो भाग गया। उसके बाद कमरे में घुस आए आप, लेकिन मैं आपके चंगुल से भी भाग निकली।
0: देखो, मेरी पत्नी सुन रही होगी, प्लीज प्लीज आज चुप हो जाओ।
1: हो तो मुझे आपकी पत्नी से डरना होगा?
0: प्लीज प्लीज मुझे माफ करो, इस समय कुछ ना कहो।
1: उस दिन मैंने गिरजा और बेनी की बात सुन ली थी, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। उस रात बेनी कुछ अस्वस्थ रही। दूसरे दिन डॉक्टर लॉरेंस ने बेनी का कंप्लीट चेकअप किया। 2 तरह के एक्सरे लिए, ईसीजी लिए, ब्लड और यूरिन टेस्ट हुए। रिजल्ट आने के बाद ही वो कुछ बता सकेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। उन दिनों जब भी मुझे फुर्सत मिलती, मैं पास के चर्च में जाकर बेनी की जल्दी ठीक हो जाने के लिए प्रार्थना करती थी। एक दिन मैं चर्च से लौटी तो सुना बेनी और गिरजा बातें कर रहे थे।
3: मुझे कुछ नहीं कहना है।
0: लेकिन मुझे तो कहना है, कल जहां बात रुक गई थी मैं वहीं से शुरू करता हूँ।
3: मैं कुछ सुनना नहीं चाहता।
0: तुम्हें सुनना पड़ेगा। सुनो, तुम जब आई थी मैं ऑफिस में नहीं था। तुम्हारे साथ जो ज्यादती हुई वो मुझे मालूम है। तुम्हें समझा बुझा कर शांत करने और तुमसे माफी मांगने के लिए ही मैं दौड़ा दौड़ा आया था, लेकिन तुम न जाने क्या समझी और मेरी बात सुने बिना चली गई। मैंने आवाज दी मगर तुमने मेरी तरफ देखा तक नहीं। तुम कौन हो ये मैं तुम्हारी एप्लीकेशन पढ़कर ही जान गया था।
3: आप चाहते हैं मैं इन सब बातों पर विश्वास करूं?
0: नहीं, मेरी ओर से कोई ऐसा आग्रह नहीं है। मैंने तुम्हें सच बता दिया है, बस मेरे लिए इतना ही काफी है।
3: आप इतने ही सज्जन और भले मानस होते तो मुझे बुलाकर नौकरी ही नहीं दिला देते।
0: हाँ, लेकिन उस बीच कुछ ऐसी विचित्र घटनाएं हुई कि मुझे इसका अवसर ही नहीं मिला। उसी दिन मैनेजर को नौकरी से हटा दिया गया, बाद में मैंने वो ऑफिस ही बंद कर दिया। आज ना वो संस्था है ना वो ऑफिस।
3: अच्छा।
0: हाँ अच्छा, ये बताओ तुम्हारे पिता ऑपरेशन के बाद भी कई दिन अस्पताल में रहे थे या नहीं?
3: हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ?
0: कितने रुपए खर्च हुए?
3: करीब 600, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति पर तरस खाकर अस्पताल वालों ने वो रकम माफ कर दी थी।
0: माफ नहीं की थी गिरिजा, सारी रकम मैंने चुकाई थी। तुम्हें बिना सूचना दिए चेक भेज दिया था। चाहो तो अब भी पता लगा सकती हो, डिस्चार्ज होकर बाहर जाते वक्त तुम्हारे पिता के हाथ रुपए भी मैंने रखवा दिए थे।
3: क्या?
0: हाँ, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था। तुम्हारी वेदना देखकर मेरा मन दुखी हो उठा। मुझे लगा कि तुम्हारी इन मुसीबतों के लिए मैं भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हूँ, इसलिए मैंने ये सब किया। फिर एक दिन सुना तुम और तुम्हारे पिता दोनों ही कहीं चले गए। उसके बाद कल तुम्हें देखा।
3: मैं ये सब नहीं जान पाई, गलती हो गई, मुझे माफ करें।
0: माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं गिरजा, मैंने जो कुछ भी किया वो अपना कर्तव्य समझकर किया। चेहरा कुरूप होने पर भी मेरा मन कुरूप नहीं है।
1: गिरजा चली गई, लेकिन उनकी बातें सुनकर मेरे मन में बेनी के प्रति कितनी श्रद्धा, कितना आदर, कितना प्यार और उमड़ आया, कह नहीं सकती। दूसरे दिन डॉक्टर लॉरेंस जांच की रिपोर्ट लेकर आए। क्या हुआ डॉक्टर? टेस्ट में क्या निकला? कोई खास बात?
4: वो बेनी कहाँ है?
1: चेरिन के पास गए हैं, अभी आते होंगे। डॉक्टर, सारी रिपोर्ट्स आ गई ना?
4: हाँ डेजी, सारी रिपोर्ट्स आ गई।
1: कोई खास बात बताइए ना डॉक्टर।
4: डेजी, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन मैंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। बेनी के हार्ट के एक वॉल्व में गड़बड़ है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। अगर वॉल्व बंद हो गया तो उसकी सांस रुक जाएगी और ऐसी इमरजेंसी किसी वक्त उठ सकती है। जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना होगा, इसी हफ्ते में। हाँ डेजी प्लीज, बेनी से कुछ नहीं कहना, मेजर ऑपरेशन है, लेकिन मैं अपनी पूरी जान लड़ा दूंगा।
1: डॉक्टर किसी तरह मेरे बेनी को बचा लीजिए डॉक्टर, उनके बिना।
4: अरे भाई, अभी तो ऑपरेशन हुआ भी नहीं और तुमने चिंता करनी शुरू कर दी।
1: मुझे बहुत डर लग रहा है डॉक्टर।
4: डेजी, इस तरह अधीर होने से कैसे काम चलेगा? तुम्हें तो बेनी को आत्मविश्वास और सहारा देना है। अब तुम इस तरह हिम्मत हारोगे तो कैसे होगा? तुम्हें तो मुझे सब बात सच सच बतानी ही थी।
1: नहीं, मुझ में ये सुनने का साहस नहीं है डॉक्टर।
4: डेजी धीरज रखो, डेजी धीरज रखो। बेनी इस समय आ गए तो ये सब देखकर दुखी हो जाएंगे। अरे लो, बेनी आ रहे हैं।
5: आइए आइए, कहाँ पे जाना?
6: ओ डॉक्टर,
5: भाई जब भी डॉक्टर पेशेंट को देखने आता है पेशेंट बेड पर नहीं मिलता। इस पैकेट में क्या है?
0: बता दूंगा, पहले ये बताओ मेरी रिपोर्ट्स देखकर तुमने क्या डायग्नोस किया?
5: मेरी रिपोर्ट सब ठीक है, घबराने कोई बात नहीं है। हाँ, हो सकता है एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़े।
0: कोई गड़बड़ है डॉक्टर?
5: अरे भाई गड़बड़ कैसी, डोंट वरी, मैं तो हूँ, आई विल डू माई बेस्ट।
0: लॉरेंस, ये बात इस डेजी से कह दो, इसी को ज्यादा डर लग रहा है। डेजी, अब तुम्हारी परेशानी दूर हुई ना?
5: और हाँ बेनी, एक बात और, इस तरह कमरा छोड़कर बाहर जाना ठीक नहीं है। I don't like it. अच्छा तो मैं चलता हूँ अब। See you again. Bye.
1: तुम तो चेरियन से मिलने गए थे बेनी, ये पैकेट कहाँ से उठा लाए?
0: तुम्हारे लिए एक चीज है।
1: अच्छा, देखो तो।
0: लो, देख लो।
1: साड़ी, ये अब काहे को? और यहाँ
0: मेरी ओर से प्रेजेंट।
1: प्रेजेंट?
0: हाँ, तुम्हें याद है आज तुम्हारा जन्मदिन है, भूल गई? लो, मेरी डेजी के लिए जन्मदिन का प्रेजेंट है। तुम उदास नजरों से मुझे घूर क्यों रही हो? लो ये रख लो।
1: इतना स्नेह जताकर तुम क्यों मेरा दम घोट रहे हो? बेनी, हमें एक दूसरे के लिए इतना अधीर नहीं होना चाहिए।
0: हाँ, ऐसा मुझे भी लग रहा है, तुम्हारे साथ मेरा विवाह नहीं होना चाहिए था, तुम्हें इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए था। खैर, साड़ी पसंद आई?
1: तुम्हें अस्पताल में साड़ी नहीं लानी चाहिए थी।
0: अब अगर मैं और मौका ना पाऊं तो? तुम तो बड़े ना समझ हो, तुम अगर ऐसे ही रही ना तो फिर चल गया काम। प्रेजेंट देखकर रोने लगी? नहीं नहीं नहीं, रो मत। देखो, अब अगर और ज्यादा रोगी तो मैं रूठ जाऊंगा। बोलो, रूठ जाऊं? नहीं नहीं ना? अच्छा तो फिर हंस दो, देखो ये ऐसे ऐसे
1: अरे क्या क्या हुआ आपको? यहाँ लेट आइए, लेट आइए ना बेनी, बेनी, बेनी, डॉक्टर, डॉक्टर। कुछ ही मिनटों के अंदर डॉक्टर लॉरेंस दौड़ कर आ गए। दूसरे ही दिन बेनी का मेजर ऑपरेशन हुआ। भगवान की कृपा से ऑपरेशन सफल रहा। गिरजा की निष्ठापूर्ण सेवा ने मुझे अचरज में डाल दिया। जब ब्लड का स्टॉक खत्म हो गया तो उस नाजुक परिस्थिति में गिरजा ने अपना खून दिया। बेनी धीरे धीरे बोलने चालने लगा तो मेरा मन खुशी से खिल उठा, लेकिन मेरा सुख क्षण भंगुर था। सहसा सब खत्म हो गया। चौथे दिन मेरा बेनी स्वर्ग से डर गया।
7: ओह नो,
1: सदा के लिए मुझसे बिछड़ गया।
7: आखिर ये हुआ कैसे?
1: ऑपरेशन के बाद एक दिन बेनी के हृदय में दर्द उठा, सांस लेने में बड़ा कष्ट होने लगा। फौरन डॉक्टर के पास आदमी दौड़ाया, लेकिन दुर्भाग्य से डॉक्टर लॉरेंस घर पर नहीं मिले। डॉक्टर आशीष दौड़े आए, लेकिन उस वक्त तक बेनी के प्राण फकीर उड़ चुके थे। टूटे हुए पेड़ की तरह मैं जमीन पर गिर पड़ी और फिर मुझे किसी बात की सुध नहीं रही। बाद मुझे होश आया, मैं बीमार पड़ गई। जिस कमरे को मेरे पति खाली कर गए थे मैं उसी में भर्ती हो गई। 2 महीने बीत गए। एक दिन नर्स गिरजा मेरे पास आई।
3: डेजी, ये सब क्या है? छोटे बच्चों की तरह?
8: ये दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होता गिरजा।
3: दुख तो मुझे भी है डेजी, मैं भी उनको नहीं भूल सकती। उन्होंने मुझ पर बहुत उपकार किया था।
8: मैं अब क्यों जीवित हूँ गिरजा? चिराग बुझ गया, रोशनी खत्म हो गई, मेरे सामने अब अंधेरा ही अंधेरा है।
3: ना डेजी, इस अंधेरे से तुम्हें बाहर निकलना ही होगा। उठो, हाथ मुंह धो लो, हमेशा रोना धोना अच्छा नहीं। चलो देखो, देखो इससे बेनी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी।
8: गिरजा
3: डेजी, अच्छा अब मैं चलती हूँ, ड्यूटी खत्म होने पर आऊंगी, तब हम देर तक बैठकर बातें करेंगे।
1: इस तरह कुछ महीने और बीत गए। डॉक्टर लॉरेंस मेरी कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार रहते थे। बेनी के प्रति वे बहुत स्नेह प्रदर्शित करते थे। और एक दिन सब लोगों को आश्चर्य में डालकर हम, मैं और लॉरेंस विवाह सूत्र में बंध गए।
7: अच्छा?
1: लेकिन इस सब के बावजूद भी बेनी मेरे अंदर जीवित रहे। उनका प्रिय गिटार मैंने संभाल कर रख लिया था। एक दिन की बात है,
9: आप सुन रहे थे नाटक अग्निचक्र का पहला भाग। ये था मलयालम नाटक अग्निवल्यम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। ये थी केंद्रीय नाटक एकांश की प्रस्तुति। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में।
10: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
11: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
10: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
12: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
10: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
12: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
10: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
13: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
14: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
13: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
15: धन जवान

0: कैमरा एक्शन।
1: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं अभिनेत्री साधना सिंह, यानी नदिया के पार की गुंजा।
2: जोगी जी प्रेम पर हो लगा हमको, कोई इसकी दवा यदि है तो कहो।
1: इनसे बातचीत कर रही हैं विधि जैन।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा हमेशा आपके लिए कोई ऐसे व्यक्तित्व को लेकर आती है जो आपसे बहुत पहले से जुड़ा हुआ है। हमारे श्रोता जिन्हें बहुत पसंद करते हैं, और आज एक ऐसी अभिनेत्री हमारे समक्ष हैं जिनको देखकर न जाने कितने दिलों ने ये सोचा होगा कि काश हम भी ऐसे ही होते, या हमारे परिवार की बेटियां, बहुएं सभी ऐसी ही होती। हर कोई ये विचार कर रहा था, वो मिट्टी की खुशबू, वो जिंदगी, वो किरदार, वो अभिनेत्री जो उस समय भी उतनी ही खूबसूरत थी और आज भी वही रूप, वही रंग और वही यौवन हमें दिखाई दे रहा है। आज हमारे सामने है, अच्छा श्रोताओं चलो एक प्रश्न पूछती हूँ। एक डायलॉग बड़ा खूबसूरत सा था, चंदन काहे का हम अच्छी लड़की नहीं है, ये किस फिल्म का डायलॉग था जरा विचार कीजिए। हाँ वही फिल्म जिसमें हमने होली की धुन पर भी नाचा है और गांव की एक प्यारी सी लड़की की चूहलबाजी, मस्ती और बहुत सारी शैतानी को भी देखा है, और वही मस्तीखोर बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी अभिनेत्री हमारे बीच में है और नाम है साधना सिंह जी। मैं मंच से इस प्यारे से विविध भारती से आपका इतने प्यार से स्वागत करती हूँ।
1: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आज पूरा विविध भारती परिवार इतना प्रसन्नचित है आपको पाकर क्योंकि उन्हें उनकी गुंजा सुनने को मिल रही है।
1: हाँ बिल्कुल,
0: मैंने जब जिक्र गुंजा का कर दिया है तो गुंजा से ही शुरू करते हैं। गुंजा जो है वो बहुत बदमाश भी है और कहीं मिर्ची पीस के खिला देती है कहीं पानी गिरा के चली जाती है। हाँ। कभी बाबा की डांट भी खाती है तो माँ के सामने झिझक के निकल भी जाती है, और वही गुंजा जो है वो एक समय पे आके उदास भी हो जाती है अपने परिवार के लिए, बहन के लिए, अपने खुद के लिए। तो आप उन दोनों में से, हालांकि मुझे तो ऐसा लगता है कि आप पहली वाली गुंजा होनी चाहिए, पर फिर भी मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि मेरे सामने जो गुंजा बैठी है वो कौन सी वाली गुंजा है।
1: एक्चुअली तो फर्स्ट हाफ में जो दिखा है चुलबुली, बदमाश
0: जी,
1: प्रैंक करने वाली हूँ मैं वही, लेकिन उसके साथ ही ये आता है साथ में जो सेंसिटिविटी है, जो उसका अलग भाव, जो
0: समझदारी,
1: सैडनेस है या किसी के लिए फील करना है,
0: हाँ।
1: वो अपने आप इसके साथ बायो प्रोडक्ट की तरह आता है।
0: हाँ।
1: तो मैं एक्चुअली देखा जाए तो जो गुंजा है वही मैं हूँ,
0: दिल की सच्ची अच्छी बच्ची।
1: हाँ, जो भी है बदमाशी भी करती हूँ और आज तक करती हूँ। पहले मेरे बच्चे थोड़ा एम्बेरस्ड हो जाते थे, क्या मम्मा रुको, अब वो भी इंजॉय करते हैं क्योंकि उनको पता ही है औरत रुकने वाली है नहीं। तो मैं आज भी वैसे ही मस्ती करती हूँ, घर में भी,
0: हाँ।
1: बाहर भी, फ्रेंड्स के साथ भी। और जब बोलते हैं गुंजा, गुंजा के कैरेक्टर में इतनी ढल गई मैं कि मुझे पता ही नहीं चला ये मेरे अस्तित्व में कैसे शामिल हो गई।
0: अच्छा।
1: और कुछ चीज़ें थी जो मेरी थी
0: जी,
1: और मेरे दादा जो ये थे डायरेक्टर गोविंद मुनीस जी, वो मुझसे सुनते थे, अच्छा बताओ तुमने और क्या बदमाशी की, तो वो सब बताती थी, जैसे कलर लगाया उसको सचिन को लगाया ना, वो मेरा एक्चुअली रियल इंसिडेंट था जहाँ पे मैंने अपनी फ्रेंड के भाई को, सोया हुआ था और सुबह उठ नहीं रहा था होली में, तो उसको पूरा लगाया था ऐसे मैंने, तो दादा ने डाल दिया वो और जो विर्ज खिलाई, अभी भी करती हूँ मैं वैसे काम।
0: यानी साधना जी जो है वो ये बदमाशियां कर चुकी थी और अभी भी कर रही हैं और गुंजा
1: करती रहूंगी।
0: सच बात है, वो गुंजा का जो किरदार रहा है आपका, जो आपने किया है, उस समय बहुत सारी अच्छी फिल्में आ रही थी, यानी ऐसी ही फिल्में आ रही थी जो बहुत सेंसिटिव थी, लोगों के दिलों को छू रही थी, और उन फिल्मों के बीच में सन 1982 में नदिया के पार अपना एक अलग मुकाम बनाया। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि नदिया के पार करते समय या उसके पहले क्या आपने उसके बारे में पढ़ा था, पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी थी, या बस नेचुरली उतर गई थी मैदान में?
1: हाँ नहीं, उतर ही गई थी क्योंकि कहीं मैंने वो एक्टिंग सीखी नहीं,
0: अच्छा,
1: और कोई स्पेशल कोर्स नहीं कराया दादा ने मेरे साथ
0: जी,
1: उन्होंने बस एक ही चीज़ बोली, तुम जैसी हो वैसे ही रहना, ठीक है। और लेकिन बावजूद उसके मुझे लगता था कि नहीं, एक्टिंग कर रही हूँ मैं, कहाँ करूँ, मुझे समझ नहीं आया शुरू में। तो जब शूटिंग ख़त्म हो गई, मैं कहा दादा एक्टिंग ही नहीं कराई
0: अच्छा
1: आपने, तो बोलते बस तुम देखना पर्दे पे, इसी को एक्टिंग बोलते हैं। तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं था क्योंकि दिमाग में था ही नहीं कि एक्ट्रेस बनना है
0: जी।

0: लेकिन चलिए जो बने, लेकिन उन्होंने देखा मुझे 14-15 दिन
1: जी
0: ऑब्जर्व किया,
1: जी
0: तब जाके उनको लगा यही मेरी गुंजाइश है।
1: अरे वाह,
0: हाँ
1: तो साधना में उन्होंने गुंजा ढूंढ ली। जब आप छोटी थी तो आप क्या चाहती थी? आप अभिनेत्री, आपने अभी बोला कि आपको पता नहीं था कि आप अभिनेत्री
0: हाँ
1: बनेंगी,
0: हाँ
1: तो साधना जी क्या बनना चाहती थी?
0: मुझे पैशन तो सिंगिंग का ही था,
1: अच्छा
0: तो लोग भी मुझे एज ए सिंगर ही जानते थे। कानपुर में मैं थी
1: जी
0: तो उनके हिसाब से मैं सिंगर ही थी, और टीचर्स भी बहुत प्यार करती थी, क्योंकि जैसे ही उनका ब्रेक होता है ना,
1: हाँ
0: लंच ब्रेक
1: हाँ
0: वगैरह,
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: बोलती थी बुलाओ साधना को,
1: हाँ
0: और सब खा रही और मुझे बोल रही वो वाला गाना सुनाओ, अभी वो वाला सुनाओ, फरमाइशी
1: हाँ
0: चलता था गीत। तो
1: जी
0: इस वजह से मेरी बड़ी गलतियां माफ कर दी जाती थी
1: अरे
0: स्कूल
1: वाह।
0: में भी, कि ठीक है जो भी है गाना तो गाती है ना, तो या कुछ क्योस होता था तो बोलते साधना को बोलो माइक पे आए जल्दी।
1: अच्छा
0: हाँ तो ये था, रुतबा था मेरा अपना।
1: तो अच्छी बात है। लेकिन आपने एक जिक्र किया कि आपके सामने माइक रखा जाता था और कहा जाता था कि साधना
0: हाँ
1: गाओ, लेकिन अभी आप अपनी पसंद का कोई गीत बता दीजिए जो हम हमारे श्रोताओं को सुना दें। कौन सा ऐसा गीत है जो पहला गीत आप सुनना चाहती हैं आपके साक्षात्कार के साथ?
0: देखिए मैं आपको बताऊं, मैं 3 साल की थी, 3 साढ़े 3 साल की, जब मैंने अचानक एक गाना गाया। उस समय तो रेडियो होते थे, और मेरी मम्मी ने पूरे मोहल्ले को बुला लिया, मेरी बेटी देखो गाना गा रही है, मेरी बेटी गाना गा रही है। वो गाना था तोरा मन दर्पण कहलाए, है
1: आह क्या खूबसूरत
0: ना।
1: गीत है।
0: तो शुरुआत मेरी उससे हुई, और फिर बस गाने लगी, और मतलब एज ए सिंगर छाने लगी। उस वक्त आवाज़ अलग थी मेरी,
1: जी
0: मतलब आप 50,000 लोग खड़े कर दीजिए उन तक पहुंच सकती थी।
1: उतनी बुलंद आवाज
0: हाँ
1: थी
0: बुलंद आवाज़ थी।
1: जी। तो आपका जब पसंदीदा गीत है और 3 साल की उम्र में जब
0: हाँ
1: छोटी सी साधना ने पहला गीत गाया है, तो वो गीत हम आपको विविध भारती
0: हाँ
1: परिवार की तरफ से उपहार स्वरूप देना चाहते
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: बिल्कुल, थैंक यू।

0: अब साधना जी, आपने बताया कि 3 साल की उम्र में आप गा रही थीं, आप हालांकि आप आज भी बहुत खूबसूरत हैं, तब तो भला की खूबसूरत रही होंगी, तो लोगों का प्यार करना बनता है, उसमें कोई दो मत नहीं है। और मैं शायद गलत नहीं हूँ कि आपने मंच में नृत्य, अभिनय, बहुत सारे काम स्कूल में जो होते हैं वो भी शायद किए
1: हाँ, मैंने
0: होंगे।
1: नृत्य कभी नहीं किया,
0: अच्छा
1: वो मेरी बहन करती थी, तो
0: अच्छा
1: मेरे माइंड में आ गया कि वो डांस कर रही हैं तो मैं गाने में ठीक हूँ,
0: अच्छा
1: लेकिन वो कहीं ना कहीं अटक गया मेरी बॉडी में या कुछ, तो वो कत्थक करती थी बहुत ज़बरदस्त, बिरजू महाराज जी की बहुत फेवरेट ये थी डिसाइपल।

0: और बिजली की तरह नाचती थी वो, तो कहीं
1: अच्छा
0: ना कहीं कथक मेरे अंदर कुछ ना कुछ भाव उसके रह गए। अब अफसोस की बात यह कि उनको अर्थराइटिस हो गया, तो फिर एक डांसर के लिए अर्थराइटिस हो जाना
1: बहुत
0: तो
1: दुखद घटना है जी।
0: मतलब टीचर्स भी बोलती थी तुम तो स्कूल में गाना गाती थी, और हम लोग का एनुअल फंक्शन में हमेशा मना कर देती थी कि मैं डांस नहीं करूँगी, लेकिन वो था तो है अंदर।
1: नहीं, आप बहुत अच्छा नृत्यकी हैं उस जोगीरा
0: जोगीरा
1: में, और हमने देखा बड़ा
0: में
1: अच्छा
0: मार
1: है।
0: खा के की हूँ।
1: अच्छा, वो किस्सा भी जरा बता
0: नहीं,
1: दें
0: वो ये था, बद्री जी थे
1: जी।
0: हमारे डांस डायरेक्टर,
1: जी
0: तो गाना तो बड़े मज़ेदार था। हाँ,
1: हाँ,
0: और शीला जो है वो पूरी ट्रेन डांसर थी,
1: अच्छा
0: तो मैं तो
1: हाँ।
0: नहीं थी। तो उसमें एक स्टेप है ना, थोड़ा मुश्किल स्टेप है, ऐसे करके ताली एकदम,
1: जी
0: और घूम के आना था,
1: जी
0: मुझसे हो नहीं रहा था कि माइंड अटक गया था। मैंने कहा मैं नहीं करूँगी ये। तो बद्री जी से मैं कहती थी कुछ चेंज नहीं कर सकते इसमें, कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो बोलते हैं 3-4 दिन उन्होंने देखा ये ऐसे बदतमीजी करती जा रही है, तो एक बार आएगा, आज तुमको डांस आएगा देखना। लेकिन डंडा मारा पैर में।
1: अच्छा,
0: एकदम ठीक कर दिया मैंने
1: एक
0: आपको।
1: डंडे में डांस हो गया।
0: तो कई लोग ऐसे भी होते ना कि लातों के भूत, क्या कहते हैं,
1: लाठी के भूत।
0: लाठी के भूत, मारा पैर में बड़ी जोरों से लगी। मैंने कहा मैं कर लूंगी इसे।
1: बद्री जी को धन्यवाद कि उन्होंने इतना खूबसूरत स्टेप हम तक
0: और
1: पहुंचाया।
0: क्योंकि शीला बहुत अच्छा कर रही थी,
1: हाँ
0: तो मैं देखती रहती थी, बड़ा मटक कटक के डांस किया उसने। फिर मैंने कोशिश की तो हो गया।
1: बहुत खूब किरदार को निभाया और बहुत खूब नृत्य किया आपने। हमें नहीं पता था कि आपको उसमें डंडा पड़ा है, पर मैं उस डंडे को भी प्रणाम करती हूँ जिस डंडे ने इतना खूबसूरत नृत्य करवाया। अभी नदिया के पार फिल्म में आप आई, और बहुत सारी जगह बहुत सारे अलग अलग भाव आपने दिखाए हैं। कहीं आप उसके प्रेम में भी हैं, और अगले ही पल आप चंदन को परेशान भी कर रही हैं। तो ये जो भाव बदलने की जो क्रिया थी, आपने अभिनय सीखा नहीं, आप किसी रंगमंच की अभिनेत्री नहीं है, वो सब कैसे, इतना छोटा छोटा अंतर, हम जब नदिया के पार देखते हैं तो मैं वो अंतर दिखाई देता है कि पल में शोला पल में माशा वाला, कि आप 1 सेकंड पहले उसी चंदन को देख के आपके अंदर से प्रेम के भाव आ रहे हैं और अगले ही क्षण वो प्रेम के भाव बदल गए। वो
0: हाँ,
1: किरदार किया कैसे आपने?
0: वो इसीलिए हो पाया कि मैंने कोई मेथड एक्टिंग नहीं सीखी थी। अगर वो सीखी होती तो मैं बंध जाती किसी भी चीज़ में।
1: अच्छा
0: वो बह गया, बह रहा था जैसे, तो मुझे कुछ ऐसा खास ऐसा बोलना नहीं था, बहुत बड़ी स्पीच नहीं देनी थी। छोटे छोटे मोमेंट्स अगर आप देखो तो जैसे मैं बोलती थी वैसे ही बोलती हूँ, तो कुछ चेंज नहीं करना पड़ा। मुझे लगता है उसने मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प किया, कि दादा बोलते थे जो मर्जी आए करो।
1: अच्छा
0: हाँ, ये है, ये फ्रेम है। ये सचिन ने भी हेल्प की समझने के लिए कि हिलना नहीं पड़ता, पता चला तुमको बोलते हैं राइट तो चली जाती हो एकदम बाहर। कैमरे की तो यही सच। और दूसरा वो उसके जो डीओपी,
1: डीओपी दादा।
0: हाँ, उनको बड़ी खुन्नस थी मेरे से, तो वो बोलते सीधे नहीं, इतना सा बोलो तो 10 गुना आगे चली जाती है, इसको सिखाओ।
1: अच्छा
0: तो 2-3 चीज़ें ये सीखी कि लाइटिंग लेना है, अच्छा थोड़ा अगर इधर बोला इतना ही जाना है,
1: हाँ।
0: ऐसे चल फ्रेम की बारी चली जाती थी।
1: जी
0: तो वो नेचुरली था अंदर, तो आ गया। मैंने कुछ उसमें पुट ऑन करने की मतलब कोशिश ही नहीं की।
1: अभी बहुत सारे बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे हैं, आपको तो खैर अभी बहुत बरस हो गए इस अभिनय के क्षेत्र में, अभिनय की दुनिया में। आप उन नए बच्चों को क्या कहना चाहती हैं इस विषय में?
0: मुझे लगता है कि पहली बात, एक्टिंग ऐसी चीज़ है जो सिखाई नहीं जा सकती, कि आप
1: अच्छा
0: पैसे लेके आ रहे हैं अपने घर से बॉम्बे में सीखेंगे एक्टिंग, वो नहीं, जर्म्स अंदर होने चाहिए, तो वो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे ज़्यादा हो गया, कम हो गया, पर जो चीज़ है ही नहीं आपके अंदर, और सिर्फ शक्ल के उससे कि नहीं मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ या सुंदर लग रहा हूँ, चले आते हैं एकदम, मतलब पोटली उठा के माँ बाप का पैसा लेके, तो मुझे नहीं लगता कि वो पहले खुद को जज करें, समझें अपने आप को। हो सकता है बहुत अच्छे एक्टर हो जाएं, लेकिन ये सोच के आना कि नहीं मैं अब जा रहा हूँ हीरो बनने या हीरोइन बनने, वो गलत, बहुत गलत है। और माँ बाप साथ में नहीं होते हैं, फिर आप गलत राहों पे चलने लगते हैं।
1: जी, तो थोड़ा सा खुद को परख के आए, ऐसा आपका कहना है।
0: हाँ
1: और सुंदरता बस जरूरी नहीं है।

0: अभिनय के क्षेत्र में अभिनय
1: बिल्कुल
0: भी जरूरी है। ये तो बहुत अच्छी बात हमें आपसे पता पड़ी। इसके साथ ही एक और बड़ी खूबसूरत सी अदायगी मुझे ये लगी कि आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं फिल्मों में काम कर रही हूँ, मैं टीवी सीरियल्स में काम कर रही हूँ, तो
1: हाँ
0: मैं फिल्मों में कर रही हूँ तो मैं टीवी में क्यों करूँ।
1: हाँ ऐसा
0: एक
1: तो
0: ये
1: कुछ नहीं
0: ईगो
1: है।
0: भी सामान्यतः लोगों में
1: हाँ
0: होता है
1: होता
0: कि हमने
1: है।
0: किया है,
1: हाँ
0: तो इसके लिए आपने अपने मन को तैयार किया या
1: नहीं कुछ तैयार नहीं
0: नेचुरली?
1: किया, मुझे पता था मीडिया है ना,
0: हाँ
1: वो भी एक्टिंग ही चाहता
0: जी
1: है ना। हमको वहाँ भी लाइनें याद करनी होंगी,
0: जी
1: लेकिन वो पीयर प्रेशर एक होता है, वो कौन ले पाता है कौन नहीं ले पाता। नहीं तो एक्टिंग तो कहीं हम अगर सड़क पे खड़े होके प्ले करते हैं तो थोड़ा लाउड करते हैं, क्योंकि हमको पता है वो अपनी समझ
0: जी
1: है ना, कि यहाँ पे बहुत सेंसिटिव कुछ आवाज़ नहीं आ रही, मैं चिल्ला चिल्ला के बोलने लगूँ।
0: जी
1: तो अल्टीमेटली मैंने पाया कि एक्टिंग नहीं करना ही एक्टिंग है,
0: अच्छा, एक्टिंग नहीं
1: नहीं
0: करना ही
1: करना है।
0: एक्टिंग है।
1: हाँ तो मैं तो इतनी बड़ी अपने आप को समझती नहीं हूँ कि मैं किसी को बोल पाऊँ। ये आपने पूछा तो मैं बता रही हूँ
0: हाँ
1: कि
0: जी, हमारे समक्ष बैठी हैं साधना सिंह जी, और अभी हम इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं। तो साधना जी, हम तो रेडियो वाले हैं, हम गाना सुनाते हैं, तो
1: हाँ
0: मौका है, दस्तूर भी है कि आपकी
1: सुनाइए।
0: पसंद सुन ली जाए
1: अच्छा ऐसा।
0: जी। तो कोई गीत बता दीजिए जो।
1: मोस्टली मुझे रोमांटिक और ब्रीजी सॉन्ग या स्लो सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं,
0: जी
1: तो कुछ दिल ने कहा और ऐसी भी बातें होती हैं,
0: वो उसका संगीत कितना खूबसूरत
1: खूबसूरत
0: है।
1: और
0: जी जी
1: बहुत
0: जी
1: मीठा संगीत है।
0: तो हमारे श्रोताओं को सुनाते हैं ये खूबसूरत सा नगमा।
2: कुछ दिल

0: और गीत के पार वापस हम सब प्रसाद कर रहे हैं एक बेहतरीन प्यारी सी अभिनेत्री के साथ में, वो अभिनेत्री जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए हैं और जो भी जीवन में आया है उसे मुस्कुराते हुए सब करती गई हैं, मस्ती के साथ सब करती गई हैं, और उसी उसी में आगे बढ़ते बढ़ते इनके पास में कई और सारी फिल्में आई हैं जिनमें एक आज के यूथ की पसंदीदा फिल्मों में से एक बड़ी प्यारी सी फिल्म है सुपर 30, ये आपने की और इसमें भी आपका किरदार रहा, तो हम चाहते हैं कि अगर इसके बारे में आप कुछ किरदार के बारे में बताएं तो।
1: ये समय ना बहुत टफ था मेरे लिए,
0: अच्छा।
1: क्योंकि कमिटमेंट हो चुकी थी और उसी वक्त मेरे भाई की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो हॉस्पिटलाइज थे। तो मैं जब भी आती थी बॉम्बे
0: हाँ
1: तो सीधा हॉस्पिटल जाती थी,
0: जी।
1: तो वो बड़ा गंदा सा पैच था।
0: अच्छा।
1: उस बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी, लेकिन ये है कि आप जब कैरेक्टर आर्टिस्ट बन जाते हो तो आपके कई सीन्स जब कटने होते हैं ना, तो साइड जो एक्टर है उनके ही कटते हैं, हीरो हीरोइन के नहीं कटेंगे। तो बहरहाल जैसा भी था तो आई वॉज सेटिस्फाइड जो थी। और अब चीज़ें चेंज हो चुकी हैं तो
0: हाँ
1: ह्यूमन टच नहीं रह गया है,
0: जी जी जी
1: तो वो मैंने मिस किया उस फिल्म में। और बाकी तो छोटा सा अच्छा सा रोल था, और मैं की एडिटिंग होती है
0: जी
1: और एडिटिंग से ही फिल्म बनती है,
0: जी
1: तो इसलिए मैंने कभी उन पे नहीं किया क्यों काटा, वो सीन क्यों काटा।
0: जी
1: लेकिन हाँ अच्छा लगा, प्रोडक्शन के जो लोग हैं, अभी लड़कियां आ गई हैं बहुत
0: नाइस
1: प्रोडक्शन
0: नाइस
1: में,
0: जी जी
1: तो उनके बीच में घिर के मस्ती करते हुए ठीक है,
0: हाँ
1: बट बाकी जो स्टार हैं वो तो अपने अपने वैंस में चले जाते हैं आजकल। हमारे टाइम पे हम लोग को बिठाया जाता था कि दूसरा क्या कर रहा है उसको भी देखो।
0: तो उस समय आप लोग दोनों उसमें बैठे रहते थे, यानी अपना करने के बाद फिर आप वहीं होते थे, सेट पे ही रहते थे।
1: सेट पे ही रहती थी, मतलब पहले ऐसे ही होता था,
0: अच्छा
1: बैठ के साथ में खा रहे हैं, साथ में गप भी कर रहे हैं, कुछ सीन की बात भी कर रहे हैं,
0: जी।
1: या अभी कुछ सीन हो रहा है तो इसके बाद मेरा है तो मुझे क्या सुर पकड़ना है क्या नहीं, बहुत सी चीजें। लेकिन आजकल शॉट देते ही लोग वैनिटी, मेरी
0: चलिए
1: वैनिटी तो खाली रहती थी क्योंकि सेट पे ही आदत है
0: आदतन
1: बैठने
0: अनुसार आप लड़कियों से
1: हाँ
0: घिरी रहती
1: तो
0: थी
1: टाइम निकल जाता है, बट रोल अच्छा था, फिल्म अच्छी थी।
0: जी।
1: तो एक लाइन बोलती हूँ ना, हमें नहीं चाहिए शॉल, हम बहुत हॉट है, तो वो एक छोटा सा था जो कि लोगों को बहुत पसंद आया वहां पे।
0: नहीं,
1: हाँ
0: वैसे आप बहुत हॉट हैं, शॉल की जरूरत
1: हाँ
0: आपको नहीं है। तो अभी उसके बाद आपने एक चंदा किरदार को भी निभाया ससुराल फिल्म में, उसके बाद बहुत सारे किरदार किए आपने नदिया के पार के
1: हाँ
0: बाजी
1: नदिया के बाद बहुत ज्यादा काम नहीं किया मैंने,
0: जी।
1: काफी कुछ घर की भी प्रॉब्लम्स हो गई थी और यहाँ मैं सिस्टर के पास रह रही थी, बहुत सारी चीजें हुई हैं उस दौरान। लेकिन ये है कि एक शंकरावर्णम फिल्म आई थी,
0: जी
1: विश्वनाथ जी साउथ के थे, उन्होंने ये फिल्म बनाई थी, उसका नाम था शंकरावर्णम। तो
0: ओके
1: जब मैं थिएटर में काम कर रही थी तो इप्टा में,
0: जी
1: तो वहाँ के जो सबसे बड़े जो कर्ता धर्ता थे, आबिद रिजवी, मुझे
0: जी
1: बिल्कुल बेटी की
0: आबिद
1: तरह,
0: रिजवी जी
1: हाँ,
0: जी
1: तो उन्होंने क्या किया कि मुझे बोले चलो तुमको एक तमिल फिल्म दिखाते हैं। मैंने कहा मैं क्यों जाऊँ, तमिल मुझे समझ नहीं, वो वही पढ़ती रह जाऊंगी मैं सब टाइटल।
0: नीचे का जी
1: लेकिन वो ले गए
0: जी
1: और वो फर्स्ट फ्रेम शुरू हुआ फिल्म का और मैं ऐसे देखती रह गई, मतलब जब फिल्म खत्म हुई तो मैं इतनी भरी हुई थी, ओवरवेल्म्ड एकदम। मैं कहा ऐसी भी फिल्में होती हैं क्या, काश इस तरह की कोई फिल्म मैं कर पाती। तो विद इन 2 मंथ्स मुझे फोन आता है कि ऐसा ऐसा हम लोग हिंदी वर्जन बनाना चाह रहे हैं, तो
0: वही सेम
1: उसमें
0: फिल्म।
1: हाँ सेम फिल्म
0: ओह
1: लेकिन आपको जो गुरु हैं उनकी बेटी का रोल। मैंने कहा कोई भी रोल है मैं करूंगी जुड़ना ऐसी फिल्म
0: जी
1: से।
0: जी
1: तो विश्वनाथ जी तो बहुत उनको पूजा जाता है वहाँ पे
0: जी बिल्कुल।
1: साउथ में, सरगम ये सब उन्होंने बनाई, तो उनके साथ काम करके मैंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने बोला तुम्हारी आंखें अच्छी हैं बहुत, लेकिन
0: बोलती आंखें
1: हाँ
0: जी
1: तो इनको ऑन इन्हेंस कैसे कर सकते हो एक्टिंग के लिए,
0: जी
1: कि एक बार पलक झपकाओ तो उसका क्या मीनिंग होता है, 2 बार झपकाओ तो मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो वो सारी चीजें वो बताते थे ना, तो ही जस्ट अभी पास्ड अवे, उनका मंदिर वगैरह बनाया, तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। नदिया के पार के बाद ससुराल थी ना
0: जी
1: शायद,
0: जी
1: हाँ
0: जी उसके बाद ही थी
1: हाँ तो मस्ती में की बस, और वहीं पे मेरे हस्बैंड मिल गए मुझे, हस्बैंड जो आज हैं
0: जी,
1: उनकी फिल्म थी जो मैं नहीं करना चाह रही थी।
0: अच्छा।
1: लेकिन मेरे डायरेक्टर हैं, मुझे लगा उनको काम मिलना चाहिए, तो उस वजह से मैंने कहा कि अगर दादा कर रहे हैं तो मैं कर रही हूँ, तो वो फिल्म की। उसके बाद ना इतना सिनेरियो इतना गंदा हो गया था और कोई अच्छी फिल्में नहीं बन रही थी, तो सिर्फ बुआ बन के, दादी बन के, चाची बन के खड़े रहना, मैंने कहा मैं नहीं करूँगी।
0: हाँ।
1: तो वो टाइम मैंने अपनी शादी, फिर बच्चों को देखना, ये सब
0: जी जी।
1: और फिर उसके बाद मुझे जब मैं फिल्म में आई तो ये पिछले 5 सालों की जुगनी,
0: जी जुगनी,
1: जुगनी बहुत अच्छी फिल्म
0: बहुत
1: देखे
0: अच्छी
1: हैं।
0: फिल्म जी।
1: तो ये नए नए लोगों के साथ मैंने काम करना शुरू किया जब, तो बहुत एनर्जी और बहुत प्यार और बहुत रिस्पेक्ट है, तो मैंने कहा नहीं ये तो सिनेरियो ठीक है अभी। तो उसमें अच्छा रोल दिया उसने मुझे, लड़की ने, और उसका नाम है शेफाली भूषण
0: जी।
1: अभी भी उनकी मराठी एक फिल्म बहुत हिट हुई है, स्थल।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो उनके साथ काम करके ना मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चों के साथ काम करके। दे वेरी ड्रिवन, सब लोग शीशा दिखा रहे हैं, आपको मेकअप मैन की जरूरत नहीं है, है ना, सब मिलके काम कर रहे हैं,
0: मिलके काम कर रहे हैं, पारिवारिक तरीके से काम कर रहे हैं।
1: फिर मैंने अनुराग कश्यप, वो मुझे ढूंढ रहा था कब से, तो उसको लगा कि शायद मैं अमेरिका चली गई हूँ शादी आदि करके, तो कुछ देख रहा था, उसने कहा रुको रुको, ये साधना जी कहाँ है आजकल, तो उन्होंने बताया यही है, तो उन्होंने मुझे बुलाया, आपको काम करना पड़ेगा मेरे साथ। तो वो फिल्म की फिर उसमें मजा आया मुझे बहुत।
0: अनुराग कश्यप जी के साथ में आपको एज ए डायरेक्टर, वो जब साथ में है, तो आपको क्या अलग लगा पहले का?
1: मुझे ये लगा कि वो कंफर्ट मैंने फील किया जो नदिया के पार में था।
0: अच्छा।
1: हाँ, क्योंकि ये भी बोलते, हाँ ऐसा जैसा आपको ठीक लगे, ये बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ये नहीं जकड़े हुए नहीं थे कि ऐसा ही करना है। और कई कई जगह तो आए, पैर वैर छुए, बोले हम नहीं सोचते थे कि आप इस तरह की लैंग्वेज बोलेंगी
0: जी। हम लड़कियों को बचपन से कहा जाता है कि एक राजकुमार आएगा सफेद घोड़े पे आपको लेके जाएगा।
1: पति का नाम राजकुमार
0: ही नहीं, राजकुमार आ गए। वो सफेद घोड़े पे आए थे या एम्बेसडर में आए थे?
1: अरे वो उन्होंने बदला लिया मुझसे शादी करके।
0: अच्छा, मैं हम जानना चाहते हैं वो किस्सा।
1: वो किस्सा मैंने बताया, मैं किस्सा यही था कि मुझे अंदर से ये नहीं था कि मुझे फिल्म करनी है, तो मैंने कहा अब नहीं करूंगी। तो ये बिहार बिहार छोड़ के आए थे कि फादर ने बोला इस लड़की को लेके ही फिल्म बनानी है, तो फादर ने बोला, तो आए उन्होंने सब जमाया सब काम। हाँ। और मिलने आए तो उनको लगा मैं बहुत अकड़ू टाइप की हूँ और मुझे मालूम नहीं क्या ऐसा किया होगा मैंने
0: जी।
1: तो एक बार मिले, उसके बाद दूसरी बार मिले मैं पहचानने से इनकार कर दिया मैंने, इनकार मतलब जानबूझ के नहीं, मेरी दाढ़ी रखी होगी शायद उस लिए। फिर तीसरी बार मिले जब साइन करा चुके थे, चौथी बार मिले अरुण गोयल के दोस्त थे, तो अरुण ने कहा ये राजू वो देखे जा रहे हैं मेरी तरफ, तो मैंने कहा कि अच्छा, तो बोले अरे साइनिंग अमाउंट लेके भी नहीं पहचान रही हो। मैंने कहा ओ गॉड, क्योंकि आप कभी चश्मा पहन के आ जाते हैं, कभी दाढ़ी रख के आ जाते, इनको इतना गुस्सा है, बोले शादी करके बताता हूँ इसको, कैसे नाम नहीं याद रहेगा।
0: नाम याद कराने के लिए शादी कर ली।
1: शादी कर ली, बताइए अब। हालांकि बहुत दंगे फसाद हुए, 5 साल तक हम लोग की चल रहा था अफेयर।
0: हाँ।
1: और मेरे फादर इन लॉ बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे।
0: अच्छा।
1: फिर मेरी
0: वही लड़की हीरोइन चाहिए। हाँ। थी, लेकिन उसके साथ शादी नहीं करानी थी।
1: होता है ना दिमाग में, शादी फिल्म लाइन की लड़की है, ऊपर से तुम उसको घर ले आओगे तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। लेकिन 5 साल के बाद जब वो माने तो बहुत अच्छे से माने। फिर
0: मैं जानना चाहती हूँ एक कोई गीत जो आप अपने सफेद घोड़े पे आए हुए चश्मे वाले दाढ़ी वाले हैंडसम से राजकुमार के लिए दें।
1: ये रात भीगी भीगी,

0: अब हम लोग उत्तर प्रदेश की फिल्म में जो आपने किए हैं यूपी की भोजपुरी फिल्म है उनके बारे में चर्चा करेंगे।
1: भोजपुरी फिल्म तो एक ही शायद मैंने की
0: वो
1: है,
0: वाली की है ना, गंगा मैया तो है
1: ये तो मेरे फादर इन लॉ की फिल्म थी, पायनियर थे वो,
0: जी
1: और ये फिल्म उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी के कहने पे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर
0: जी
1: थे,
0: जी जी
1: सब इनकी एक दोस्ती थी, बोला भोजपुरी बड़ी खूबसूरत लगती है सुनने में, क्यों ना इस एक फिल्म बनाई जाए।
0: हाँ
1: तो ये चले आए मेरे फादर इन लॉ बक्सा उठा के, और वहीं जहाँ दादर उतरे सामने ही वहाँ पे एक होटल है जहाँ पे सब स्टार वगैरह आते थे, वहाँ वो मिले नासिर साहब से, नासिर हुसैन जो
0: जी
1: जिन्होंने फिल्म, और उन्होंने स्टोरी सुनाई और उनको साइन भी कर लिया। कुमकुम जी मदर इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट में फंसी हुई थी, उनको संभाल के निकाला और फिल्म बनाई गंगा मैया तो ये पियरी चढ़ाई वो,
0: जी
1: जो कि ब्लॉकबस्टर,
0: जी
1: आज
0: सर
1: भी
0: जी
1: ब्लॉकबस्टर
0: जी
1: है।
0: जी
1: तो उसको मेरे फादर इन लॉ को ट्रिब्यूट देने के लिए एक और फिल्म बनाई मेरे हस्बैंड ने, जबकि वो चले गए इस दुनिया से,
0: जी
1: गंगा जैसन पावन पिरितिया हमार। तो
0: अच्छा
1: उसमें मैंने काम किया
0: जी
1: क्योंकि उस वक्त शायद कोई और रेडी नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कहा घर में बैठी है चलो इसको,
0: इतना लाइटली
1: बहुत
0: तो नहीं लिया
1: बहुत
0: होगा।
1: बहुत अच्छी फिल्म बनी
0: जी जी
1: लेकिन
0: बहुत प्यारी है,
1: हाँ
0: बहुत
1: वो
0: अच्छी फिल्म।
1: हाँ
0: जी एक प्रश्न और मन में आ रहा है, पंजाबी सिकड़ी लड़की सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की भाषा बोलने लगती है, मतलब सीधे ओ चंदन लाइक जो वहाँ की भाषा है उस भाषा में आ जाती, ये जो भाषा का बदलाव है इसको करने में तो तकलीफ हुई होगी
1: बिल्कुल भी
0: असीधे
1: नहीं, मैं बनारस में की पैदाइश हूँ। हमें अपनी जो बाइयाँ आती थी उन सबसे तो
0: मतलब आप वो चाट और लस्सी
1: वो
0: खाते पीते
1: खाते पीते हाँ,
0: बड़ी जी
1: क्योंकि आज तक हम लोग बहन भाई हिंदी में बात करते हैं, सिर्फ
0: अच्छा
1: मम्मी डैडी से पंजाबी सीखी मैंने
0: अच्छा
1: कि मुझे आनी चाहिए, क्योंकि बनारस में ये मतलब आपस में मेरे भाई लोग दोनों पगड़ी बांध के और भोजपुरी में बात करते थे, तो वो विजुअली बड़ा अजीब सा लगता था कि अरे ये
0: सरदार
1: हाँ,
0: खड़े हैं और
1: तो हमारा
0: भोजपुरी बोल रहे
1: पंजाबी
0: हैं।
1: एक्सेंट है ही नहीं।
0: अच्छा
1: हाँ हम लोग जो बनारसी भाषा है और इलाहाबादी,
0: जी
1: हाँ ये काफ़ी फर्क है।
0: जी
1: तो हमने सिर्फ जैसे उनको बोलिए अगर राजबाबू तो बहुत गुस्सा हो जाते थे कि ये भोजपुरी फिल्म नहीं है, अगर लगान दिखा रहे हो आप, बैकड्रॉप है आपका गांव वाला, मतलब कि भोजपुरी फिल्म हो गई क्या,
0: अच्छा
1: ऐसा था।
0: आपने जैसे बहुत सारी फिल्मों में काम किया और अभी हमें टीवी सीरियल्स के बारे में ही बात करनी है, तो उसके पहले मैं चाहती हूँ जो फिल्मों की हम बात कर रहे थे उसमें नदिया के पार बड़ी खूबसूरत सी फिल्म है, और उसका जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा गीत साधना जी को गुंजा को कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद है वो गीत हम सुनाना चाहेंगे।
1: देखिए कौन दिशा में तो सब गाते ही हैं,
0: जी
1: बट मेरे सामने पहली रिकॉर्डिंग हुई थी गुंजारे, चंदन चंदन, तो एक
0: हाँ
1: वो इतनी रोमांटिक थी ना धुन उसकी,
0: जी
1: और दोनों का जो एक प्यार था उस फिल्म में कैसे दिखाया गया था, और थोड़ा अलग था।
0: जी

0: ऐसा
1: बहुत अच्छा।
0: तो मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद है गाना।
1: रिकॉर्डिंग के समय आप थे क्या इस गीत के?
0: हाँ इसकी रिकॉर्डिंग में थे मैं।
1: रविंद्र जैन वहां पे
0: हाँ
1: उसका डायरेक्शन कर रहे होंगे,
0: हाँ
1: गाया जा
0: रवि
1: रहा
0: जी।
1: होगा।
0: हाँ
1: कैसा कैसा एम्बियंस था, कैसा लग रहा था सुनते
0: बहुत
1: समय?
0: अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि वो गाना है ही अच्छा। अगर आप
1: जी बहुत
0: ये
1: खूबसूरत गीत
0: हाँ
1: है।
0: और मैं करने वाली हूँ तो वो भी एक्साइटमेंट था। और हर रिकॉर्डिंग में थी मैं, लेकिन ये कुछ अलग इसने असर किया मुझे,
1: जी
0: और आज तक मैं बहुत बहुत ज़्यादा इसको पसंद करती हूँ।
1: तो जब आप इसे पसंद करती हैं तो ये गीत आपके लिए हम सब की तरफ से बहुत प्यार से।

0: आपकी पसंद का गीत तो हमने सुना दिया, लेकिन जब सुनाया है तो हमारे यहाँ कहते हैं ना रिटर्न गिफ्ट मिलती है,
1: हाँ
0: तो एक रिटर्न गिफ्ट लेना चाहेंगे कि ये गीत जब रिकॉर्ड हो रहा था तो उस समय आपको कैसा लग रहा था, यानी क्या देखा आपने उस समय जब आप पहली बार स्टूडियो गई
1: हाँ
0: होंगी शायद?
1: हाँ बस माहौल देखा, माहौल कमाल का होता है क्योंकि, और लगता है सुनते ही रहो आप, चलते रहे ये म्यूजिक, क्योंकि कैसे बैठ के डिस्कस करना, और हेमलता जी थी,
0: जी
1: और कैसे वो लाइव गाना देखना, और सारे इंस्ट्रूमेंट होते थे साथ में,
0: एक साथ
1: एक साथ
0: बहुत बड़े कमरे में,
1: बहुत बड़ा कमरा तो नहीं था, फेमस में हुआ था,
0: अच्छा फेमस स्टूडियो
1: बट
0: में।
1: जितना था सब भरा हुआ था, और उसकी जो ऊर्जा होती है ना वो आपको अलग महसूस कराती है, एकदम लग रहा था मैं हवा में उड़ रही हूँ, अब ये गाना मेरे ऊपर पिक्चराइज होगा, तो ये बड़ी कमाल की चीज़ है।
0: वहाँ पे रविंद्र जैन जी भी संगीतकार की तरह
1: ओहो
0: विराजमान होंगे।
1: भैया, मैं तो प्रणाम करती हूँ, ऐसा आदमी मैं सच्ची में सोच नहीं सकती हूँ कि दादा को एक गाना नहीं पसंद आ रहा था,
0: हाँ,
1: उन्होंने ऑन द स्पॉट 30 गाने सुना है,
0: 30 गाने, 30 धुनें,
1: 30 गाने में, और सुना रहती ये पसंद है नहीं है अच्छा, और ये, और वर्ड्स उसी टाइम लगा रहे थे, ये नहीं कि लिखे हुए गाने पढ़
0: जी
1: रहे थे, वो बनाते थे उसी टाइम स्पॉट पे, अच्छा ये वाला ठीक लग रहा है, अच्छा छोड़ी छोड़ी नहीं लग रहा ना, ये अच्छा लग रहा है, साधना तुमको भी, मुझे भी उतनी इम्पोर्टेंस दी जाती थी यू नो,
0: जी
1: तो मुझे तो लगता था ये आदमी इतना गुणी माई गॉड, उसका म्यूजिक भी बना लेते थे
0: शब्द भी
1: और
0: लिख
1: शब्द भी लिख देते थे
0: लेते
1: 1 सेकंड में,
0: 30 गाने एक समय पे बना
1: बत्तीस
0: के
1: होंगे
0: सुनाना,
1: 30 होंगे मुझे इतना याद नहीं, लेकिन चलते जा रहा था इन लोग का, दादा कह
0: लगातार
1: रहे हैं नहीं अब एक और सुना दीजिए, तो अच्छा, ये वर्ड्स इधर डाल शुरू कर दिया, तो
0: और
1: उनसे
0: कहीं लिखा नहीं जा रहा क्योंकि देख नहीं सकते तो लिखते नहीं है,
1: हाँ, उसके
0: अद्भुत।
1: बाद फिर हम लोग के बहुत सारे टूर हुए
0: हाँ
1: जिसमें राज बाबू, राजकुमार बड़जात्या जी, उनकी वाइफ सुधा भाभी, और रविंद्र जैन जी और उनकी वाइफ, और मैं और सचिन, हम लोगों ने बहुत शोज किए, तब उन्होंने बोला कि तुम बिल्कुल गायब हो यहाँ से, तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम गाना गाती हो, मैं तुमसे गवाता,
0: ये रविंद्र जी ने कहा
1: हाँ
0: आपसे? जी
1: क्योंकि उनके साथ जितने टूर होते थे सबको लगता था मैंने ही गाया फिल्म में, तो बहुत प्यार देते थे और बहुत बहुत,
0: स्टेज पे जो उनके लाइव शोज होते होंगे वो
1: हाँ
0: आनंद ही अलग आता
1: हाँ
0: होगा
1: वो
0: देख
1: तो शेरनी थी मैं तब बस चलो कहाँ चलना है, बोलना है क्या बोलना है,
0: अच्छा
1: तो आई थिंक वो अक्खड़पन में सब कुछ सीख गई,
0: हाँ,
1: अल्लड़पन कहते ना कि
0: ये कह सकते हैं आपके माता पिता की परवरिश का असर था कि आपको उतनी स्वतंत्रता दी गई, मानसिक स्वतंत्रता दी गई
1: हाँ ये
0: बचपन से।
1: बात है, मेरे दोनों मेरे पेरेंट्स बहुत ही प्रोग्रेसिव, बहुत उनको ये था कि जो भी करना है करो, बस उसके बाद का जो जो भी रिजल्ट है वो भी तैयार रहो, उसके लिए भी तैयार रहो,
0: अच्छा, खेलो कूदो, चोट लगे तो तैयार रहना,
1: हाँ
0: लगेगी तो
1: लगे,
0: संभाल लेना।
1: हाँ
0: बहुत बढ़िया बात है, इतना आनंद आ रहा है आपसे बात करते हुए, इतना इतनी रोचक जानकारियाँ मिल रही हैं। और उसके साथ में एक बात और, जो आपने सीरियल्स में काम किया है, जो टीवी के पर्दे पर काम किया है, उस तक पहुँचने का कुछ ऐसा जरिया था या आप चले गए ऐसे ही घूमते
1: नहीं
0: फिरते?
1: नहीं बस एक दिन फोन आ गया मुझे, तो मैंने अपने ससुर को बोला, क्योंकि ऐसा सुनने में आया था कि शायद वो परमिशन नहीं देंगे अब, कि इतने बड़े खानदान में लड़की आ गई, अभी शूटिंग भी करेगी, तो ये
0: हाँ
1: चारों तरफ से ना मुझे बता दिया गया था,
0: अच्छा
1: नॉट फ्रॉम माई हस्बैंड, वो इंडल्ज ही नहीं किए इसमें, लेकिन जब ऐसा हुआ और मुझे लगा कॉमेडी मिल रहा है मुझे, तो मुझे करना है, तो मैंने फ़ोन कर लिया डायरेक्ट अपने फादर इन लॉ को, और बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो गए थे, तो मैंने कहा कि बाबा ऐसा ऐसा मुझे रोल आ रहा है मैं कर लूँ, तो उन्होंने बोला कि हाँ कर लो अगर अच्छा है तो,
0: अरे वाह,
1: लेकिन अच्छे अच्छे रोल करना जो भी, तो इन
0: हाँ
1: लोग को किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि बाबा ने बोल दिया, बाबा ने
0: एक
1: बोल
0: बार में
1: दिया
0: बोल दिया
1: तो मैंने कहा ऐसे हवा मत बना के रखो,
0: यानी
1: तो
0: आपको
1: हाँ
0: मायका भी सुंदर मिला, ससुराल भी अच्छा
1: हाँ
0: मिला, दोनों
1: वही,
0: जगह
1: सास
0: बढ़िया।
1: ससुर तो बहुत अच्छे थे,
0: जी
1: तो जहाँ भी हैं बस खुश रहें।
0: जी बिल्कुल, साथ में

0: जी, थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रही थी आपके बेटे का, जो आपकी बदमाशियों से परेशान है पर हम उसे कहना चाहेंगे कि भाई परेशान मत हो, यही बदमाशियों ने हमारे हम जाने कितने करोड़ों के चेहरों में कितनी बार मुस्कुराहट लाई है। तो आपके दो बच्चे हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, वो भी अभिनय के जगत में है
1: नहीं
0: या?
1: नहीं मेरे बेटा तो बहुत दूर है,
0: अच्छा
1: उसको फेमस नहीं होना है, उस वो बिल्कुल ही अलग सोचता है।
0: जी
1: और मेरी बेटी ने की है फिल्में, तमिल में की हैं,
0: जी
1: उसको लॉन्च किया था सतीश कौशिक ने,
0: जी
1: अनुपम जी ने,
0: बहुत बढ़िया।
1: लेकिन बस वो तकदीर नहीं थी कि जब रिलीज हुई पिक्चर जिस थिएटर में लगी, स्वाइन फ्लू की वजह से सारे थिएटर बंद हो गए, तो वो पिक्चर भी ऐसे ही ढह गई।
0: हाँ, उस
1: तो
0: समय वो चल नहीं
1: फिर
0: पाई।
1: वो उसको मिला उधर काम, फिर एक टाइम के बाद चीज़ें हो जाती है ना कि उतना अच्छा किरदार नहीं मिल रहा है, आपने हीरोइन किया है तो वो अपनी लाइफ में अपना देख रही है, शोज करती है या टीवी वगैरह जो भी है, ऑडिशन वगैरह वो वैसे ही देती है जैसे और लोग देते हैं।
0: मतलब
1: तो
0: उसमें साधना जी का हस्तक्षेप नहीं होता,
1: नहीं मैं करती भी नहीं, क्योंकि
0: मेहनत
1: जब
0: करो अपनी,
1: हाँ अपनी मेहनत करो।
0: ये बहुत अच्छी बात है। उनको
1: क्योंकि मैंने
0: अपने से
1: अपने लिए
0: नहीं
1: कभी किसी को बोला नहीं, तो बच्चे के लिए क्या बोलूंगी।
0: जी, लेकिन आप जो चुलबुला किरदार है आपका, और जैसी आप हैं, और मैं इतने समय से आपको जान रही हूँ, तो मैं समझ रही हूँ कि आपके साथ बैठ के अगर 2 घंटे बैठ के बातें की जाए तो शायद मेरे ठहाके रुकेंगे नहीं। तो वो जो किरदार है, तो एक बार अगर आपको ऐसा सोचने का मौका मिले कि कुछ ऐसी फिल्म करनी है, तो क्या आप करेंगी?
1: बिल्कुल करूंगी, मुझे कॉमेडी करना है, मेरा वो साइड अब एक्सप्लोर हुआ ही नहीं।
0: अच्छा
1: हाँ तो साजिद के साथ फिल्म की मैंने ना, ये सुपर 30,
0: जी
1: तो उसको मैंने एक मैसेज भेजा है कि मुझे ना रोने धोने वाली माँ के लिए बुलाना नहीं तुम लोग मुझे जब बुलाना कॉमेडी कोई, अच्छा तो बोले 100%।
0: हाँ
1: अब देखते हैं क्या होता
0: जी, बिल्कुल होगा। आपने कह दिया, सोच लिया, और
1: हाँ
0: विविध भारती के परिसर में कई चीजें जो सोच ली जाती हैं वो पूरी हो जाती हैं, ऐसा
1: हाँ ऐसा
0: हम मान के
1: है,
0: चलते हैं।
1: चलिए
0: बिल्कुल, ये
1: ठीक
0: जगह
1: है।
0: बड़ी
1: हाँ
0: बड़े पवित्र लोग यहाँ पर
1: हाँ
0: आए हैं।
1: हाँ
0: आप जानते हैं कि यहाँ पर
1: हाँ
0: अभी आप तस्वीरें देखते हुए
1: हाँ
0: आ रहे थे, तो बड़े बड़े किरदार आए हैं, तो ऊर्जा बड़ी अद्भुत है
1: अच्छी
0: यहाँ
1: आती
0: की।
1: है। हाँ लेकिन एक चीज़ बता रही हूँ मैं
0: जी
1: कि ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ सिर्फ मतलब बेड ऑफ रोजेस बोलते हैं ना, बहुत बहुत तकलीफें आई और बहुत ऊंच नीच भी हुई और ट्रॉमास हुए लाइफ के, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। बस मुझे भगवान ने ऐसा बनाया कि मैं थोड़े टाइम के बाद अपने आप हैप्पीनेस की तरफ चली जाती हूँ।
0: ऊर्जा सकारात्मक
1: हाँ
0: है।
1: वो मैं नहीं रख सकती इतना, क्योंकि मुझे लगता है क्राइम है खुद को दुख देना, दे के रहना या अपने पे तरस खा के रहना, क्योंकि आप सबको सब होता है मुझे और औरतों की तरह, ऐसा नहीं है।
0: हाँ
1: लेकिन मैं सबको बताती भी नहीं हूँ जो उस दौर में हैं, या मुझे फ़ोन करके अपना दुखड़ा नहीं सुनाना है। मुझे लगता है कि एक ऐसा फेज भी आया लाइफ में कि मुझे लगा मैं जीऊँ या मर जाऊँ।
0: अरे,
1: हाँ मतलब इतनी सीवियरिटी वाली चीज़ें हुई कि मुझे
0: समस्या
1: ऐसा
0: इतनी बड़ी
1: लगा
0: आई
1: कि
0: है।
1: मुझे जीना मतलब नहीं है इस टाइम, नेक्स्ट स्टेप ये होगा बेटर कि मेरी सांस ही ना आए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या मुझे लोग ऐसा देखेंगे, क्या मुझे जानते हैं मेरी हंसी के लिए, मेरी खुशी के लिए, तो मैं कुछ तो अच्छा करके जाऊं। और
0: क्या
1: फिर मैं बाउंस बैक मैंने किया था,
0: बात है।
1: और तो फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा ये तरीका अच्छा है कि मैं खुश रहूं, खुश दिखूं, खुश बोलूं, और एटमॉस्फेयर अपने आप ठीक होगा, तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा।
0: बहुत अच्छी बातें हमको सुनने मिल रही हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है साधना जी। और इस
1: थैंक यू।
0: अच्छाई के बीच में, अगर वो शुरुआत वाली अच्छाई आप पूरी कर दें, हमारा एक गाना जो है, तो क्योंकि रविंद्र जैन जी जब कह गए कि तुमसे ही गवा लेते, तो हम भी चाहते हैं विविध भारती में आई हैं तो कुछ गाने हम भी
1: मैं
0: सुन
1: एक
0: लें।
1: कोशिश करती हूँ, चलिए मैं आपको आज ये भी बताती हूँ कि मैं रफ़ी साहब की बहुत बड़ी फैन हूँ। वो मतलब मेरे लिए भगवान भी हैं, सब कुछ है।
0: जी
1: मुझे लगता है मैंने रोमांस, दर्द, दुख जो भी है उनकी आवाज़ से सीखा है।
0: जी
1: उनका एक गाना गा देती हूँ।
0: जी
1: देखो पुकार करता चला हूँ।

गली गली बाहर की बस एक छांव जुल्फ के, बस एक निगाह प्यार के पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की बस एक छांव जुल्फ के बस एक निगाह।

0: और अब इतनी देर से हम बात कर रहे हैं और शायद मुझे लगता है कि अभी अगर 2 घंटे और बात की जाए तो साधना जी की कहानी पूरी नहीं होगी, पर हम चाहते हैं कि आप हमारे श्रोताओं के लिए और हमारे जो नए नए बच्चे अभिनय के क्षेत्र में आ रहे हैं और बाकी हम जो महिलाएं हैं, इन सब के लिए कोई संदेश अगर आप देना चाहें तो।
1: तो बच्चे तो आजकल के बच्चे हैं कि क्या बच्चे, आई डोंट नो क्या उनके लिए कुछ नहीं बोलना चाहूंगी मैं।
0: जी
1: जो बोलना चाह रहे हैं वो रोज आता है कि अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए। और मुझे लगता है कि जिंदगी में जैसे हेल्थ हेल्थ ऐसी चीज है जिसपे औरतों का बहुत कम
0: ध्यान
1: ये
0: होता है।
1: ख्याल होता है, क्योंकि उसको लगता है बेटे को भी बादाम खिला दूं, उसको भी खिला दूं, उसको भी खिला, बचेगा तो देखती हूँ अपने लिए,
0: और बचता कभी
1: बचता
0: नहीं।
1: भी नहीं है और कभी क्रेप भी नहीं करती माएं।
0: जी
1: लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए तो ही आप सबको समेट पाएंगी, ऐसी सिचुएशन को फेस कर पाएंगी जो आती है कभी कभी। कर्मा है ना, वो तो छोड़ेगा नहीं। और अपनी सेहत पे ध्यान दें। 50 में औरतें सोचती हैं हम लोग तो जिंदगी खत्म हो गई,
0: जी
1: तो वो जिंदगी शुरू होती है उस वक्त, क्योंकि
0: हाँ
1: आप सारी जिम्मेदारियों से थोड़ा मुक्त हो जाते हैं। और उस उम्र में औरत सुंदर भी सबसे ज्यादा लगती है, लेकिन
0: हाँ
1: उसको एहसास नहीं है। तो अपने आप को देखें, अच्छी चीजें देखें, पहने। पहनने से मुझे याद आया, मैंने ब्रांड भी शुरू किया है,
0: अच्छा
1: हाँ, एक कच्चे धागे करके, और
0: अच्छा
1: साड़ियाँ वीव्स वगैरह। मैं चाहती हूँ सब खुश अच्छे से सज धज के रहें। औरतों का काम है, ये
0: जी
1: ड्यूटी है उनका, मतलब राइट बनता है कि सिर्फ खाना ही नहीं बनाए, अपने आप को भी बनाए। और अच्छी फिल्में देखें तो हम लोग अच्छी फिल्में करेंगे। मेरी एक फिल्म आ रही है कैसी ये पहेली,
0: जी
1: वो जरूर आप लोग देखिएगा। उसमें माँ बेटे का है स्टोरी, माँ बेटे की। बहुत
0: अच्छा
1: सारे उन फेस्टिवल में जा चुकी है,
0: अरे वाह
1: और न्यूयॉर्क में तो स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। तो
0: क्या बात
1: मैं
0: है।
1: चाहती हूँ कि ये सब देखें,
0: फिल्म है कैसी है पहेली,
1: कैसी है पहेली।
0: ज़रूर से हम
1: हाँ
0: सभी विविध भारती परिवार ज़रूर इस फिल्म को देखेंगे, इतना हमें विश्वास है।
1: हाँ
0: और आगे आपके पास में बहुत सारी फिल्में आएँ, आप वो चुलबुली वाली साधना सिंह हम ज़रूर देखना चाहते हैं, हमारा बड़ा मन है, क्योंकि हम हमारी उस वाली गुंजा को बड़ा मिस कर रहे हैं जो बड़ी बदमाशियाँ करती थी। सो हम वो देखना चाहते हैं उस किरदार में आपको। आप विविध भारती तक आई साधना जी, इतना सारा समय दिया, इतने प्रेम से समय दिया,
1: अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगता है। विविध भारती से कहीं ना कहीं आत्मा जुड़ी हुई है।
0: तो हमारे साथ आप बने रहिए, हमारा साथ देते रहिए, नए नए किस्से जब कभी आए तो हमारे पास तक जरूर आते रहिए साधना जी। अच्छा
1: अच्छा
0: लगता है
1: लगा,
0: विविध भारती में जब आप
1: बिल्कुल,
0: आते हैं, आप लोगों की ऊर्जा आती है, तो आप यहाँ तक आए उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, प्रणाम।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में अभी आपने सुनी अभिनेत्री साधना सिंह से विधि जैन की ये बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: डुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली।
4: श्रोताओ, अभी तक आप हमारे केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजने को हैं। आकाशवाणी दिल्ली से अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंधु 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंधु ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, यह अभियान अब भी जारी है।
1: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज भारत के पांच

0: गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान शुरू हो गया है। महीने भर चलने वाली यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा कि अगर ईरान के साथ समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका की सेना उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्री-ला संवाद में श्री हेग्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमेरिका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद है। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। राष्ट्रीय संचालन समिति एनएससी ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया नामक एक निजी कंपनी द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण निवेश योजना एसआईपीओ को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश इस योजना के तहत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह मंजूरी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित तीसरी एनएससी बैठक के दौरान दी गई। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित लोहम का दौरा किया। लोहम देश के प्रमुख उद्यमों में से एक है जो लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है। इस दौरान श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में आज भारतीय पुरुष डबल्स जोड़ी ने दक्षिण कोरिया के सियो सेंग जाय और किम वॉन हो को 21-19, 21-18 से हराया। वहीं ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की मिक्स डबल्स जोड़ी प्रतियोगिता से बाहर हो गई। सेमीफाइनल में आज भारतीय जोड़ी को जापान की साइका होबारा और युइची सिमोगामी ने हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है आज शाम हमारे केंद्र से प्रसारित व रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

कार्यक्रम रूपरेखा के तुरंत बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम भजन संध्या। शाम 5:30 पर युवा साथियों का कार्यक्रम रहेगा युव मंच। आकाशवाणी शिमला से शाम 6 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम, आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। सफर सुहाने, गाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:05 पर, और शाम 6:30 पर किसान व बागवान भाई बहन सुनेंगे अपना कार्यक्रम किसान वाणी।

आकाशवाणी दिल्ली से शाम 7 बजे सुनिएगा हिंदी समाचार और 7:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत। शाम 7:25 पर समय रहेगा रौनका ग्राइंदियां। आकाशवाणी शिमला से शाम 7:45 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार। आकाशवाणी दिल्ली से रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या, रात्रि 9 बजे न्यूज एट 9 और रात्रि 11 बजे हिंदी समाचार। रात्रि 10 बजे समय रहेगा कार्यक्रम रंगे गजल का और रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे रोमांटिक फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चांदनी रातें। तो श्रोताओं, ये तो थी जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित व रिली किए जाने वाले कार्यक्रमों की।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:07 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भजन संध्या। भजन संध्या कार्यक्रम सुनने वाले सारे श्रोतियां जो नरेश चंदेल दा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जोगिंदर बला कने साथियों के स्वर च इस पहाड़ी भजन से।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी दे हमीरपुर केंद्र ते इस वेले तो ही सुनी कर दे कार्यक्रम भजन संध्या। अगला भजन है करनैल राणा दे स्वरज।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भजन संध्या। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 MHz पर। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युवमंच।

0: युगमंच कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी रेडियो दोस्त निधि पठानिया। जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और देखिए, आज हम आप सभी के लिए जानकारी लेकर आए हैं। आज हम आप सभी को जानकारी देंगे, युवा कैसे साफ सफाई कर सकते हैं और उससे कैसे उसे रोजगार का अवसर बना सकते हैं। साथ ही कार्यक्रम में मनोरंजन भी हम आप सभी का करवाएंगे फिल्मी गीतों के साथ। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, युवा और महिलाएं मिलकर अपने मोहल्ले व नालियों को साफ रखकर बीमारियों को दूर कर सकते हैं। युवा नियमित सफाई अभियान चलाकर और डिजिटल माध्यमों से जागरूकता फैलाकर बदलाव ला सकते हैं, जबकि महिलाएं घरों से निकलने वाले गीले सूखे कचरे का सही प्रबंधन और कचरों को स्वच्छता की आदतें सिखाकर महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। साथ ही देखिए, युवाओं की भूमिका की बात करें तो देखिए दोस्तों, सप्ताह में 1-2 घंटे निकालकर यूथ ग्रुप बनाएं और नालियों के ऊपर जमा प्लास्टिक व मिट्टी को साफ रखा करें। और अक्सर देखिए देखा गया है कि दोस्तों, नालियों में पॉलिथीन और कचरा फंसने से पानी रुक सा जाता है। युवा इसे डंडे या फावड़े की मदद से समय समय पर निकाल सकते हैं। स्थानीय पार्कों या चौराहों पर स्वच्छता के संदेश वाले पोस्टर लगाएं और लोगों को और ज़्यादा अधिक कर सकते हैं। साथ ही बात करें महिलाओं की भूमिका की तो देखिए, घर के गीले कचरे और सूखे कचरे को अलग अलग डस्टबिन में रखें। गीले कचरे से घर पर ही जैविक खाद बनाई जा सकती है। नालियों में कचरा न डालें। महिलाओं को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि चाय की पत्ती, बचा हुआ और खाना और साबुन का गंदा पानी सीधे नाली में ना जाए। सामूहिक चर्चाओं की बात करें दोस्तों, तो महिलाएं पड़ोस की अन्य महिलाओं के साथ छोटी बैठकें करके स्वच्छता के फायदों पर चर्चा कर सकती हैं और उन्हें घर व आसपास साफ सफाई रखने के लिए प्रेरित भी कर सकती हैं। अब इसके साथ बात करते हैं इस फील्ड में युवा कैसे आगे आ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टार्टअप की। युवा स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके अपनी ड्रेन क्लीनिंग या सैनिटेशन सर्विस कंपनी शुरू कर सकते हैं। साथ ही स्थानीय नगर निकायों के साथ अनुबंध प्राप्त करके वे बड़े पैमाने पर सफाई का कार्य भी कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, बात करेंगे मशीनी उपकरणों में निवेश की। तो देखिए, आधुनिक मशीनें जैसे सशक्शन मशीन, रोबोटिक मैनहोल क्लीनर को खरीद कर या किराए पर लेकर वे एक लाभदायक व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं। कुछ योजनाएं भी इसके लिए देखिए चलाई गई हैं। इन योजनाओं के तहत युवाओं को स्वच्छता से जुड़े स्टार्टअप्स के लिए लोन और वित्तीय सहायता भी मिल सकती है। और साथ ही इसी के साथ बात करेंगे जागरूकता अभियान की। तो देखिए दोस्तों, युवा एनजीओ बनाकर भी या सामुदायिक स्तर पर जल निकासी और कचरा प्रबंधन पर कार्य कर सकते हैं और जिससे समाज में उनकी पहचान बनती है और उन्हें बड़े प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों, कार्यक्रम में हम आप सभी के साथ फिर से मिलेंगे, लेकिन अभी वक्त है छोटे से अंतराल का और अंतराल के बाद हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का पहला गीत।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: है द टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवमंच। इसी के चलते अब बात करेंगे DRDO में पेड इंटर्नशिप का सुनहरा मौका। जी बिल्कुल, देखिए, इंजीनियरिंग व विज्ञान के छात्र इस इंटर्नशिप के जरिए रक्षा अनुसंधान तथा तकनीकी क्षेत्र में करियर बना सकते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने वर्ष 2026-27 के लिए पेड इंटर्नशिप योजना की घोषणा की है। यह इंटर्नशिप विशेष रूप से इंजीनियरिंग और विज्ञान के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत छात्रों को रक्षा तकनीक, एयरनॉटिकल सिस्टम और आधुनिक सैन्य अनुसंधान से जुड़ने का अवसर मिलेगा। आपको बता दें इंटर्नशिप के दौरान चयनित उम्मीदवारों को अनुभवी वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में कार्य करने का मौका भी मिलेगा, जिससे उनके तकनीकी ज्ञान और शोध कौशल में वृद्धि होगी। साथ ही देखिए, ये इंटर्नशिप केवल प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं बल्कि देश की रक्षा तकनीक और अनुसंधान में योगदान देने का अवसर है। छात्रों को आधुनिक एयरक्राफ्ट सिस्टम, UAB गैस टर्बाइन इंजन और जैसी अत्याधुनिक तकनीकों पर कार्य करने का अनुभव मिलेगा। इससे युवाओं को व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होगा और भविष्य में रक्षा अनुसंधान तथा तकनीकी क्षेत्र में भी करियर बनाने के लिए मजबूत आधार तैयार होगा। आपको बता दें इंटर्नशिप के लिए वही छात्र आवेदन कर सकते हैं जो अंतिम वर्ष के अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हों। न्यूनतम 6.5 CGPA और अनिवार्य रखा गया है। साथ ही छात्रों को लगातार 6 महीने तक इंटर्नशिप करनी होगी। आवेदन के साथ कॉलेज से अनुमति पत्र, मार्कशीट, आधार कार्ड और रिज्यूमे PDF फॉर्मेट में भेजना अनिवार्य होगा और छात्रों को निर्धारित प्रोजेक्ट्स पर कार्य करना होगा और समय समय पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत भी करनी होगी। आपको बता दें कि चयनित इंटर्न्स को कुल 30,000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा। ये राशि 2 किश्तों में प्रदान की जाएगी दोस्तों। पहली 15,000 रुपये की राशि 3 महीने बाद और दूसरी 15,000 रुपये की राशि 6 महीने पूर्ण होने पर मिलेगी। हालांकि यदि कोई छात्र इंटर्नशिप बीच में छोड़ देता है तो उसे प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया 5 जून 2026 तक चलेगी और छात्र आधिकारिक लिंक पर जाकर भी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। तो युवा दोस्तों, इसी चर्चा के साथ कार्यक्रम में फिर आप सभी के साथ मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। युवा दोस्तों, देखिए इसी के साथ आप सभी को बता दूं कि सोच बदलो, जीवन अपने आप ही बदल जाएगा। जी बिल्कुल, हमारा जीवन हमारी सोच पर निर्भर करता है। सोचना इंसान बंद नहीं कर सकता और सोच से जीवन चलता है। देखिए, सोच बदलो तो पूरा जीवन बदल जाता है। सकारात्मक या रचनात्मक सोच होगी तो जीवन में भी उसी तरह के नतीजे प्राप्त होंगे जो बेहद सुखद होंगे। यदि देखिए इसका उल्टा किया जाए, यानी नकारात्मक सोच, उससे जीवन भी नकारात्मकता से भर जाएगा और कौन चाहेगा उसका जीवन दुख दर्द से भरा हो। दोस्तों, जीवन एक बहती नाव है, उसमें हर कोई सवार है। देखिए, मुश्किल हालात होने पर भी जब आप जीवन की नाव को पार लगा लेते हैं ना, तो इसमें आपके सोच की अहम भूमिका होती है, वरना आप कब के डूब गए होते। दोस्तों, सोचना हमारे वश में है, इसीलिए जीवन को बदलना भी हमारे वश में है। फिर देरी कैसी, सोच बदलो, जीवन अपने आप ही बदल जाएगा। यह कोई चमत्कार नहीं है, आप स्वयं इसके रचनाकार हैं।
2: की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
2: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
4: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
2: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
4: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
2: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: है तो टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: तो युवा दोस्तों, इसी के साथ आज का युवमंच कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। दीजिए अपनी रेडियो दोस्त निधि पठानिया को इजाजत। नमस्कार।

0: क्या आपके बच्चे के होंठ या तालू में जन्म से कटाव है?
1: तो घबराइए नहीं, इसका इलाज संभव है। स्माइल ट्रेन के सहयोग से डॉक्टर ए एस ठाकुर मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमीरपुर में क्लेफ्ट होंठ और तालू की सर्जरी बिल्कुल निशुल्क की जाती है।
0: यह सर्जरी सुरक्षित है, बच्चा सामान्य जीवन जी सकता है और चेहरे की सुंदरता व बोलने की क्षमता सुधरती है। यह सेवा स्माइल ट्रेन के सहयोग से पूरी तरह मुफ्त है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8091671766।
1: अपने बच्चे को दें एक मुस्कुराहट भरा भविष्य।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। जंगल होगा जब सुरक्षित, जीवन होगा तब समृद्ध। वनों में आग ना लगाएं, धरती मां का मान बढ़ाएं। ना जलाओ जंगल की जान, यही प्रकृति की असली शान। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, शाम के 6 बजने को हैं। आकाशवाणी शिमला से अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

वन बचेंगे, जल बचेगा, तभी हमारा कल सजेगा। जागरूक बनो, संदेश फैलाओ, जंगलों को आग से बचाओ।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे व अंतिम चरण के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। तीसरे चरण के तहत प्रदेश की 1189 पंचायतों में वोट डाले गए। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार तीसरे चरण में कुल 6615 वार्डों में मतदान हुआ और इस समय प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्यों के मतों की गणना का कार्य चल रहा है। लाहौल स्पीति जिले के लाहौल विकास खंड की 10 ग्राम पंचायतों में तीसरे चरण के मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। मतदान कुल 69.60% दर्ज किया गया। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
1: लाहौल स्पीति जिला के 10 ग्राम पंचायतों में शनिवार को पंचायती राज चुनावों के तीसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। इस चरण में कुल 69.60% मतदान दर्ज किया गया। जानकारी के अनुसार कुल 4036 पंजीकृत मतदाताओं में से 2809 मतदाताओं ने मतदान किया। मतदान प्रतिशत की बात करें तो मठग्राम पंचायत में सबसे अधिक 76.20% मतदान दर्ज किया, जबकि मालंग में 58% मतदान दर्ज किया गया। प्रशासन की ओर से सभी मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों ने मतदान प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न कराया, जबकि सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह चाक चौबंद रही। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: उधर हमीरपुर जिला के बिजली ब्लॉक में 74.96%, जबकि हमीरपुर ब्लॉक में 76.24% मतदान हुआ। वहीं मंडी जिला के करसोग विकासखंड में अंतिम चरण में 82.86% मतदान दर्ज किया गया। पंचायती राज चुनाव के अंतिम चरण में मतदान प्रक्रिया को लेकर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में युवा मतदाता जहां उत्साहित नजर आए, वहीं बुजुर्ग मतदाता भी वोट डालने पहुंचे।
2: तो मेरा नाम भव्या है और मैं गांव सैनवाला की रहने वाली हूँ। आज मेरा फर्स्ट वोट था, काफी मतलब अच्छा लगा। आई थिंक सब यूथ को आगे आना चाहिए वोट देने के लिए और एक अच्छे लीडर को चूज करना चाहिए।
3: मेरा नाम मोहन सिंह है, मेरी उम्र 82 साल है और मैं यहाँ पे वोट डालने आया हूँ और मैंने सभी से ये निवेदन है।

0: संस्थाएं लोकतंत्र की बुनियाद हैं और ग्रामीण विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि मतदान के अधिकार के माध्यम से नागरिक अपने गांव, क्षेत्र और प्रदेश के विकास की दिशा तय करते हैं।
1: प्रजातंत्र की मजबूती के लिए हमें हमेशा मत का अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। प्रजातंत्र की नींव इसी बात पर टिकी है जिसमें प्रजा की सहभागिता हो, और आज मुझे भी ये सौभाग्य मिला कि मैं अपने पैतृक गांव में आकर इस कार्य को पूरा किया है।
0: इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्यों और चार नगर निगमों धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन में हुए चुनाव के मतों की गणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रदेश के 91 विकास खंडों में कल 31 मई को सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू होगी। जिला परिषद वार्डों की मतगणना के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कुछ स्थानों पर मतगणना की वेबकास्टिंग भी की जाएगी। जिला परिषद और पंचायत समितियों की मतगणना को लेकर सिरमौर जिला में सभी विकासखंड मुख्यालयों पर मतों की गिनती की जाएगी। सहायक निर्वाचन अधिकारी राजीव सांख्यान ने बताया कि नाहन में जिला परिषद के 2 वार्डों और 15 पंचायत समिति के वार्डों की गणना की जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले चरण में पंचायत समितियों की और उसके बाद जिला परिषद की मतगणना होगी।
2: मतगणना केंद्र जो है हमारा बिल्कुल तैयार है। नाहन में जो हमारा DPRC है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत रिसोर्स सेंटर है, यहाँ नाहन ब्लॉक की जो 15 पंचायत समिति के वार्ड उनकी काउंटिंग होगी, और उसके बाद हमारे जो जिला परिषद के 2 वार्ड बनकला और त्रिलोकपुर हैं उनकी काउंटिंग होगी। 12 टेबल्स जो हैं हमने तैयार किए हैं, 12 टेबल्स पे काउंटिंग होगी। सर्वप्रथम हमारे जो पंचायत समिति वार्ड्स हैं उनकी काउंटिंग होगी, उनके रिजल्ट अनाउंस होंगे, उसके बाद हमारे जिला परिषद के वार्ड पहले बनकला की और फिर त्रिलोकपुर की काउंटिंग की जाएगी। जितने भी हमारे काउंटिंग स्टाफ है सुबह 7:30 बजे यहाँ हमारे रिपोर्ट कर देंगे, और एक ब्रीफ ट्रेनिंग सेशन के बाद ठीक 9 बजे जो है हमारी काउंटिंग शुरू हो जाएगी।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सफर सुहाने, गाने नए पुराने। सफर सुहाने, गाने नए पुराने सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं नरेश चंदेल। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में रॉकी फिल्म के इस गीत से।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
4: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
5: दोस्तों, आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सफर सुहाने, गाने नए पुराने। आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में प्रतिज्ञा फिल्म का ये गीत है। रचना आनंद बख्शी की है और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
4: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
5: देवभूमि की सुरीली धड़कन आकाशवाणी हमीरपुर, इस समय आप सुन रहे हैं अपने रेडियो सेट पर और कार्यक्रम है सफर सुहाने, गाने नए पुराने। दोस्तों अब सुनते हैं SP बाल सुब्रमण्यम और चित्रा की आवाजों में लव फिल्म का ये गीत।

दोस्तों, अब सुनते हैं आनंद बख्शी की शब्द रचना को आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में। आवाज है अमित कुमार की और फिल्म का नाम तेरी कसम।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: किसानवाणी कार्यक्रम सुनने आले सारे किसान बागवान कने पशु पालक भाई बहन जो आशा कने मेरे सहयोगी
1: रमादा प्यार परिया
0: नमस्कार राम राम।
1: उम्मीद कर दे आंदे सारे ही किसान बागवान पशु पालक भाई बहन जैसे ठीक होने तंदुरुस्त होने कने इस वक्त जे आसे अपने खेती बाड़ी दे कम्मा कारा सोगी सोगी अपने घर परिवार दे कम्मा कारा सोगी सोगी अपना पसंदीदा कार्यक्रम किसान वाणी भी सुना दे होने।
0: जी बिल्कुल जा लीजिए किसान वाणी कार्यक्रम च किसान भाइयों सोगिया है गलबात सांझा कर दे जेड़े भी आहां दे समसामायिक कामकार हुंदे भी है तिना दी जानकारी जे ऐसे टेमा टेमा च किसान भाइयों तक पहुंचांदे रहंदे भी है। ते दिखना रमा कल की जे आहे दिखा दे कि मौसम जे ऐसे फिरी ते थोड़ा बदलो ही गया भी है या गर्मियां ते भी आहां जो थोड़ी राहत मिली कने हल्की फुल्की जे बरखा होई भी है ना इस ते जे ऐसे किसान भाइयों हुण जेड़ी खरीफ दी फसलां रे कामकार है तिना आले पासे जे है लगी आना भी है
1: ठीक ला दे यान क्योंकि आहां दी जे हल्की जी बरखा जे हुई ना तो इस ते थोड़ी जी नमी आहां दे खेतां च आई है तो दिखा आहां दे कई किसान है तिना जे कचालुए फसल ली या फिर अलदरी दी फसल ली या फिर आहां दी से जे अदरक आहां लगा रहे है तो इन्हां दिनां च जे असें उनाहां लगाई सकदे हन क्योंकि ये जे छिड़काव बरखा दा होया ही है इस दे सोगी जे असें आहां दी ये फसलां जी से लगी आनियां हन। इस दे अलावा जे असें आहां दे कई जिहड़े किसान हन से तिना चरी बाजरा भी जे असें बीज सकदे हन क्योंकि बरखा ते इसदे भी लुंगने दे आसार जे सब बढ़ी जांदे
0: हैं। जी बिल्कुल कने मौसम विभाग ते यही जानकारी मिला दी भी आने आले 2-3 दिन जी ऐसे मौसम दे ही बनी रह रहना हल्की फुल्की बरखा भी हो सकती कने बदल बोला जे ऐसे बनी रह रहना भी है यानी कि मौसम च काफी उतार चढ़ाव जे ऐसे ना 2-3 दिन चाह जो दिखने हो मिलना भी है या
1: जी।
0: कने अगर आज के दिन दे तापमान दी ही गल करिए ता आज जे ऐसे ज्यादा ते ज्यादा तापमान था 28 डिग्री सेल्सियस कने घट तापमान था 19 डिग्री सेल्सियस
1: जी कने वातावरण च जे असे उमस थी 53% कने बरखा दी गल करिए ता 80% तक ता बरखा दा आसार भी आज रही आए।
0: जी ता भाई दिखा मौसम दे साबा ने करने आहा अपने खेती बाड़ी दे कामकार जे ऐसे निर्धारित करने क्योंकि आहा दे जे लाके ना इना चाहां दी खेती बाड़ी रहंदी निर्भर मौसम च अगर टेमा दी जे इसे बरखा हो जांगी ता आहे जे ऐसे जेडी भी आहे खेती बाड़ी रे कामकार कर दे तिना ते भरपूर जे ऐसे मुनाफा मिलदा भी आया कने कई बारी जे ऐसे मौसम साथ नहीं दे ता फिर किसान भाइयों जो जे ऐसे थोड़ा मुश्किल झेलना पौंदी भी है।
1: ठीक ला दे अगर दिखा मौसम हाँ दा साथ दे ता आहां जे ऐसे अच्छा मुनाफा अपनी फसलां ते ले लैंदे हन कने आह टाइम पर ही जे ऐसे फसलां बीजी लैंदे हन कने कई बारी जे ऐसे अग्गे पिछे हाँ दे मौसम च या जलवायु च परिवर्तन होआ दा ये आ तो इस वजह ते जे ऐसे बरखा लेट हो जांदियां हां दियां फसलां भी जे ऐसे लेट हो जांदियां हन तो इस ते जे ऐसे हां जो कई बारी जे ऐसे नुकसान भी भुगतना पौंदा
0: जी। पर आहां दे किसान भाई जे ऐसे अब एक ही तरह दी ही फसलां लगाने पर निर्भर नहीं रहंदे है बल्कि आहां दे किसान भाई जे ऐसे ये जेड़ा टाइम चले है ना इन दिनों जे ऐसे जेड़े मिश्रित कामकार

0: सोगी रेत इत्यादि कण जैसे नहीं मिलवे होने चाहिए, कूड़ा करकट जैसा नहीं होना चाहिए। कने सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अधिकतर जो असें आते समय जो जो असें बाधित रखती है, कने सिंचाई व्यवस्था जो भी कई बार अवरुद्ध करी जाती है। तो हाँ एड़ा करना ही है कि साफ सुथरे जल जो असें तिथि हो तिथी ते ही अहाँ जो असें ड्रिप सिंचाई ताई जो असें पाइपलाइन या भी है जो कोई भी चीज़ अहाँ लगा दे हैं तो जो सुनिश्चित करें ही सही ढंग ने लगाना ही है
1: जी। कने पंप का इस्तेमाल जो है से सिंचाई जेड़ा पानी हुंदा भी है या जल स्रोता ते उठाने वास्ते जो है से एक पंप की जरूरत रहती भी है। पंप सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की एक मुख्य अंग जो है से मनिया जाता भी है या
0: जी।
1: ये बिजली की मोटर या फिर डीजल या फिर पेट्रोल इंजन ने कन्ने चलने वाला जो है से हो सकता भी है या आम तौर पर पंप की क्षमता सिंचाई क्षेत्र पर जे इसे निर्भर करती भी है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली च बाधा रहित प्रचलन वास्ते जे ऐसे ड्रिप प्रणाली का दबाव 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर या फेरी माइक्रो स्प्रिंकल प्रणाली का दबाव जे ऐसे 2.5 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होना चाहिए भी है
0: जी
1: यार।
0: जी
1: ता इस तरह जे ऐसे आहे पंप का इस्तेमाल जे ऐसे पानी उठाने वास्ते जे ऐसे जल स्रोतों के ताए कर दे भी आए।
0: बिल्कुल। कने अगली गल करिए हाँ फिल्टर यूनिट यानी कि रसायनिक खाद वितरण टैंक दी, तब पंप दे दौरान तुरंत बाद जैसे बल्ब लगाई करने जैसे पानी दे बहाव जो नियंत्रित करते हैं, इसके पश्चात जैसे जल दबाव जैसे जल मापी यंत्र लगे होंगे तो इसते जैसे जल निश्रण दबाव कने जल मात्रा की जानकारी भी देंगे। इसके पश्चात एक फिल्टर यूनिट लगाया जाता ही है इसते जैसे अघुलनशील अशुद्धियां दी प्रणाली जो प्रवेश करने ते जे ऐसा रोकता ही है।
1: ये जे मुख्य लाइन होंगी है आम तौर पर जेड़े बूटियां दी पंक्तियां होंगी भी है ना तिना दे बीच जे इसे बिछाई जाती भी है।
0: जी
1: मुख्य पाइपलाइन का ब्यास जे ऐसे 2.5 से 7.5 सेंटीमीटर तक होना चाहिए भी है या कने इस लाइन च क्या होंगे उपरले कने निचले सिरिया च एक दबाव का अंतर 10% ते ज्यादा जे ऐसे नहीं होना चाहिए भी है या
0: बिल्कुल। कने इस अगे ही एक लैटरल लाइन भी होंगी है इस बीच जे ऐसे पीवीसी या फिर पॉलीविनाइल कलोराइड दी है बनी होंगी है। कने लैटर लाइन के सोगी जैसे पौधे दी पंक्तियों च समानांतर सोगी सोगी जैसे बिछाया जाता ही है।
1: जी बिल्कुल। ता ए ता है गल कीती कि पॉली हाउस जे ऐसे ड्रिप सिंचाई आहे किस तरीके ने करने जे ऐसे लगाई सकदे भी है कन तिस दा जे ऐसे इस्तेमाल किया करना भी है या
0: जी
1: इस ते अलावा होर भी गल्ला बाता जे ऐसे आहा करनी कि ए जे ड्रिप सिंचाई प्रणाली आहा लगानी भी है इस दा रखरखाव जे ऐसे आहा दे किसान भाई किया करी सकते पर गल्ला बाता सोगी सोगी रमा कार्यक्रम बीच किसान भाइयों जो इंतजार रहंदा मनोरंजन दा।
0: बिल्कुल जी। तो तिना दा इंतजार हाँ इथी करना खत्म कने सुनना इथी बांका जिया लोक गीत
1: जी।

0: जी इसे नहीं होवा तीस दे ताए जी ऐसे टेमा टेमा ची नदी रिपेयर या फिर कुती ते खराब होना लग रही भी है तीस दे बारे चाहा जो सारी जानकारी रखनी चाहिए कने अगर कुती ते जे ऐसे ड्रिप सिंचाई दी जेडी पाइप आई या फिर जेडी लाइना बिछाई रही भी है लैटरल लाइन नी तीस जे ऐसे खराबी आना लग रही भी है तो तिना द जे ऐसे अहां जो मेंटेनेंस जे इसे रखनी चाहिए भी है।
1: बिल्कुल इसके अलावा जी ऐसे गुणवत्ता वाले भारतीय मानक है जी ब्यूरो ते प्रमाणित सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली ड्रिप माइक्रो स्प्रिंकल पंप सेट या फिर मीटर का प्रयोग हाँ जो करना चाहिए ये आ
0: जी।
1: पंप दे अंदरले हिस्से च जैसे पंप इंपेलर या फिर विद्युत मीटर जैसे उन्दा ये आ तिस बीच डीजल इंजन दे घूमने सोगी जैसे कसी आंदा ये आ तो तिस जो प्रत्येक 6 महीने बाद जैसा तिस दा निरीक्षण हाँ जो कर लेना चाहिए कने घिसे पिटे बेकार हुए भाग जो हाँ जो जैसे आवश्यकता अनुसार बदली लेना चाहिए यदि सिंचाई जल च सिल्ट या रेत दे कण अहां जो लगा दे अन पे आई गए हैं तो जालीदार फिल्टर दे सोगी जैसे सेंड फिल्टर का प्रयोग भी अहां कर सकते हैं कने टाइमा टाइमा पर जे आसे अहां फिल्टरां दी सफाई करे तिना दी धुलाई जरूर जे ऐसे करनी है
0: जी। मुख्य पाइपलाइन कने जेड़े भी लैटरल लाइन लग रही भी है तिना जो साला च घट ते घट 2 बारी च ऐसे साफ हां जो जरूर करना चाहिदा योजनाबद्ध तरीके ने कने टेमा टेमा च जे ऐसे संपूर्ण पॉली हाउस दा निरीक्षण हां जो करना चाहिदा कने बंद पई रे जेड़े एमीटर है तिना जो खोली देना चाहिदा ताकि सारे बूटियां जो पर्याप्त पानी दी मात्रा जे इसे मिली सको भी है।
1: बिल्कुल कने हजे पीवीसी पाइपा न हजे बंद पड़े एमीटर न या ड्रिपर न तिना जो खोली करने आवश्यकता अनुसार रसायनिक जल सोगी उपचारित कर लेना चाहिदा सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड 30% दा प्रयोग बंद करी करने जे आसे हां ए मीटर जो खोली जा सकदे हन कने ज्यादा समय ताई जे आसे रासायनिक उपचार ताई जे आसे हां पीएच 2 या फिर लगातार लंबे समय तक रासायनिक दा जल दा उपयोग जैसे कर सकदे हन ज्यादातर संभव हो ता अहां जे आसे लैटरल लाइना या फिर ड्रिपरां दा रासायनिक जल ते उपचार पॉली हाउस दे बाहरी ही जे आसे करना ही है इसते फसल जो रासायनिक जल ते ओणे आले नुकसान ते बचाई सकते हैं
0: जी कने हमेशा हाँ जो कोशिश करनी चाहिए कि जेड़ी वैसे मशीनरी लगाई रही भी है ना अगर से इस्तेमाल नहीं होना लग रही है तो तीस जो जी साफ करना कने सूखे स्थान च इकट्ठा करीने करने जी ऐसे रखी लेना भी है क्योंकि सही तरीके रा रख रखाव कने उचित भंडारण जी ऐसे जेड़ी वैसे मशीनरी लगाई रही भी है या संयंत्र अहां दे तिना दी आयु जो जी ऐसे लंबा करी एंदा भी है या
1: जी
0: HDPE कने PVC पाइपलाइन जो कटने ते बचाने वास्ते जी ऐसे तेज धार चीजा ते दूर रखना चाहिंदा भी है या।
1: बिल्कुल तो दिखा भाई ए दा गलबात ओही है कि पॉली हाउस जे असे ट्रिपक सिंचाई प्रबंधन जे असे यहां किन्ना कर सकदे हन किस तरीके करने जे असे जे सूक्ष्म सिंचाई दे यंत्र अन तिना दा हां इस्तेमाल करना ही है या ताकि लंबे समय तक तिना दा इस्तेमाल जे असे हां कर सकन।
0: जी ता ए ता गलबात रे पॉली हाउस च टपक सिंचाई योजना दा आहे प्रबंधन किया करी सकदे भी है गल्लावाता कार्यक्रम बीच इये चली रही रहनी पर रमा गल्लावाता सुनने दा कने सुनाने दा मजा भी ताई बने रहंदा अगर कन्ने कन्ने जी ऐसे मनोरंजन भी चलदा रहो।
1: बिल्कुल जी ता मनोरंजन ताई इंतजार हां करना नहीं कने सुनी लेना एथी एक बांका जे आ लोक गीत
0: जी।

0: शुक्रिया जी। ए तां सुनिया हे बांका जिहा लोक गीत, कन्नै हुण जे असें कार्यक्रम च टाइम होआ दा कृषि सब्जी मंडी हमीरपुर ते प्राप्त फलां सब्जियां जिन्स दे थोक बाजार भाव दी जानकारी दा।
1: जी सर, ते पहले गल करिए सब्जियां दे थोक भाव दी, तां सब्जियां च आलू प्रति एक किलो रहे आज 8 ते 13 रुपये, पहाड़ी आलू रहे 14 ते 16 रुपये, प्याज दा थोक भाव रहे 20 ते 22 रुपये प्रति एक किलो, गोभी आज रही 40 ते 45 रुपये, बंद गोभी दा थोक भाव रहे 14 ते 15 रुपये, शिमला मिर्च 30 ते 35 रुपये, घी आज रहा 15 ते 20 रुपये, कने भिंडी प्रति एक किलो रही 25 रुपये।
0: जी कने टींडे की गल करिए, टींडा रहा प्रति किलो 20 ते 25 रुपये, परवल रहे 30 ते 35 रुपये किलो, करेला 30 रुपये किलो, पालक 40 ते 45 रुपये किलो, धनिया 70 ते 80 रुपये किलो, टमाटर 14 ते 15 रुपये किलो, मूली 25 ते 30 रुपये किलो, राम तोरी 30 ते 40 रुपये किलो, गाजर 30 रुपये किलो, हरी मिर्च 40 ते 45 रुपये किलो, कने नींबू रहे 70 ते 80 रुपये किलो,
1: खीरा प्रति एक किलो आज रहे 20 ते 35 रुपये, बैंगन का थोक भाव रहे 30 रुपये प्रति एक किलो, अदरक 150 रुपये, लहसुन का थोक भाव रहे 120 ते 150 रुपये, मटर प्रति एक किलो आज रहे 55 ते 60 रुपये, फ्रांस बीन का थोक भाव रहे 100 ते 120 रुपये, कद्दू 15 ते 20 रुपये प्रति एक किलो, कने अरबी रही आज 30 ते 35 रुपये प्रति एक किलो।
0: जी गल करिए फलां दी, तां फलां च केला प्रति डिब्बा रहा 12 किलो दा 480 ते 550 रुपये, सेब 150 ते 160 रुपये किलो, अनार 220 रुपये किलो, मौसमी 95 ते 100 रुपया, पपीता 50 रुपये किलो, कीवी प्रति डिब्बा 1200 ते 1300 रुपया, अनानास प्रति किलो रहा 50 रुपये किलो, अमरूद 125 ते 130 रुपये, माल्टा 150 रुपये किलो, तरबूज 12 ते 15 रुपये, डाब नारियल प्रति नारियल रहा 75 रुपये, अंब सफेद रहे 70 ते 75 रुपये किलो, अंब तोता रहे 50 रुपये किलो, पलम रहे 180 ते 200 रुपया, खुमानी 110 ते 120 रुपये।
1: जी कने गलबात करिए जिनसा दे थोक भाव दी, तां जिनसा च बासमती चावल आज रहे 40 ते 100 रुपये, बेगमी चावल 30 ते 40 रुपये, कने दड़ा चावल दा थोक भाव रहे 25 ते 30 रुपये, छलियां रहे आज 20 ते 23 रुपये प्रति एक किलो, दड़ा गेहूं 19 ते 23 रुपये, दाली च माह दी दाल 115 ते 130 रुपये, कने चना प्रति एक किलो रहे 75 ते 150 रुपये।
0: जी कने गल करिए अगर हां सुकी मिर्च दी, तां सुकी मिर्च रही 350 ते 380 रुपये, अलसी 70 ते 90 रुपये, गुज्जर घ्यो रहा 700 ते 1000 रुपया, देसी घ्यो रहा 500 ते 650 रुपये, गुड़ रहा 40 ते 45 रुपये, कने अंडा प्रति सैकड़ा रहे 600 ते 650 रुपये।
1: जी तां ए तां गलबात रही थोक बाजार भाव दी, कने इन्हां ही सारियां गल्लां बातां सोगी अब आज दे कार्यक्रम किसान वाणी दा टाइम भी इत्थी खत्म होई चले आ, तां अपने सारे ही किसान बागवान कने पशु पालक भाई बहणा ते लैंदे अनुमति कने बोलदे न
0: नमस्कार। नमस्कार।

अभी किसानवा बागवान भाई बहन सुन रहे थे अपना कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7 बजने को है। आकाशवाणी दिल्ली से अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में डीके शिवकुमार को नया नेता चुना गया है। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धारमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। विधायकों ने उन्हें अपना नेता और अगला मुख्यमंत्री चुना है। श्री शिवकुमार को नेता चुने जाने के प्रस्ताव को पारित करने के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बैठक में पार्टी विधायकों को आधिकारिक रूप से इसकी सूचना दी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांव को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांव को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग को न्यूनतम करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। 30 जून तक चलने वाले अभियान के लिए 1600 से अधिक दल गठित किए गए हैं। इसके अलावा उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करने वाले जिलों के लिए 500 दल बनाए गए हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार है। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम आईटीआई क्लस्टर के लिए आर्सेलर मित्तल नेपॉन स्टील इंडिया नामक एक निजी कंपनी के निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मंत्रालय ने कहा कि ये उपलब्धि औद्योगिक प्रशिक्षण

0: का मिला, लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीनें जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीनें जो कि बहुत ही एक अच्छे बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
1: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सियो सेंग जाए और किम वॉन हो को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भक्ति संगीत। भक्ति संगीत कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ों में गोपी फिल्म के इस गीत से। रचना राजेंद्र कृष्ण की है और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भक्ति संगीत। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाजों में सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का ये गीत है। रचना नरेंद्र शर्मा की है और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

श्रोताओ, इसी गीत के साथ अब आज का भक्ति संगीत कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हो रहा है। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:25 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रौनका ग्राइंदियां।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: अभी आप सुन रहे थे रौनका ग्राइंडियां। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:42 हुए हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी शिमला से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

जंगल बचेंगे तभी जीवन के रंग सजेंगे। जंगलों की रक्षा करें, प्रकृति का सम्मान करें। आग नहीं।

पेड़ लगाओ, धरती को स्वर्ग बनाओ। वन है जीवन का आधार, इन्हें बचाना है हम सबका अधिकार।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:45 होने को हैं। आकाशवाणी शिमला से अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, सरकारी सेवा में नियुक्ति से पहले डोप टेस्ट होगा अनिवार्य। पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे व अंतिम चरण के लिए 1189 पंचायतों में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। प्रधान, उप प्रधान व वार्ड सदस्यों के मतों की गिनती जारी। 4 नगर निगमों सहित जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के मतों की गणना कल। सभी तैयारियां पूरी, सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में कल सुबह लोगों से साझा करेंगे विचार। और प्रदेश की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी व अन्य क्षेत्रों में वर्षा से तापमान में गिरावट। कल भी अनेक स्थानों पर वर्षा, बर्फबारी व ओलावृष्टि की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकारी सेवा में नियुक्ति से पहले अभ्यर्थियों का डोप टेस्ट अनिवार्य करने और इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने के निर्देश दिए हैं। शिमला में प्रशासनिक सचिवों के साथ आयोजित बैठक में उन्होंने चतुर्थ श्रेणी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित ग्रेच्युटी व अवकाश नकदीकरण के भुगतान शीघ्र सुनिश्चित करने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने विभागाध्यक्षों को करुणामूलक आधार पर नौकरी के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों का पूरा विवरण उपलब्ध करवाने को कहा, ताकि प्रदेश सरकार इन मामलों में उचित निर्णय ले सके। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों को रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए, ताकि इन्हें शीघ्र भरा जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में तूफान के कारण वन भूमि पर गिरे और उखड़े पेड़ों को हटाने के लिए 1 जून से विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे व अंतिम चरण के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। तीसरे चरण के तहत प्रदेश की 1189 पंचायतों में प्रधान, उप प्रधान, वार्ड सदस्यों और जिला परिषद व ब्लॉक समिति सदस्यों के चुनाव के लिए वोट डाले गए। मतदान करीब 80% दर्ज किया गया और इस समय प्रधान, उप प्रधान व वार्ड सदस्यों के मतों की गणना का कार्य चल रहा है। लाहौल स्पीति जिले के लाहौल विकास खंड की 10 ग्राम पंचायतों में तीसरे चरण के मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। मतदान कुल 69.60% दर्ज किया गया। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
1: लाहौल स्पीति जिला के 10 ग्राम पंचायतों में शनिवार को पंचायती राज चुनावों के तीसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। इस चरण में कुल 69.60% मतदान दर्ज किया गया। जानकारी के अनुसार कुल 4036 पंजीकृत मतदाताओं में से 2809 मतदाताओं ने मतदान किया। मतदान प्रतिशत की बात करें तो मठग्राम पंचायत में सबसे अधिक 76.20% मतदान दर्ज किया, जबकि मालंग में 58% मतदान दर्ज किया गया। प्रशासन की ओर से सभी मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों ने मतदान प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न कराया, जबकि सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह चाक चौबंद रही। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: उधर कांगड़ा जिला में आज 277 पंचायतों में मतदान करवाया गया, जिसमें करीब 70% मतदान दर्ज किया गया। सोलन जिला में 83.85%, चंबा में 85.21%, कुल्लू में 84.66%, ऊना में 79.67% मतदान दर्ज किया गया। पंचायती राज चुनाव के अंतिम चरण में मतदान प्रक्रिया को लेकर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में युवा मतदाता जहां उत्साहित नजर आए, वहीं बुजुर्ग मतदाता भी वोट डालने पहुंचे।
2: मेरा नाम भव्या है और मैं गांव सैनवाला की रहने वाली हूँ। आज मेरा फर्स्ट वोट था, काफी मतलब अच्छा लगा। आई थिंक सब यूथ को आगे आना चाहिए वोट देने के लिए और एक अच्छे लीडर को चूज करना चाहिए।
3: मेरा नाम मोहन सिंह है, मेरी उम्र 82 साल है और मैं यहाँ पे वोट डालने आया हूँ। और मैंने सभी से ये निवेदन है कि पहले तो निर्विरोध चुनने की कोशिश करो, लेकिन अगर फिर भी लेकिन टकराव की स्थिति ना रखो कर। और सभी से ये निवेदन है कि 18 साल से ऊपर सभी को अपना मत उसका प्रयोग करना चाहिए।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रजातंत्र की मजबूती जनता की सहभागिता से ही संभव है और लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। वे आज अपने गृह जिला बिलासपुर के झंडुता विधानसभा क्षेत्र की विजयपुर सुंगला पंचायत में मतदान करने के अवसर पर बोल रहे थे।
4: प्रजातंत्र की मजबूती के लिए हमें हमेशा मत का अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। प्रजातंत्र की नींव इसी बात पर टिकी है जिसमें प्रजा की सहभागिता हो, और आज मुझे भी ये सौभाग्य मिला कि मैं अपने पैतृक गांव में आकर इस कार्य को पूरा किया है।
0: इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज सराज विधानसभा क्षेत्र की गृह पंचायत मुरहाग मतदान केंद्र में वोट डाला और सभी मतदाताओं से ग्रामीण विकास के लिए योग्य प्रतिनिधियों को चुनने का आग्रह किया। उन्होंने प्रदेश सरकार पर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर कई तरह के षड्यंत्र अपनाकर पंचायत चुनाव को देरी से करवाने का आरोप लगाया। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने घुमारवीं विकास खंड के तहत अपने गृह पंचायत के पनौल मतदान केंद्र में पंचायत चुनाव के लिए मतदान किया। उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश की उन्नति के लिए जनता के प्रति समर्पित उम्मीदवारों का चयन जरूरी है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला परिषद पंचायत समिति सदस्यों और चार नगर निगमों धर्मशाला पालमपुर मंडी और सोलन में हुए चुनाव के मतों की गणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। प्रदेश के 91 विकास खंडों में कल 31 मई को सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू होगी। जिला परिषद वार्डों की मतगणना के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। सिरमौर जिला के सहायक निर्वाचन अधिकारी राजीव सांख्यान ने बताया कि नाहन में जिला परिषद के 2 वार्डों और 15 पंचायत समिति के वार्डों की गणना की जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले चरण में पंचायत समितियों और उसके बाद जिला परिषद की मतगणना होगी।
5: मतगणना केंद्र जो है हमारा बिल्कुल तैयार है। नाहन में जो हमारा DPRC है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत सेंटर है, यहाँ नाहन ब्लॉक की जो 15 पंचायत समिति के वार्ड उनकी काउंटिंग होगी, और उसके बाद हमारे जो जिला परिषद के 2 वार्ड बनकला और त्रिलोकपुर हैं उनकी काउंटिंग होगी। 12 टेबल्स जो हैं हमने तैयार किए हैं, 12 टेबल्स पे काउंटिंग होगी। सर्वप्रथम हमारे जो पंचायत समिति वार्ड हैं उनकी काउंटिंग होगी, उनके रिजल्ट अनाउंस होंगे, उसके बाद हमारे जिला परिषद के वार्ड पहले बनकला की और फिर त्रिलोकपुर की काउंटिंग की जाएगी। जितने भी हमारे काउंटिंग स्टाफ है सुबह 7:30 बजे यहाँ हमारे रिपोर्ट कर देंगे, और एक ब्रीफ ट्रेनिंग सेशन के बाद ठीक 9 बजे जो है हमारी काउंटिंग शुरू हो जाएगी।
0: उधर कांगड़ा जिला में नगर निगम धर्मशाला व पालमपुर के चुनावों की मतगणना के लिए सभी प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। ADM कांगड़ा शिल्पी बेकटा ने बताया कि मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं।
6: कल यानी कि 31 मई को हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन धर्मशाला और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पालमपुर में भी मतगणना होनी है, और मतगणना EVM के माध्यम से होनी है जिसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। साथ ही में हमारे 18 ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पे BDC और जिला परिषद इनकी भी मतगणना होनी है। सिक्योरिटी हमारी प्राइमरी इम्पोर्टेंस पे रहेगी क्योंकि यहाँ पे बहुत क्लोजली कंटेस्टेड चुनाव कहा गया है। हमारा डबल टायर्ड सिक्योरिटी इसमें रहेगी और साथ में फ्रिस्किंग स्पेशली की जाएगी।
0: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने दावा किया है कि प्रदेश के 4 नगर निगमों मंडी, धर्मशाला, पालमपुर व सोलन के चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। आज शिमला में उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, जबकि भाजपा का प्रदेश विरोधी चेहरा पूरी तरह उजागर हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने नव निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों से गांव में सौहार्द, सहभागिता और सुशासन का वातावरण सुनिश्चित करने का आह्वान किया है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन सके। वे आज समीरपुर में उनसे मिलने आए दाढ़ी व बीड़ बगेहड़ा के नव निर्वाचित प्रतिनिधिमंडलों से बातचीत कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। प्रदेश की ऊंची चोटियों पर आज हल्की बर्फबारी जबकि अन्य क्षेत्रों में वर्षा व तेज हवाएं चलने से तापमान में गिरावट आई है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। बारिश व बर्फबारी से राजधानी शिमला सहित अन्य पर्यटन स्थलों में मौसम सुहावना हो गया है, जिसका आनंद लेने के लिए मैदानी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में सैलानी यहां पहुंच रहे हैं। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश व बर्फबारी की संभावना जताई है। विभाग ने कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि व 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, सरकारी सेवा में नियुक्ति से पहले डोप टेस्ट होगा अनिवार्य। पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे व अंतिम चरण के लिए 1189 पंचायतों में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। प्रधान, उप प्रधान व वार्ड सदस्यों के मतों की गिनती जारी। 4 नगर निगमों सहित जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के मतों की गणना कल। सभी तैयारियां पूरी, सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में कल सुबह लोगों से साझा करेंगे विचार। और प्रदेश की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी व अन्य क्षेत्रों में वर्षा से तापमान में गिरावट। कल भी अनेक स्थानों पर वर्षा, बर्फबारी व ओलावृष्टि की संभावना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
7: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। क्या आपके बच्चे के होंठ या तालू में जन्म से कटाव है?
8: तो घबराइए नहीं, इसका इलाज संभव है। स्माइल ट्रेन के सहयोग से डॉक्टर AS ठाकुर मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमीरपुर में क्लेफ्ट होंठ और तालू की सर्जरी बिल्कुल निशुल्क की जाती है।
7: यह सर्जरी सुरक्षित है, बच्चा सामान्य जीवन जी सकता है और चेहरे की सुंदरता व बोलने की क्षमता सुधरती है। यह सेवा स्माइल ट्रेन के सहयोग से पूरी तरह मुफ्त है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8091671766।
8: अपने बच्चे को दें एक मुस्कुराहट भरा भविष्य।
9: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
10: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
9: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
11: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
9: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
11: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
9: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
7: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

बूंद बूंद से सागर बनता, जल बचाओ भविष्य संवरता। आज बचाएं पानी, कल नहीं होगी परेशानी। जल है तो कल है, इसे बचाना सरल है। जल बचेगा जीवन सजेगा। पानी बचाओ धरती सजाओ।

0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजे हैं, अब से लेकर 8:45 तक आप हमारे केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम सुनेंगे।
1: आइए सुने कार्यक्रम हवा महल।

0: हवा महल में आज हमारी श्रृंखला सुनो कहानी।
1: दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। हवा महल के अंतर्गत श्रृंखला सुनो कहानी में आज आपको सुनाता हूं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी प्रेम का मूल्य। बृहस्पति छोटे देवताओं का गुरु था। उसने अपने बेटे कच को संसार में भेजा कि शंकराचार्य से अमर जीवन का रहस्य मालूम करे। कच शिक्षा प्राप्त करके स्वर्गलोक को जाने के लिए तैयार था। उस समय वह अपने गुरु की पुत्री देवयानी से विदा लेने के लिए आया। कच ने कहा, देवयानी, मैं विदा लेने आया हूं। तुम्हारे पिता के चरण कमलों में मेरी शिक्षा पूरी हो चुकी है, कृपा कर मुझे स्वर्गलोक जाने की आज्ञा दो। देवयानी ने कहा, तुम्हारी कामना पूर्ण हुई। जीवन के अमृतत्व का वो रहस्य तुम्हें ज्ञात हो चुका है जिसकी देवताओं को सर्वदा इच्छा रही है। किंतु तनिक विचार तो करो, क्या कोई और ऐसी वस्तु शेष नहीं जिसकी तुम इच्छा कर सको? कच ने कहा, कोई नहीं। देवयानी बोली, बिल्कुल नहीं। तनिक अपने हृदय को टटोलो और देखो, संभवतः कोई छोटी बड़ी इच्छा कहीं दबी पड़ी हो। कच ने फिर कहा, मेरे उषाकालीन जीवन का सूर्य अब ठीक प्रकाश पर आ गया है। उसके प्रकाश से तारों का प्रकाश मध्यम पड़ चुका है। मुझे अब वह रहस्य ज्ञात हो गया है जो जीवन का अमृतत्व है। देवयानी ने कहा, तब तो संपूर्ण संसार में तुमसे अधिक कोई भी व्यक्ति प्रसन्न न होगा। खेद है कि आज पहली बार मैं यह अनुभव कर रही हूं कि एक अपरिचित देश में विश्राम करना तुम्हारे लिए कितना कष्टप्रद था। यद्यपि यह सत्य है कि उत्तम से उत्तम वस्तु जो हमारे मस्तिष्क में थी तुमको भेंट कर दी गई है, इसका तनिक भी विचार न करो और हर्ष सहित मुझे जाने की आज्ञा दो। कच ने कहा, देवयानी ने कहा, तुम्हारे लिए इस वन को छोड़ना बहुत सरल है। यह वही वन है जिसने इतने वर्षों तक तुम्हें अपनी छाया में रखा, तुम्हें लोरियां दे देकर थपथपाता रहा। तुम्हें अनुभव नहीं होता कि आज वायु किस प्रकार क्रंदन कर रही है? देखो देखो, वृक्षों की हिलती हुई छाया को देखो, उनके कोमल पल्लवों को निहारो। वे वायु में घूम नहीं रहे बल्कि किसी खोई हुई आशा की भांति भटके भटके फिर रहे हैं। एक तुम हो कि तुम्हारे होष्ठों पर हंसी खेल रही है। प्रसन्न

पिता के साथ तुम विदा हो रहे हो। कच ने कहा, मैं इस वन को किसी प्रकार मातृभूमि से कम नहीं समझता, क्योंकि यहां ही मैं वास्तव में आरंभ से जन्मा हूं। इसके प्रति मेरा स्नेह कभी कम न हो।

था तुम पर प्रेम से छाया की थी। कच्छ ने कहा, ए वन के स्वामी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। जब और विद्यार्थी यहां शिक्षा प्राप्ति हेतु आए और शहद की मक्खियों की भनभनाहट और पत्तों की सरसराहट के साथ साथ तेरी छाया में बैठकर अपना पाठ दोहराए तो मुझे भी स्मरण रखना, देवयानी ने कहा। और हां, तनिक वनमती का भी तो ध्यान करो, जिसके निर्मल और तीव्र प्रवाह का जल प्रेम संगीत की एक लहर के समान है। कच्छ बोला, आ उसको बिल्कुल नहीं भूल सकता, उसकी स्मृति सदा बनी रहेगी। देवयानी बोली, किंतु प्रिय सखा, तुम्हें स्मरण कराना चाहती हूं कि तुम्हारा और भी कोई साथी था, जिसने बेहद प्रयत्न किया कि तुम इस निर्धनता के दुख से भरे जीवन के प्रभाव से प्रभावित ना हो। ये दूसरी बात है कि प्रयत्न व्यर्थ हुआ, उसकी स्मृति तो जीवन का एक अंग बन चुकी है देवयानी। देवयानी ने फिर कहा, मुझे वे दिन स्मरण है जब तुम पहली बार यहां आए थे। उस समय तुम्हारी आयु किशोर अवस्था से कुछ ही अधिक थी, तुम्हारे नेत्र मुस्कुरा रहे थे, तुम उस समय उधर वहां वाटिका की बाढ़ के समीप खड़े थे। हाँ, उस समय तुम्हारे शरीर पर श्वेत वस्त्र थे, ऐसा दिखाई देता था जैसे उषा ने अपने प्रकाश में स्नान किया है। तुम्हें संभवतः स्मरण होगा, मैंने कहा था यदि मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं तो मेरा सौभाग्य होगा। देवयानी ने कहा, स्मरण क्यों नहीं है? मैंने आश्चर्य से तुमसे पूछा था कि तुम कौन हो, और तुमने अत्यंत नम्रता से उत्तर दिया था कि मैं इंद्र की सभा के प्रसिद्ध गुरु बृहस्पति का सुपुत्र हूं। फिर तुमने बताया कि तुम मेरे पिता से वो रहस्य मालूम करना चाहते हो जिससे मुर्दे जीवित हो सकते हैं। कच्छ ने कहा, मुझे संदेह था कि संभव है तुम्हारे पिता मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार न करें। देवयानी फिर बोली, किंतु जब मैंने तुम्हारी स्वीकृति के लिए समर्थन किया तो वो इस विनती को अस्वीकार न कर सके। उनको अपनी पुत्री से इतना अधिक स्नेह है कि वो उसकी बात टाल ही नहीं सकते। कच्छ बोला, और जब मैं 3 बार विपक्षियों के हाथों मारा गया तो तुम्ही ने अपने पिता को बाध्य किया था कि मुझे दोबारा जीवित करें। मैं इस उपकार को बिल्कुल नहीं विस्मृत कर सकता। देवयानी बोली, उपकार? उपकार? यदि तुम उसको विस्मृत कर दोगे तो मुझे बिल्कुल दुख ना होगा। क्या तुम्हारी स्मृति केवल लाभ पर ही दृष्टि रखती है? यदि यही बात है तो उसका विस्मृत हो जाना ही अच्छा है। कच्छ ने कहा, बहुत सी वस्तुएं हैं जो शब्दों द्वारा प्रकट नहीं हो सकती। हाँ, मैं जानती हूं, देवयानी बोली, मेरे प्रेम से तुम्हारे हृदय का एक एक अणु छिद चुका है, और यही कारण है कि मैं बिना संकोच के इस सत्य को प्रकट कर रही हूं कि तुम्हारी सुरक्षा और कम बोलना मुझे पसंद नहीं। तुम्हें मुझसे अलग होना अच्छा नहीं, यहीं विश्राम करो। कोई ख्याति ही हर्ष का साधन नहीं है। अब तुम मुझको छोड़कर नहीं जा सकते, तुम्हारा रहस्य मुझ पर खुल चुका है। नहीं नहीं देवयानी, नहीं, ऐसा ना कहो। देवयानी ने कहा, क्या कहा? नहीं, मुझसे क्यों झूठ बोलते हो? प्रेम की दृष्टि छिपी नहीं रहती। प्रतिदिन तुम्हारे सिर के तनिक से हिलने से, तुम्हारे हाथों के कंपन से तुम्हारा हृदय तुम्हारी इच्छा मुझ पर प्रकट करता है। जिस प्रकार सागर अपनी तरंगों द्वारा काम करता है, उसी प्रकार तुम्हारे हृदय ने तुम्हारी भाव भंगिमा द्वारा मुझ तक

0: संदेश पहुंचाया। सहसा मेरी आवाज सुनकर तुम तिलमिला उठते थे। क्या तुम समझते हो कि मुझे तुम्हारी उस दशा का अनुभव नहीं हुआ? मैं तुमको भली भांति जानती हूं, इसीलिए अब तुम सर्वदा मेरे हो। तुम्हारे देवताओं का राजा भी इस संबंध को तोड़ नहीं सकता। कच्छ ने कहा, किंतु देवयानी तुम्हें हो, क्या इतने वर्ष अपने घर और घर वालों से अलग रहकर मैंने इसीलिए परिश्रम किया था? देवयानी बोली, क्यों नहीं, क्या तुम समझते हो कि संसार में शिक्षा का मूल्य है और प्रेम का मूल्य ही नहीं? समय नष्ट मत करो, साहस से काम लो, ये प्रतिज्ञा करो। शक्ति, शिक्षा, ख्याति की प्राप्ति के लिए मनुष्य तपस्या और इंद्रियों का दमन करता है। एक स्त्री के सामने इन सब का कोई मूल्य नहीं है। कच्छ ने कहा, तुम जानती हो कि मैंने सच्चे हृदय से देवताओं से प्रतिज्ञा की थी कि मैं जीवन के अमृतत्व का रहस्य प्राप्त करके आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। देवयानी ने कहा, परंतु क्या तुम ये कह सकते हो कि तुम्हारे नेत्रों ने पुस्तकों के अतिरिक्त और किसी वस्तु पर दृष्टि नहीं डाली? क्या तुम ये कह सकते हो कि मुझे पुष्प भेंट करने के लिए तुमने कभी अपनी पुस्तक को नहीं छोड़ा? क्या तुम्हें कभी ऐसे अवसर की खोज नहीं रही कि संध्या काल मेरी पुष्प वाटिका के पुष्पों पर जल छिड़क सको? संध्या समय जब नदी पर अंधकार का वितान तन जाता था तो मानो प्रेम अपने दुखित मन पर मौन छा जाता। तुम घास पर मेरे बराबर बैठकर मुझे अपने स्वर्गिक गीत गाकर क्यों सुनाते थे? क्या यह सब काम उन षड्यंत्रों से भरी हुई चालाकियों का एक भाग नहीं जो तुम्हारे स्वर्ग में क्षम्य है? क्या इन कृत्रिम युक्तियों से तुमने मेरे पिता को अपना न बनाना चाहा था? विदाई के समय धन्यवाद के कुछ मूल्यहीन सिक्के उस सेविका की ओर फेंकते हो जो तुम्हारे छल से छली जा चुकी है। कच्छ ने कहा, अभिमानी स्त्री, वास्तविकता को मालूम करने से क्या लाभ? यह मेरा भ्रम था कि मैंने एक विशेष भावना के वश तेरी सेवा की और मुझे उसका दंड मिल गया, किंतु अभी वो समय नहीं आया कि मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकूं कि मेरा प्रेम सत्य था या नहीं, क्योंकि मुझे अपने जीवन का उद्देश्य दिखाई दे रहा है। अब चाहे तो मेरे हृदय से अग्नि की चिंगारियां निकल निकल कर संपूर्ण वायुमंडल को आच्छादित कर लें, मैं भली भांति जानता हूं कि स्वर्ग अब मेरे लिए स्वर्ग नहीं रहा। देवताओं की सेवा में यह रहस्य तुरंत ही पहुंचाना मेरा कर्तव्य है, जिसको मैंने कठिन परिश्रम के पश्चात प्राप्त किया है। इससे पहले मुझे व्यक्तिगत प्रसन्नता की प्राप्ति का ध्यान तनिक भी न था। क्षमा कर देवयानी, मुझे क्षमा कर, सच्चे हृदय से क्षमा का इच्छुक हूं। इस बात को सत्य जानना कि तुझे आघात पहुंचाकर मैंने अपनी कठिनाइयों को दुगना कर लिया है। देवयानी ने कहा, क्षमा? तुमने मेरे नारी हृदय को पाषाण की भांति कठोर कर दिया है, वो ज्वालामुखी की भांति क्रोध में भबक रहा है। तुम अपने काम पर वापस जा सकते हो, किंतु मेरे लिए शेष क्या रहा? केवल स्मृति का एक कटीला बिछोना और छिपी हुई लज्जा जो सर्वदा मेरे प्रेम का उपहास करेगी। तुम एक पथिक के रूप में यहां आए धूप से बचने के लिए, मेरे वृक्षों की छाया में आश्रय लिया, अपना समय बिताया। तुमने मेरे उद्यान के संपूर्ण पुष्प तोड़कर एक माला गूंथी और जब चलने का समय आया तो तुमने धागा तोड़ दिया, पुष्पों को धूल में मिला दिया। मैं अपने दुखित हृदय से श्राप देती हूं, जो शिक्षा तुमने प्राप्त की है वो सब तुमसे विस्मृत हो जाए। दूसरे व्यक्ति तुम्हारे से यह शिक्षा प्राप्त करेंगे, किंतु जिस प्रकार तारे रात में अंधियारे से संबंध स्थापित नहीं कर पाते बल्कि अलग रहते हैं, उसी प्रकार तुम्हारी यह विद्या भी तुम्हारे जीवन से अलग रहेगी। व्यक्तिगत रूप में तुम्हें इससे कोई लाभ न होगा, यह केवल इसलिए कि तुमने प्रेम का अपमान किया, तुमने नहीं समझा प्रेम का मूल्य। प्रेम का मूल्य, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी ये कहानी अभी आप सुनो कहानी श्रृंखला के अंतर्गत सुन रहे थे। प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई।
1: सुनो कहानी।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह।

0: डंकी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में, इरशाद कामिल के बोल थे, प्रीतम का संगीत था। 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूं हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूं विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हां, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

भीड़ फिल्म का ये सोहर आप सुन रहे थे रोमी की आवाज़ में। शकील आजमी के बोल थे, अनुराग साइकिया का संगीत था। विविध भारती से ये है कार्यक्रम चित्रलोक।

0: तंबाकू जानलेवा होता है। गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। इस बात का हमेशा से जिक्र होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि तंबाकू से क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं, विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 BEST के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल से एक भेंट वार्ता सुनना न भूलिए, शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में।
1: विविध भारती पर यह है कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम के बाकी गाने आपको सुनवाएंगे छोटे से अंतराल के बाद।

0: स्वानंद किरकिरे का लिखा गीत आप सुन रहे थे। कृष्णा कुमार और श्रेया घोषाल की आवाजों में फिल्म थी वेलकम टू सज्जनपुर।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: थी धन्य वो उनकी जवानी जो

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे समाचार संध्या।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। कर्नाटक में डी के शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे। और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डी के शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
3: जब मीटिंग आरंभ हुई तो सिद्धरामैया द्वारा एक लाइन का रेजोल्यूशन दिया गया कि CLP नेता का चयन का कार्य AICC को सौंप देना चाहिए। इसके बाद AICC जनरल सेक्रेटरी KC मेरोगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिद्धरामैया से अलग मुख्यमंत्री के कक्ष में बातचीत की। तब तक CLP मीटिंग रुकी रही। जब फिर से मीटिंग आरंभ हुई तो ये रेजोल्यूशन पारित किया गया कि डी के शिवकुमार नेता के रूप में चुने गए हैं। इसके बाद सभी विधायक राज्यपाल से मिले और डी के शिवकुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के लिए वक्त मांगा। अब डी के शिवकुमार और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य June 3 को 4:05 पर शपथ ग्रहण करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
2: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी के सचेतक एग्री SS कृष्णमूर्ति ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर से मुलाकात की और उनसे सत्तारूढ़ TVK द्वारा कथित तौर पर 4 विधायकों की खरीद फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये चारों विधायक ऑल इंडिया अन्ना DMK से इस्तीफा देने के तुरंत बाद TVK में शामिल हो गए। श्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि इन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए TVK सरकार के पक्ष में मतदान किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में CP ग्राम्स के लिए AI सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि AI और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
5: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रति वर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
2: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
6: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीनें जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीनें जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित करेगा। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को उनकी मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले दिन में म्यांमार के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि चिकित्सा वस्त्र, तकनीकी वस्त्र और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की अपार क्षमता रखते हैं। विशाखापट्टनम में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरकार ने सोमवार से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दी है। कपड़ा मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि यह निर्णय कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय कपड़ा उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
2: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश पढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का एक आंदोलन है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक निर्बाध यात्राएं संपन्न कराने के लिए डिजी यात्रा टीम को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा है कि ये उपलब्धि निर्बाध और कागज तथा संपर्क रहित प्रक्रिया पर यात्रियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। वर्तमान समय में डिजी यात्रा ऐप पर 38 हवाई अड्डे हैं और अगले वर्ष इनमें 27 और हवाई अड्डे जुड़ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में स्वच्छता में सुधार और नागरिक समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए एक नया स्वच्छ मोबाइल ऐप जारी किया गया है। आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आज कोलकाता में इस ऐप को जारी किया। इस ऐप के जरिए नागरिक अपनी समस्याओं जैसे रुका हुआ पानी, कचरा या नालियों का फोटो अपलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सेलर मित्तल निपोन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। अगले दो दिनों में ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने का अनुमान है। और अब बात खेलों की। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेउंग जाए और किम बॉन हो को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में हार गए। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पांचवें ओवर में एक विकेट पर 34 रन बना लिए हैं। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। भारतीय हज मिशन ने सऊदी अरब में आयोजित इस वर्ष के खितमाहु मिस्क समारोह में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सऊदी हज मंत्रालय द्वारा तीर्थयात्रियों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले लब्बैतुम पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और संचार श्रेणी के तहत भारतीय हज मिशन को प्रदान किए गए हैं। इस वर्ष लगभग 1,75,000 भारतीय हज के लिए गए थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत

बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आनंद बख्शिका लिखा गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में, फिल्म थी आपकी कसम। विविध भारती से यह है कार्यक्रम आपके लिए।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

रंगोली फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। शैलेंद्र के बोल थे शंकर जयकिशन का संगीत था। इसी के साथ आज का आपके लिए कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

विविध भारती के सभी श्रोताओं को दिलीप का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है पार्श्व गायक के यानी कृष्ण कुमार कुन्नाथ पर।

23 अगस्त 1968 को दिल्ली में जन्मे के यानी कृष्ण कुमार कुन्नाथ ने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। बॉलीवुड में कदम रखने से पहले लगभग 3,500 जिंगल्स के लिए आवाज दी। क्रिकेट विश्व कप 1999 के दौरान भारतीय टीम की हौसला अफजाई के लिए जोश ऑफ इंडिया गीत में भी उन्होंने गाया। उन्होंने संगीत में कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी। केके का कहना था कि गायक का चेहरा दिखने के बजाय उसका सुना जाना ज्यादा जरूरी है।

ये गीत काफी लोकप्रिय रहा। हालांकि बॉलीवुड में पहला ब्रेक मिला फिल्म हम दिल दे चुके सनम के गाने तड़प तड़प से। उनके गीतों से युवा अपने आप को रिलेट कर पाते थे क्योंकि उनके गीतों में वो कहीं ना कहीं अपने आप को भी महसूस कर पाते थे और भावनात्मक रूप से भी जुड़ जाते थे, जैसे कि ये गाना उन्हीं के लिए गाया गया हो।

1999 में उन्होंने अपना एक एल्बम लॉन्च किया पल, जिसका गीत यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है काफी लोकप्रिय रहा और स्कूल कॉलेज के लगभग हर फेयरवेल फंक्शंस का हिस्सा रहता था। इस गाने के बगैर कोई भी फेयरवेल फंक्शन अधूरा ही माना जाता था।

केके के चर्चित गानों की बात करें, शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम का गाना आंखों में तेरी काफी लोकप्रिय हुए। काइट्स का जिंदगी दो पल की, जन्नत का गाना जरा सा, गैंगस्टर का गाना तू ही मेरी शब है।

उनको 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए नामित किया गया और उन्हें बचना ए हसीनो फिल्म के गाने खुदा जाने के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का स्क्रीन अवार्ड मिला।

के बचपन में डॉक्टर बनना चाहते थे। कॉलेज में दोस्तों के साथ मिलकर परफॉर्म भी करते थे और नेचर लवर भी थे। केके के कुछ अपने उसूल भी थे जिनसे वो समझौता नहीं करते थे। एक बार एक गाने को रिकॉर्ड करते वक्त उन्हें लगा कि गीत के बोल ठीक नहीं हैं और उनकी इस आपत्ति का सम्मान करते हुए गाने के बोल बदल दिए गए। अच्छे गायक की उनकी अपनी परिभाषा थी। के मानते थे कि अच्छा सिंगर वही है जो किसी संगीतकार के गाने को अपना बना के गा सके।

0: संगीतकार ललित पंडित ने कृष्ण कुमार कुन्नाथ के लिए अपने हृदय के उद्गार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए।
1: के को पूरी म्यूजिक फ्रेटर्निटी बहुत प्यार करती है, बहुत ही अच्छे कलाकार होने के अलावा बहुत अच्छे दिल के इंसान थे, बहुत दोस्त थे मेरे साथ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने इंडिपेंडेंट म्यूजिक में लाइफ में कभी कभी और शोबिज मुकेश भट्ट जी की फिल्म में गाने गाए हैं, उन्होंने सारे मेरे जतिन ललित के भी गाने गाए हैं। उनकी आवाज़ में एक यूथ को अट्रैक्ट करने की एक क्षमता थी और गाने में जो सुर पकड़ने की ताकत थी उनमें बहुत थी। और सबसे बड़ी बात है जो सिंगर में लोग ढूंढते हैं और जो कुदरत की तरफ से आती है वो है एक वॉइस क्वालिटी। उनकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बहुत ही यूथफुल वॉइस क्वालिटी थी। और वॉइस क्वालिटी का ऐसा होता है कि एज से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता, वॉइस पुरानी नहीं होती आपकी, आपकी गायकी आपको मेंटेन करनी पड़ती है और वो केके में थी।

के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से कॉन्सर्ट्स का हिस्सा बने, जिसके लिए वो खास तौर से जाने जाते थे। युवा दिलों की धड़कन बने और अपने आखिरी पलों में भी अपनी पूरी ऊर्जा के साथ वो युवाओं के साथ ही थे। 53 वर्ष की अवस्था में मंगलवार 31 मई 2022 को कोलकाता में एक कॉलेज के कॉन्सर्ट के बाद हम सबको हमेशा के लिए अलविदा कह गए।

0: श्रोताओं, आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित था पार्श्व गायक के यानी कृष्ण कुमार कुन्नाथ पर। आलेख और स्वर दिलीप का, संपादन और प्रस्तुति तेजस्वी कांबले की।
1: आज के फनकार।

छाएगी प्रोग्राम थोड़ी ही देर में।

श्रोताओं, अभी तक आप हमारे केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रंगे गजल। रंगे गजल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं नरेश चंदेल। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं चंदन दास के स्वर में इस गजल से। रचना अजीम मलिक की है।

श्रोताओं, आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंगे गजल। आइए अब सुनते हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह के स्वरों में कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

अनूप जलोटा के स्वर में ये गज़ल थी। और दोस्तों, इसी गज़ल के साथ अब आज का कार्यक्रम रंगे गज़ल यहीं पर संपन्न हो रहा है।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चांदनी रातें।

कार्यक्रम चांदनी रातें सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। दोस्तों, चांदनी रातों के सफर में आज मैं हूं आपका हम सफर नरेश चंदेल। दोस्तों कहते हैं, आप आए तो ख्याले दिले नाशाद आया, सोनी सी जिंदगी में फिर से इरशाद आया। बरसों से जो खामोश थी दिल की धड़कने, आपकी मुस्कुराहट से उनमें भी साज आया।

सुन ए ठंडी हवा, कुछ बात पुरानी कह दे, मेरे दिल की अधूरी सी कोई कहानी कह दे, जिस राह से वो गुजरे खुशबू बिखर देना, मेरी चाहत को उसके दिल के करीब कर देना, तेरी सरसराहट में कोई जादू सा लगता है, सूना ये दिल भी अब आबाद सा लगता है।

देवभूमि की सुरीली धड़कन आकाशवाणी हमीरपुर, इस समय आप सुन रहे हैं अपने रेडियो सेट पर और कार्यक्रम है चांदनी रातें।

तेरी पाजेब की छनक आज भी याद आती है, खामोश दिल में जैसे कोई धुन बज जाती है। जब भी तू चलती है मुस्कुरा कर राहों में, चांदनी भी ठहर जाती है तेरी बाहों में।

दोस्तों, मोहब्बत वो एहसास है जो दिलों को जोड़ देती है, सूनी राहों में खुशियों के फूल छोड़ देती है। जब किसी के याद दिल में घर कर जाती है, हर धड़कन बस उसी का नाम गुनगुनाती है।

दोस्तों, इसी गीत के साथ अब आज का कार्यक्रम चांदनी रातें यहीं पर संपन्न हो रहा है। अब नरेश चंदेल को दीजिए इजाजत। रात्रि के 11 बजने को है। आकाशवाणी दिल्ली से अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवाददात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉ सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करने में सक्षम है। डॉ सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी ऑर्सिलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 11:05 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं पर संपन्न हो रही है। प्रातः 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।